0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
2: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
5: तुमसे मिलके दिल का है.
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: नेशन का फन स्टेशन तो यही है क्योंकि मैं भी आ गई हूँ गाइस। दिस इज इबी द हिप्पी बैक ऑन एयर एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। कैसे हैं आप सभी लोग? इट इज वेंसडे, वी आर मिड वीक एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि दो दिन बाद वीकेंड आने वाला है। एंड देन वीकेंड पे वी गेट टू रिलैक्स, वी गेट टू स्लीप अ लिटिल मोर एंड वी गेट टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। लेकिन उस सब की बातें करने से पहले आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी सुनाऊंगी एक, लेकिन वो स्टोरी सुनने से पहले आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ गाइज। एंड ऑफ कोर्स यू गाइज आर लिसनिंग टू फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम एंड दिस इज माय शो एन इवनिंग इन डैलस। तो गाइज बाहर बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो जहाँ भी आप हैं ध्यान से गाड़ी चलाइए क्योंकि मतलब इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, राइट? सो आफ्टर दिस सॉन्ग लेट्स कम बैक एंड टॉक सम मोर।

भाई आशा हो या कोई और हो, लेकिन मेरे दिल की आशा तो यह है कि मैं सोनू निगम जी को लाइव देखूं। इसीलिए सोनू निगम रेवोल्यूशन इज कमिंग टू डैलस। गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सितंबर 26, दैट इज अ सैटरडे एट 8:30 PM। लेकिन कहाँ हो रहा है? एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। बहुत पास में है यार। तो योर फेवरेट सॉन्ग्स विद द आइकॉनिक वॉइस, एवरीथिंग इज लाइव। टिकट्स आर ऑलरेडी ऑन सेल एट टिकट मास्टर। तो जल्दी जल्दी ले लो, जितनी देर करोगे उतने प्राइसेस बढ़ जाते हैं, याद है ना आपको? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360-SHOWS। ओके, रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव एंड फनीजा रेडियो ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली इज द एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फॉर दिस इवेंट। तो ये गाना सुनते हैं, वी कम बैक एंड टॉक सम मोर।

पता है अभी मैंने सबसे रिडिक्युलस चीज देखी इंस्टाग्राम पे, पता है क्या? वो भी कौन से वाले पेज पे, एक बहुत ही फेमस इंडियन न्यूज चैनल के पेज पे, वहां पे दिखा रहे हैं देयर इज दिस एटिकेट कोच, ओके, एंड यू नो हाउ देयर आर दीज एटिकेट वीडियोस, दिस इज हाउ यू शुड सिट, दिस इज हाउ यू शुड वॉक, दिस इज हाउ यू शुड स्टैंड, दिस इज हाउ यू शुड ईट, दिस इज हाउ यू शुड ड्रिंक कॉफी, सुर से चाय नहीं पीनी चाहिए. तो वैसे ही बहुत सारे सो कॉल्ड द राइट स्टैंडर्ड्स और द राइट एटिकेट्स. ओके, सो देयर वॉज दिस वन वीडियो वेयर दिस पर्सन शोज व्हाइल व्हेन हैविंग डोसा, बाय द वे गाइज, इंडियन फूड, ओके, दिस इज नॉट पास्ता, दिस इज नॉट अ चिकन आला कियेव और एनीथिंग लाइक दैट, दिस इज इंडियन फूड, ओके, डोसा. वो डोसा चम्मच से और कांटे चम्मच से खा रहे हैं और ऐसे करके, दिस इज द करेक्ट एटिकेट वे. ही यू कैन क्लियरली सी हाउ मच ही स्ट्रगलिंग टू ब्रेक वन टाइनी बाइट ऑफ दैट डोसा, देन डिप इट इन द चटनी, एंड देन ही इज ईटिंग द डोसा लाइक एज इफ आई डोंट नो, ही इज ईटिंग लाइक फ्रेंच टोस्ट और समथिंग लाइक दैट. इट्स रिडिक्युलस. मैंने कहा भाई एटिकेट में इतनी लंबी भी मत खींचो कि आप अपना देश का खाना खाना भूल जाओ. कम बैक टू अर्थ, बी रियल, बी ऑथेंटिक. आपको क्या लगता है, डोसा हमें कांटे चम्मच से खाना चाहिए कि हाथ से तोड़ तोड़ के खाना चाहिए? मुझे तो लगता है हाथ से तोड़ तोड़ के खाने में फ्लेवर भी ज़्यादा आता है. नहीं,

दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा, क्योंकि एक्सीडेंट भाई कभी भी हो सकता है. रोड पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, स्पेशली इफ यू आर इन प्लेनो एंड इफ यू आर ड्राइविंग ऑन पार्क बुलेवार्ड एंड बिटवीन प्रेस्टन रोड एंड कोइट रोड. वो पूरी रोड ब्लॉक थे, ओनली एक ही लेन खुली है. सो बी रियली रियली केयरफुल. एंड इसीलिए अगर आपको कभी भी कार एक्सीडेंट में फंस जाते हैं या ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, देन यू नो वॉट यू नीड टू डू. फर्स्ट थिंग, कॉल द कॉप्स, ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट. सेकेंड, call Umar Khwaja because he can handle the legal battle while you focus on healing. He'll fight for the compensation that you are correctly entitled to and you pay nothing until your case is actually won. Call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com for more consultation.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल state strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता
13: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
17: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
19: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
4: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में?
7: सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
5: गाइज कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर एंजॉयिंग योर वेंसडे इवनिंग सो फार। ये नेक्स्ट सॉन्ग सिर्फ वसीम जी के लिए और उनकी बेगम के लिए, फरीदा जी, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है आतिफ असलम का ये गाना जीना जीना फ्रॉम द मूवी बदलापुर।

एंड दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू रफी एंड सफी. भाई चाय हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है, तो इसीलिए ये गाना स्पेशली चाय पसंद करने वालों के लिए. आई एम श्योर सफी को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसको गाना भी सुनना है चाय के ऊपर. वैसे गाना अच्छा है, व्हाई नॉट. नीटी ने गाया है ये, नीटी मोहन.

Guys, it is 7:50 on the clock. This is Ippy the Hippie with Fun Asia Radio, and you are listening to my show, An Evening in Dallas. Exactly, guys. So, बने रहिए रेडियो पे क्योंकि 8 बजे के बाद हमारा गिव अवे होने वाला है. आपको पता है गिव अवे में क्या होता है? आप जीत सकते हैं बहुत ही अमेजिंग प्राइजेस, और इस बार का प्राइज है फ्री खाना फ्रॉम द वाइब रेस्टोरेंट इन ऑबरी. तो अगर आप ऑबरी में रह रहे हैं तो डेफिनेटली दिस वन्स फॉर यू. लेकिन वो करने से पहले गाइज, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय सीमा मेहता लॉ ऑफिस. एग्जैक्टली गाइज, तो सीमा मेहता जी का लॉ ऑफिस इज ब्रिंगिंग टू यू समथिंग रियली अमेजिंग. वो पता है क्या है? वो ये है कि अगर आप H1B पे हैं, F1 पे हैं, या L1 पे हैं, या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं US मूव होने की, परमानेंट रेजिडेंसी की, और बहुत सारी चीज़ें, देन द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन एब्सोल्यूटली हेल्प. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम विल स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉज, स्पेशली वेदर इट कम्स टू EB-5, investor visas, family and employment visas, perm labor certification, and US citizenship. So even if you're planning on naturalization, this is the way to go. For more information on the EB-5 visitor investor visa program, EB-5 investor visa program, email info@seemamehtalawfirm.com. That is info@seemamehtalawfirm.com. Especially with the current climate, I think you need a lawyer by your side. Did you hear of the news of the Delhi-born jazz musician who got caught by the ICE for something? And then there's so many of these news happening. So you guys need to be careful. Have a lawyer ready just in case you're going through this kind of a battle. Okay.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
3: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
2: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
3: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
4: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
5: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
0: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
7: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
6: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
7: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
6: इंडिया तक।
7: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, everyone's asking लंच में क्या है?
9: Fikar not, we have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: ये तारा वो तारा हर तारा।
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और

0: exceptional customer service. Tara Commercial Energy, powering Texas businesses for over two decades. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Tara Commercial Energy, jo aapke business ko roshan rakhe.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
4: तुझे देखा तो ये जाना सनम.
5: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s. सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप.
6: Hello guys, it is 8:04 on the clock and you know what time it is? Of course, I just said that. It is 8:04 on the clock, but it is also the time for... oh, khansi aa gayi. It is also that mujhe itni zor ki maine joke mari na ki mujhe khud hi apni baaton pe hansi aa gayi. Kya baat hai? To aur khansi bhi aa gayi usse. Kya baat hai? तो इट इज़ द टाइम फॉर आवर गिव अवे. पता है आज का गिव अवे क्या है? इट इज़ फ्रॉम द एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फूडिस्तान. अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, फूडिस्तान इज़ दिस अमेजिंग ग्रोसरी स्टोर विच इज़ लोकेटेड इन ऑबरी. अगर आपको चाहिए इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस एंड केटरिंग सर्विसेज एंड इवन एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, देन यू नीड टू विजिट फूडिस्तान इन ऑबरी. दे ब्रिंग एवरीथिंग दे सी अंडर इन वन प्लेस एंड द बेस्ट पार्ट क्या है, दे गारंटी द लोएस्ट प्राइस अक्रॉस ऑल द स्टोर्स. सो डेफिनेटली गो चेक इट आउट. एंड अगर आप $30 का ऑर्डर करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी भी मिलेगी विद इन 5 miles. अगर आप फन एशिया मेंशन करते हैं, क्योंकि आपने हमारे से एड सुना था, देन यू गेट ए होल 10% डिस्काउंट. वाह, फ्री मनी. एंड आज के लिए हम खेलेंगे जो गेम है हमारा, विच इज आर साउंड्स लाइक गेम. आपको पता है कैसे खेलना है. मैं आपको एक गाना बताऊंगी, आपको उसका कॉपी तो नहीं, साउंड्स लाइक गाना बताना पड़ेगा. ओके, बॉलीवुड सॉन्ग. एंड देन मेरे लिए दो लाइन गाने भी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपको मिलेगा स्पेशल प्राइज. ओके, एंड क्या प्राइज है? द प्राइज इज ए फ्री डिश फ्रॉम द वाइब रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड इन साइड ऑफ फूडिस्तान इन ऑबरी. ठीक है, तो इट इज सुपर सिंपल. विदाउट फर्दर डू, लेट्स प्ले आवर गेम. माई नंबर इज 972-235-5555. तो यारो, अपने फोन नंबर डायल करना शुरू कर दो, क्योंकि गाना अभी शुरू होने वाला है.

0: I'll give you a little hint. It's from the movie Race. And Katrina Kaif वहाँ पे बड़ी sizzling तरीके से dance ones कर रही है. चलो हमारे पास call भी आ गई पहली. Let's take it. Hi, can you hear me?
1: Hi.
0: Hi. Okay. First of all, tell me your name and second, go for the answer.
1: Hi, my name is Gaurav.
0: Okay, Gaurav ji, let's go. What is the song?
1: Chiggy Wiggy.
0: Nay, that's not the one.
1: Okay.
0: That was very close though. Very, very close.
1: Okay.
0: Thanks for the call. Hi.
1: Chiggy Wiggy.
0: Can you hear me?
2: Yes, I can hear you.
0: Okay, let's go. First of all, tell me your name.
2: My name is Ashish.
0: Ashish, okay, go for it. Main hint de rahi hu, it's from the movie Race.
2: वही जो टच मी टच मी टच मी.
0: एग्जैक्टली. बिन थोड़ा साथ में गाए, चलो दोनों मिलके गाते. 1 2 3 4 बिन तेरे सनम दस जहान में
2: बेकरार हम दम द दम द दम.
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आशीष आप जीत चुके हैं गिव अवे. आप ओबरी के पास रहते ना, वहीं पे जीतना है. ठीक है तो गाइस, अच्छा मेरा ये गाना तो बज नहीं रहा. एक सेकंड, म्यूजिक बैकग्राउंड कहाँ है हमारा? तालियां नहीं बज रही आज. आज तालियों का, देयर समथिंग रॉन्ग विद द तालियां. तो कोई बात नहीं, हम आप ऐसे ही ऑर्गेनिक तालियां बजाते हैं.
2: थैंक यू.
0: तो आशीष प्लीज स्टे ऑन द लाइन, मैं ये गाना बजाती हूँ एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. ओके
2: श्योर.
0: ओके गाइज, आप ये वाला गाना एंजॉय करिए. वी विल बी राइट बैक.

भाई वो गाना तो बाद में सुनेंगे, लेकिन गाइस बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जिमरान, जिमरान जो इस वीकेंड मूव हो रहा है टू स्टार्ट हिज न्यू लाइफ. वी होप, वी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली होप आपकी नई लाइफ इन कोलीन या जहाँ भी आप मूव हो रहे हैं वो बहुत अच्छी जाए, एंड आपकी नई जॉब आपको बहुत सक्सेस दे. आई होप यू रीच द हाइट्स ऑफ सक्सेस एट योर न्यू जॉब. लेकिन गाइज बिफोर वी गो इन टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ अनाउंसमेंट्स, दिस सॉन्ग गोज आउट टू जिमरान.

तो गाइज राखी आने वाली है अगले हफ्ते एंड ऑफ दिस मंथ 28 अगस्त को। तो आपको पता है ना, चौक टॉक कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरॉन्ट आर डूइंग अ स्पेशल रक्षाबंधन। स्पेशली अगर आपके कोई भाई बहन के साथ आपकी कोई स्पेशल मेमोरी है तो सेंड अस अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट 214-837-7147 एंड यू कुड विन सम रियली रियली एक्साइटिंग प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरॉन्ट। भाई अगर आपके सिबलिंग आपसे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हैं और उनसे दोबारा मिलने का मन हो रहा है और आपको लग रहा है कि अरे मैं कहीं कसीनो पहुंच जाऊं तो शायद मेरा जुड़वा भाई या बहन सामने होगी, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप मतलब कोई अमेरिकन वर्जन ऑफ कुंभ का मेला था, नहीं भी हो सकता है, तो जो भी है कोशिश जारी है, तो आप पहुंच जाना ठीक है चौकटा कसीनो रक्षाबंधन के दिन। कंप्लीट द कॉन्टेस्ट डिटेल्स एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक आउट फन एशिया सोशल मीडिया पेजेस वेयर यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। ओके, चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड एंड यू हैव टू बी 21 एंड ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, तो ओके, सो मेक श्योर यू सेंड योर वॉइस मेमो और योर वॉइस नोट ऑन दैट फोन नंबर। चलो तब तक के लिए ये गाना एंजॉय करते हैं।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Beta, 95% aaye?
2: हाँ मम्मी.
1: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर.
6: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग, रीराउटिंग.
5: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
6: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
5: क्यों?
6: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
5: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर. ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
10: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
4: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
11: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
12: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल. एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज.
4: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज.
12: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास. डोर्स ओपन एट 2 PM. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. कायद मेला 2026.
4: मीडिया पार्टनर, फन एशिया नेटवर्क.

एंड वी आर बैक गाइज. लेकिन अभी फिर से जाने वाले हैं हम छोटे से ब्रेक में. आई होप यू एंजॉयड दैट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट म्यूजिक ब्रेक जो मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करी बीच में, कोई ना एड बोला, क्योंकि मुझे लगा कि भाई आप सबको गाना सुनने का मौका देना चाहिए. ठीक है, हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन गाइज ब्रेक में जाने से पहले, टेक्सस प्राइमरी केयर 13 साल से टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. दे आर नाउ ग्रोइंग विद ए ब्रांड न्यू नेम एंड ए सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन इंक्लूडिंग लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स, हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ. ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. ठीक है, तो गाइज हम अभी थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, यस, वी आर स्टिल टेकिंग रिक्वेस्ट. अगर आपको कोई गाना रिक्वेस्ट करना है या फिर कोई गाना डेडिकेट करना है किसी को, तो ज़रूर मुझे कॉल करिए, कॉल करके बताइए, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू प्ले इट ऑन फॉर यू. दैट बींग सेड, हम लोग अभी जब ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद, जैसे हमने कल कॉकटेल 2 की हमने थोड़ी बहुत स्टोरी बोली थी, 2 दिन से मैं वही बोल रही हूँ. एक्चुअली वी वर डूइंग अ कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस.

0: दैट बींग सेड, हम लोग अभी जब ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद, जैसे हमने कल कॉकटेल टू की हमने थोड़ी बहुत स्टोरी बोली थी, दो दिन से मैं वही बोल रही हूँ. एक्चुअली वी वर डूइंग अ कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस, एक्चुअली कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स इन कॉकटेल टू. टुडे यू नो देन वो बोलते बोलते ना मुझे एली के कैरेक्टर पर थोड़ा ध्यान आया, एंड आई वॉज लाइक गाइज आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी. तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, एंड दैट स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एक्चुअली अ रियल लाइफ स्टोरी दैट आई नो ऑफ वन पर्सन. तो यू नो देर वॉज अ पर्सन दैट आई न्यू हु वॉज एग्जैक्टली लाइक एली, और उसने किसी की रिश्ते में तो नहीं, शादी में एकदम दरार डालने की कोशिश करी, एंड सम से शी वॉज इवन सक्सेसफुल. लेकिन हम उसके बारे में जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, तो बने रहिए, विल बी राइट बैक इन अबाउट 20 seconds. अभी है 20 seconds है हमारे पास, मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल दिया, लेकिन आई विल टेल यू द स्टोरी अबाउट दिस पर्सन दैट आई एम टेलिंग यू, एंड यू विल बी सरप्राइज कि लोग सिर्फ टीवी में नहीं होता है ऐसा, असली लाइफ में भी ऐसी होती है.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओह हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल शॉट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया.
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया.
8: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
10: Visit www.senadainc.com today.
11: जीनी हुकम मेरी अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
12: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
11: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
12: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
11: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
11: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
15: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस

0: में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: गाइज वी आर बैक। तो जैसे मैंने आपको बोला था, आज मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी शुरू होती है एक यंग से कपल की, ठीक है? वो बड़े प्यार में पड़े होते हैं एंड देन दे डिसाइड कि चलो भाई, हमारा प्यार इतना सॉलिड है, इतना स्ट्रांग है, चलो हम शादी कर लेते हैं, ठीक है? शादी करके लड़की को पता चलता है कि लड़के की तो एक बेस्ट फ्रेंड है। अभी हम इनका नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली रियल स्टोरी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो लड़की की एक बेस्ट फ्रेंड है और वो लड़की बेस्ट फ्रेंड है। तो लड़की इज़ अ वेरी सिक्योर गर्ल, मतलब कभी उसको डाउट नहीं हुआ अपने प्यार पे, अपने हस्बैंड पे, अपने अपने रिलेशनशिप पे। तो उसने बोला, नहीं यार ठीक है, बेस्ट फ्रेंड ही तो है, आई एम अ मॉडर्न वुमन, ठीक है जो भी है, इट डजेंट मैटर। तो वो कई बार लड़के ना उसे कई सारी चीज़ें बोलता था विच जस्ट सीम्ड अ लिटिल बिट ऑड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो जो लड़का था और वो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल वगैरह पे बहुत बातें करते थे, सेइंग दैट वी आर वर्किंग, वी आर हैविंग अ वर्क मीटिंग, दे आल्सो यूज्ड टू वर्क टुगेदर। तो कई बार वो कहता था, अच्छा पता है आज क्या हुआ, हा, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, हम उसका नाम बोलते हैं, लेट्स कॉल हर, व्हाट शुड वी कॉल हर, वी शुड कॉल हर जी, ठीक है जी। तो जी आज आई वीडियो कॉल पे, जी ने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई थी, नीचे तो कुछ पहना ही नहीं हुआ था एंड वो भूल गई पहनना कपड़े। और मैं उसको कह रहा हूँ, जी तू वीडियो कॉल पे है, आई एम अ गाय, यू शुड गो पुट ऑन सम पैंट्स। एंड देन लड़की को जो जिसका हस्बैंड था, द वाइफ, शी वाज लाइक, ओह दैट्स वियर्ड, वो ऐसी चीज़ें कौन भूल सकता है। आई मीन अच्छा ठीक है, इफ़ यू आर अ older man suffering from Alzheimer's then maybe I can understand, but this seems a little bit awkward, right? तो वो मुझे ये सारी बातें सुनकर ना थोड़ी सी Ally type की feeling आ गई, क्योंकि Ally was also like, oh free and cares, carefree and free spirited and everything. तो फिर लड़की ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, लड़की ने बोला, नहीं ठीक है, मे बी जी का नेचर ही ऐसा हो, वो लक्कड़ होगी, आई मीन वट एवर, आई ट्रस्ट माई पार्टनर, आई ट्रस्ट माई हस्बैंड, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे कुछ हुआ, काफ़ी टाइम निकल गया, एक महीना दो महीना हो गया, और उसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या होता है। बहुत बहुत लंबी स्टोरी है ये, सुनते रहिए, बनते रहिए, बहुत कुछ होने वाला है। उसके बाद मेन चीज़ ये होती है कि लड़का लड़की दोनों की शादी हो जाती है, देन दे डिसाइड टू मूव इन टू देयर ओन हाउस, एक अलग शहर में, वो शहर छोड़ के ही चले जाते हैं। तो सोचो फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद से वो चेन्नई शिफ्ट हो गए, ठीक है? अब चेन्नई शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपना घर ले लिया, एक अलग से एक फ्लैट ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया। तो उस अपार्टमेंट में रहते रहते फिर जी को ध्यान आया, जी द बेस्ट फ्रेंड को ध्यान आया कि नहीं यार, मैं यहाँ पे हैदराबाद में मुझे अभी नहीं रहना है, मुझे भी चेन्नई शिफ्ट होना है। तो क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहीं पर है चेन्नई में, तो मे बी आई एल ऑल्सो मूव टू चेन्नई। तो पहले तो वो शी यूज़ टू शटल अप एंड डाउन, मतलब डेली में ही चलता था ऑलमोस्ट फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई, इमेजिन लाइक वंस अ मंथ एटलीस्ट। लेकिन कुछ महीने ऐसा चला और ये इन्हीं के साथ रहती थी, बाय द वे जी मूव होके जब भी चेन्नई जाती थी, ये लड़का लड़की इनके घर पे ही रहती थी। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ इस गाने के बाद।

तो उसके बाद क्या होता है? सो जी मूव्स, जी डिसाइड्स टू मूव टू चेन्नई. तो अब ये लड़का जो है वो कहती है, देखो मेरे को हैदराबाद से चेन्नई मूव होना है, इतना सारा सामान है, मैं अपना घर वर सब पैक करके आ रही हूँ, मेरे पास कुत्ता भी है, मैं फ्लाइट लेके तो नहीं मूव हो सकती, आई वॉन्ट टू ड्राइव. तो लड़का कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ तेरे को पिकअप करने, हम दोनों ड्राई रोड ट्रिप करते हैं, चल हैदराबाद से चेन्नई, ठीक है. और यहाँ पे जो लड़की है, यू नो द ओरिजिनल गर्ल, द वाइफ, शी इज सिटिंग देयर कि नहीं कुछ नहीं है इनके बीच में, लेकिन कुछ अजीब सी फीलिंग तो आ रही है उसको, इंट्यूशन तो हो रही है कि इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ तो बढ़ रही हैं, देव ऑलवेज बिन फ्रेंड्स, लेकिन ये नज़दीकियाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है. उसके बीच में क्या होता है कि जो वाइफ है, आफ्टर लाइक अ रियली रियली बैड स्ट्रोक ऑफ लक, उसके पापा बड़े बीमार हो जाते हैं, ठीक है. उसके पापा को बार बार बार बार कोई ना कोई इश्यूज आती रहती है, एंड शी हैज़ टू कॉन्स्टेंटली लीव हर हाउस इन चेन्नई एंड देन मूव बैक विद हर पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. आई एम टॉकिंग लाइक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, ऐसे करके ना. और इसके बीच में ये लड़की जो जी है, शी हैज़ ऑल्सो मूव्ड, शुरू में आके उसको घर नहीं मिलता है, तो वो उन्हीं के घर पे रह रही होती है, ठीक है. और जी जो है, शी हैज़ बेसिकली मूव्ड इन टू दिस गायज हाउस एंड दिस हिज वाइफ्स हाउस, एंड द वाइफ थिंक्स कि नहीं यार, ये तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में कुछ नहीं है, मैं अपने फादर का ध्यान रखती हूँ क्योंकि मेरे पापा तो बार बार बीमार हो रहे हैं, आई मीन आई एम माई ब्रेन इज़ फोकस्ड समवेयर एल्स, ओके. तो उसके बीच में वहाँ पे जी हैज स्टार्टेड लिविंग देयर. और एक दिन द वाइफ गोज लाइक कि ठीक है, आई मीन इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव गॉन बैक टू माई हाउस, आई हैव बेसिकली बिन लिविंग विद माई पेरेंट्स, तो आई विल गो टू चेन्नई एंड आई विल सी व्हाट्स हैपनिंग देयर, मैं अपने घर वर का ध्यान तो रखूँ, वहाँ पे जाती हूँ. वो घर जाके पहुँचती है, दिस मैडम जी इज़ वॉकिंग अराउंड द हाउस इन ओनली अ कुर्ता, नो पजामा, ओके. सुबह उठती है, समहाउ हर शी इज सडनली नाउ सीइंग हर हस्बैंड एंड दिस अनदर वुमन, दे आर सो क्लोज, लाइक फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन देम जो पहले नहीं, जो पहले काफ़ी था एक्चुअली, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एंड इट सीम्स लाइक देर इज समथिंग मोर देन वॉट इज गोइंग ऑन. तो देन शी स्टार्ट कन्फ्रंटिंग कि भाई तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? तो वो कह रहा है कुछ नहीं चल रहा है, तुम पागल हो, तुम इनसिक्योर हो, मेरे और जी के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वो तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब शी इज़ लाइक माई सिस्टर. एंड अब उसको ना गैस लाइटिंग कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, वाइफ को. और वाइफ को लग रहा है भाई मैं तो देख रही हूँ मेरे आंखों के सामने जो आ रहा है नज़र, ये हो क्या रहा है? तो मतलब सम हाउ द गाय इज स्टिल गैस लाइटिंग कि नहीं नहीं तुम पागल हो, यू आर बिकमिंग एन इनसिक्योर वाइफ, जो हमेशा होता है, जो हमेशा बोलते हैं. तो वही चीज़ उसको बार बार सुनाई जा रही है, उसमें से लड़की थोड़ा अंदर से गिल्ट हो रही है, कहती है नहीं यार मे बी आई एम एक्चुअली बिकमिंग लाइक दैट, ये तो मेरा हस्बैंड नहीं है, तो मेरे बारे में कभी कुछ नहीं, मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो सामने ला के रख देता था चीज़ें, ये तो पता नहीं इसको अचानक से क्या हो गया, सडनली हैज यू नो समथिंग हैज़ चेंज, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड, मैं इसको कैसे डाउट कर सकती हूँ क्योंकि ये तो मुझे इतना प्यार करता है, मैं पहले कुछ कुछ भी बोलती थी मेरे बोलने से पहले वो चीज़ें सामने आ जाती थी, ही टेक सो मच केयर ऑफ मी एंड आई शुडन डाउट हिम, और प्लस मैं जी को कैसे डाउट कर सकती हूँ, ये दोनों एक दूसरे को 8-10 साल से जान रहे हैं, अगर कुछ होना होता इनके बीच में अभी तक हो चुका होता, वाई वुड दे वेट कि हमारी 1 साल की शादी हुई है सिर्फ, तो शादी होने के बाद क्यों करते, करना होता तो इतने साल पड़े थे, 7-8 साल, उसमें भी हो सकता था कुछ, तब क्यों नहीं हुआ? तो आगे क्या होता है हम इस गाने के बारे में गाने के बाद बताते हैं.

The Flavor Lounge, guys. The Flavor Lounge is now in Frisco. They are serving their all-new weekend lunch buffet featuring mouth-watering, delicious dishes, exciting live counters, chef special, and fresh flavors to that you'll want to keep going back to. All this is for just $24.99 per person. Enjoy the buffet on Saturday and Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. आप अपने दोस्तों को लेके जा सकते हैं, फैमिली को लेके जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज सच अ ग्रेट आइडिया. आई लव बफेज, इतना सारा खाने को मिलता है. एंड देन यू कैन ट्राई ऑल द डिशेज. यू डोंट हैव टू लिमिट योर सेल्फ टू लाइक ओनली दैट वन बटर चिकन एंड वन दाल मखनी एंड सम नान. नो नो, यू कैन ट्राई सो मच मोर. गो एंजॉय द वीकेंड, हैव सम अमेजिंग फूड एट द फ्लेवर लाउंज, 5855 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. फ्लेवर लाउंज, गुड फूड, ग्रेट मेमोरीज. एक गाने के बाद हम वापस आते हैं. वी आर अबाउट टू गो इनटू अ ब्रेक एट 9:30, बट स्टे ट्यून्ड, बिकॉज़ मैं आपको वो स्टोरी कंप्लीट करके सुनाने वाली हूँ.

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future. Sadia.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
7: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

तो गाइज आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि द वाइफ शी स्टार्ट्स डाउटिंग कि भैया इस जी के बीच में और मेरे पति के बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन मैं ऐसे पूछ नहीं पा रही हूँ, और मैं पूछ रही हूँ तो ये मुझे इनसिक्योर बोल रहा है, लेकिन यू नो मैं इससे बोल रही हूँ कि भाई तुम मुझसे थोड़ा डिस्टेंस रखो क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट द हस्बैंड इज कॉन्स्टेंटली गैस लाइटिंग हर, ही सेइंग कि नहीं तुम्हारे दिमाग में ही खराबी है। गाइज एक पहली चीज़ तो पता है मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को कुछ बोलो इस तरह से एंड वो सडनली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं ना, दैट मीन्स दे आर इन द डाउट ओवर देयर, ठीक है? तो दैट मीन्स अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है ना आपको लेके, नहीं, ऐसे कुछ, दैट मीन्स यू हैव टू बी लाइक अच्छा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जो पर्सन एकदम क्लीन होता है समहाउ देयर बॉडी लैंग्वेज एंड देयर रिएक्शन इज अ लिटल बिट डिफरेंट। पीपल हु गेट मोर डिफेंसिव दे आर ऑलवेज इन द रॉन्ग, दैट्स माई ओपिनियन, बट आई कुड ऑल्सो बी रॉन्ग। सो तो द हस्बैंड इज गैस लाइटिंग हर एंड देन दिस गर्ल शी गोज लाइक कि अच्छा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम एक मीटिंग करते हैं तीनों मिलके, बिल्कुल कॉकटेल टू जैसी सीन होती है, ठीक है? सो जैसे कॉकटेल टू में दिया, एली और कुनाल तीनों साथ में, ये तीनों खड़े हुए हैं, लव ट्राइंगल हो रहा है ना, वैसे यहाँ भी एक रियल लाइफ लव ट्राइंगल हो रहा है। तो ये दोनों साथ में तीनों बैठे हुए हैं तीन कोने में, कमरे के तीन कोने में, कहते चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में, बताओ मेरे से, मुझे तो दिखाई दे रहा है तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है, डू यू नो वॉट इज गोइंग ऑन, और अगर नहीं पता क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में तो मैं कहती हूँ यू शुड गो टू दी अदर रूम, टॉक इन पर्सन, डू वॉट एवर इट इज दैट यू नीड टू डू एंड देन टेल मी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू साउंड लाइक द क्रेजी पर्सन, क्योंकि दुनिया में कोई किसी को पागल बोलने में इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग, राइट? तो वो कहती है उसको कि देखो तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरे दिमाग से ये डाउट क्लियर करो कि तुम्हारे बीच में कुछ तो चल रहा है। तो वो हस्बैंड जो कहता है वो चुप, वो दूसरी जी की तरफ देख रहा होता है, उस बंदी की तरफ, ठीक है, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है BFF, तो वो अपनी BFF की तरफ देख रहा है और वो भी उसकी तरफ देख रही है, उनके बीच में आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं ऐसे आंखों में इशारे हो रहे हैं, वो कोई मुंह नहीं खोल रहा है, तो ये सोच रही कि ये हो क्या रहा है। फिर फाइनली BFF अपना मुंह खोलती है, कहती है देखो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन हमारा प्यार बहुत पाक है और बहुत ही पावन है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक यू आर इमेजिनिंग, हम लोग के बीच में बहुत ही क्लीन तरह का प्यार है, हम एक दूसरे को बहुत सालों से चाहते हैं लेकिन हम वैसे कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, फिर अब वो दिमाग में उसके दोबारा आ जाता है ख्याल कि नहीं यार ये तो उसने तो लड़की ने तो बोल दिया, अगर लड़की से उनके बीच में कुछ चल रहा होता वो तो सीधा सीधा मुंह खोल के बोल देती, वो नहीं बोला उसने, तो अब लड़की को अंदर से डाउट हो रहा है कि नहीं यार मैंने ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा कर दिया, फिर उस गुस्से में आके फिर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉन्स्टेंटली लड़का कह रहा है उसने तेरी वेडिंग रिंग चूज़ करी थी, हाउ कैन यू डाउट हर, लड़की कह रही है नहीं मैं इस शायद ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन शक्ल पे दिख रहा है दोनों के, ठीक है? तो आगे जानते हैं क्या होता है, बहुत ही जूसी स्टोरी होने वाली, ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड की स्टोरी है, जस्ट सो यू नो, दैट्स व्हाई आई नो द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ दिस, दिस इज अ रियल स्टोरी यू गाइस, रियल लाइफ कॉकटेल टू, व्हाट काइंड ऑफ अ कॉकटेल आई डोंट नो, यू कैन टेल मी द नेम, बट एंजॉय द सॉन्ग फर्स्ट।

गाइज, आपको पता है ना, तनिष्क फ्लेवर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज हियर. इंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट्स. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. गाइज, यू आर स्टिल लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग एंड जेलस. That's right, guys. अभी almost time खत्म हो गया है. It is 9:49 on the clock. Unfortunately, मेरी story complete नहीं हो पाई, पर मैं आपको इस बात पे छोड़ूंगी ये story. Hopefully, कल मैं complete कर सकूँ. अगर कल भी complete नहीं हो पाएगी तो then आप you can just imagine आगे क्या होगा. तो फिर मैं आपको इस बात पे I'll leave the story at this much right now. कि जो भी हुआ भले के लिए हुआ. सब तीनों तीनों के तीनों अपनी जिंदगी में खुश हैं. अब साथ में है या अलग है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं. और अगर नहीं करना है तो मत कहिए. आई मीन, दैट्स अप टू यू, बट इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी. सो वी विल कम बैक एंड लिसन टू दिस, बिकॉज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट यही सब चलता है लाइफ में, है ना.

0: इस कदर।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Beta, 95% आए?
7: हाँ मम्मी.
6: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
8: मेरा?
6: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Fun Asia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Fun Asia Radio for spreading the word.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
2: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
3: Plano Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

अटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

दूंगा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रेयान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADशा नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: सर लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में बच चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: बेटा बच गया सायरन।

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद देर लगेगी यहां।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

Don't touch that dial. Keep listening.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त,
0: पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
2: मर जानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी वीड वे।
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
4: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है। फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
1: एक किस

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
2: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: दिल हंसते हंसते रो पड़ा।
3: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती। I'm sorry।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
2: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to...

0: interest, credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
0: Kya matlab?
1: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
6: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this lovely Thursday morning. सबसे पहले तारीफ उस सुपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया. उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम.

हजार बार सोचा, कह दूं कि फ्रेंड नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

0: Weaving a tale full of love and longing with Musafir Cafe, the dream project with the mountains at its center. Musafir Cafe.
1: Heere moti maina chahu.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
8: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Floors clean.
13: Check.
12: Windows clean.
13: Check.
12: Kitchen clean.
13: Check.
12: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
14: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotel, offices ya phir any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
16: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
15: कहाँ?
17: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
18: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
19: अजी सुनते हो?
20: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
9: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
21: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं, और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
22: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
23: तुमसे मिलके दिल का है.
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
22: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
3: Fan Idli Vegetarian Restaurant. 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali. Aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
2: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
6: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
7: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s। सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप।
8: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show this morning. It's Thursday, the 20th of August, and already in the top 10 hottest Augusts.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099।
4: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
6: अरे यार, घर मिल गया।
7: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
8: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
7: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
8: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
10: तो फिर
11: अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
14: अजी सुनते हो?
15: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
14: The OG of tax planning, AG Fintax। सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions। Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio।
16: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: I do have the world news coming up for you right after you finish listening to this track.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी।

0: Jerry Lewis died on today's date in 2017 in Las Vegas. The American comedian, actor and director, whose unrestrained comic style made him one of the most popular performers of the 50s and 60s. He's the one who said, "Laughter is our safety valve that's going to keep us going. Laughter puts years on your life." It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: देसी फ्लेवर भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ। वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो।
8: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
13: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
0: Let's get started with this final hour of our program. It is Thursday, the 20th of August, and we are already in the top 10 hottest Augusts ever. 26 triple-digit temperatures already, 35 with not a drop of rain, and this will continue for another 7 more days. 105 to 106 coming up for you today. Ladies and gentlemen, we are under an extreme heat warning. Very dangerous heat here in the Dallas-Fort Worth area.

0: Beautiful track there from the movie called Bad News. Let's talk a moment here about Tandoori Flame. That's a restaurant that's located in Garland. It's the new flavor destination for all you spice lovers, serving up sizzling tandoori platters, rich curries, and all your North Indian favorites with that home-style punch. From smoky tandoori kebabs to velvety curries and fresh hot naan, every plate feels like a celebration. Step in today and let Tandoori Flame serve you the kind of meal that turns an ordinary day into a feast. All you have to do is step into Tandoori Flame restaurant located in Garland. I will have the world news coming up at the half hour portion of our program, and then we do have a giveaway for you also. Plenty of information as well as all the music you want to listen to lined up. And yes, I have your requests lined up also. Number in the studios for y'all to reach me, 972-235-5555. I'm taking requests, dedications, comments, feedback, suggestions, anything you'd like to talk about this lovely Thursday morning.
1: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Rakshabandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
4: एक और लड्डू ले लो।
5: थोड़ी और बिरयानी?
4: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
6: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
7: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
8: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
9: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
2: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन। साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
10: फ्लोर्स क्लीन
11: चेक,
10: विंडोज क्लीन
11: चेक,
10: किचन क्लीन
11: चेक,
10: एयर डक्ट्स क्लीन।
11: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
12: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
15: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
14: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
15: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
14: इंडिया तक।
15: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुंचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal. Sathiya!
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
17: ने कभी किसी से प्यार नहीं किया।

0: With catchy beats and vibrant lyrics, ladies and gentlemen, that track was taken from the movie Bluff Master. And the first one to give me the right answer was Sagar Mehta. And Sagar gets $10 off his dine-in bill of $50 or more at Chandigarh Bites. And you all do know that Chandigarh Bites is in Allen.
1: किशोर गंदे सॉन्ग या
2: रानसिनी पागल है क्या
1: क्यों
2: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग ट्रोल
1: बट व्हाई इट्स आइकॉनिक
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं काहे को पंगा लेने का छोड़ दे आजकल जनता ना बहुत पिक्चरस हो गई
1: बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट आवर वर्जन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ यू आर गेटिंग मी
2: यू गाइस वांट ऑडिशन या ट्रोल हो जाएंगे मत करो

0: It is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: आज ही सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभाल लेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
10: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
11: प्लेनो रिचर्डसन

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
4: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
5: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

Don't touch that dial. Keep listening.

नहीं, गंदी बात नहीं होती है. हाँ, टुच्ची जरूर हो सकती है, टुच्ची बात, लेकिन मजेदार बात, अच्छी बात, मोटिवेशन वाली बात, या फिर रोजमर्रा की बात. दैट्स व्हाट वी ब्रिंग फॉर यू ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. नेशनल रेडियो डे आपको मुबारक हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट बिटवीन 11 to 12. आपकी कंपनी की सख्त तलाश है और जरूरत है. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. दिस इज गपशप गली. तो हेलो, नमस्कार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई शो एंड गिविंग अस कंपनी सिंस मॉर्निंग. शबनम जी के साथ जो साथ दिया आपने ना, मुझे पता है सब लोग कान लगा के सुनते हैं, क्योंकि वर्ल्ड न्यूज इज समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू लिसन टू व्हेन शी शेयर्स इट ऑन हर शो. तो शुरू करें गपशप गली विथ मी टू.

Listen, it has to be all upbeat and it can be soft and romantic as well. Whatever you want to listen to. आज वर्ल्ड रेडियो डे पे कुछ ना बोल तो सकती नहीं हूँ मैं. आज वर्ल्ड रेडियो डे जो कि फरवरी 13 को यूनेस्को मनाती है और यूएस आज के दिन को मनाती है, हमने सोचा यार कि नेशनल रेडियो डे को भी सेलिब्रेट करें हम आप लोगों के साथ. सो 11 से 12 बजे यू हैव टू ट्यून इन एंड यू हैव टू गिव मी कंपनी टू शेयर योर रेडियो स्टोरीज विथ मी राइट हियर. एंड दिस इज गपशप गली विथ मी टू. हमारी गपशप ऐसी चलती रहती है रोज की गपशप में. चलिए एक और गाना ऐड करते हैं यहाँ पे. इट इज ऑल अबाउट म्यूजिक, मस्ती एंड मैजिक राइट हियर ऑन फनेशर रेडियो 104.9 FM.

0: tracks that put you on the right track.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
7: लैपटॉप में।
6: इन्वेस्टमेंट?
7: गूगल ड्राइव।
6: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
7: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
6: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
3: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
8: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
3: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: Beta, 95% aaye?
11: हाँ मम्मी।
10: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
12: मेरा?
10: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
12: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
14: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय live music, delicious food, shopping, cultural activities and family fun for every age.
13: Live performance by Raga Boys.
14: Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
13: Media partner, Fun Asia Network.
0: Tracks that put you on the right track.

ले लीजिए मुझसे नंबर और पता आप इस जगह का, इफ़ यू वांट टू 214-666-6259। ये नंबर ऐसा है कि जो आपके लिए वो क्विक एंड इजी अपॉइंटमेंट्स लेकर आएगा। दिस इज़ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैं अगर आज की ज़रूरत है तो आज ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आज आपकी तबीयत ख़राब है, 7 दिन के बाद डॉक्टर से मुलाकात हो पा रही है आपकी। लेकिन ये भी आप जान के रखें कि भाई ये वो जगह है कि जहाँ पर आपको बहुत सारा टाइम मिलता है विद द डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि आप इन एंड आउट वाली बात नहीं होती है, विच आई हैव दिस मेजर कंप्लेंट विद। मुझे बहुत परेशानी है उन डॉक्टर्स के साथ जो वो मतलब पेशेंट को सही तरीके से नहीं देखते हैं। मुझे तसल्ली नहीं मिलती जब तक डॉक्टर मेरी पूरी बात ना सुन लें। अगर वो ही इज़ इन हरीड, यू नो, ही शोज मी दैट हरी इन हिज कॉन्वर्सेशन, तो मुझे ना फिर शेयर करने का कोई वो ही नहीं लगता कि मेरे को यहाँ आप ठीक है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या ये प्लीज़ बताइए वो, ये सारी चीज़ें मैं बात ही नहीं कर सकती ना इफ़ इतना हरिड एक अपॉइंटमेंट हो तो। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में आपको तसल्ली से देखा जाता है, दैट इज़ द प्रॉमिस दे ब्रिंग विद देम, अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट एनुअल फिजिकल हो या फिर एन्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड मच मोर दैट यू कैन गेट एट देयर्स। तो मैं चाहूँगी कि आप इनके वेबसाइट पर जाएँ एंड देन गिव दम अ कॉल एंड सी इफ दे आर राइट फॉर यू। 214-666-6259 दैट इज़ द नंबर to book your first appointment with them and figure out from there. All right? Passion Health Primary Care, आपका हेल्थ उनका पैशन है। ये अगर बात हमें कोई बता देना कि कोई सर्विस प्रोवाइडर उनका पैशन ही है कि हमारी मदद करें और पूरी तरह से करें, मैं तो वहीं जाऊंगी यार।

इट इज गपशप गली विथ मी टू. इस वक्त मैं आप लोगों के साथ मौसम का हालचाल शेयर करती हूँ. वेल, नथिंग हैज चेंज सिंस येस्टरडे. डेंजरस हीट रिमेन्स अक्रॉस नॉर्थ टेक्सस विथ एन एक्सट्रीम हीट वार्निंग दैट इज इन इफेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस. हाँ, इस हमारे 103 से 108 के रेंज में होने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन विच प्लेस यू आर एट. और उसके अलावा रेड रिवर के पास कुछ लो चांसेस बनने वाले हैं, यू नो, लेट आफ्टरनून अर्ली इवनिंग आवर्स में फॉर अ बिट ऑफ थंडर स्टॉर्म दैट आई सी. यू नो, कल एक्चुअली दिख रहा है मुझे कि एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अ शावर और थंडर स्टॉर्म क्लोजर टू द DFW मेट्रोप्लेक्स. लेकिन ये एक्टिविटी कुछ हिट या मिस वैरायटी की होने वाली है. वेल, ऑगस्ट इज गोइंग टू स्टे हॉट एंड इट विल कंटिन्यू इनटू नेक्स्ट वीक आल्सो एज वी कंटिन्यू विद दिस मंथ. आज की तारीख है 20 तारीख, लेडीज एंड जेंटलमैन. और बारिश के जो चांसेस कल थोड़े बहुत शायद हमको मिल जाए यार, लेकिन बारिश के साथ गर्मी, और बारिश का ये भी है कि बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उसके बाद. सो येस, आई डोंट नो कितना रिलीफ मिलेगा टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमें, क्योंकि आज का टेम्परेचर 105 के आसपास एवरेज दैट वी आर गोइंग टू गेट. द हीट इंडेक्स विल टेक इट टू 108 और 109. लो विल बी अराउंड 82. कल हमारा जो ये 20% चांस है दैट इज नॉट गोइंग टू प्रीटी मच चेंज एनीथिंग. हमारा हाई वही 105 के आसपास होने वाला है, एंड दैट इज फॉर अस to feel on Saturday also, ladies and gentlemen. Saturday or Sunday bhi kuch yahi temperatures rehne wale. Nothing is going to change. That is what I can tell you right here.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
0: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
2: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice. Sadia!
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
11: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
12: Tracks that put you on the right track.

And that is a song that was featured on रणदीप हुडा, ladies and gentlemen. और आज इनका 50th birthday है, तो मैंने सोचा कि कुछ एक और फिल्म से एक और गाना सुनवाती हूँ. क्योंकि क्या है ना कि देर आर एक्टर्स हु प्ले कैरेक्टर्स एंड देन देर आर एक्टर्स हु सरेंडर कम्प्लीटली टू द रोल और द कैरेक्टर दैट दे आर प्लेइंग. वो हैं रणदीप हुडा. कितने तो ट्रांसफॉर्मेशंस उन्होंने किए हैं अपने फिजिकल, जो एक एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन जो ऐश्वर्या राय के साथ जो मूवी थी, आई एम वाई आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट आई थिंक यू ऑल विल रिमेंबर दैट. और वो उसके अलावा नए स्किल्स और नए मैनरिज्म्स, नए एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी ऑफ रियल लाइफ पर्सनालिटीज, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के जरिए उतारे हैं. और क्या खूब उतारे हैं. इट इज़ हिज 50th एंड इट सीम जस्ट राइट टू प्ले अनदर सॉन्ग स्टारिंग दिस amazing actor Randeep Hooda. Wishing him a very happy birthday and to everybody else celebrating their birthdays today. This is Gupshup Gali with me too.

रणदीप हुडा's बर्थडे टुडे इज 20th of August 2026. पूरे 50 साल के हुए हैं जनाब, एंड ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी फिल्में देते रहें. दैट इज व्हाट वी विश फॉर हिम एंड गुड हेल्थ ऑफ कोर्स एंड टू एवरीबॉडी एल्स. आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर योर बर्थडे लेडीज एंड जेंटलमैन. और उसके अलावा जी हाँ, अगर परेशान हो टू मच, छोड़ो जिंदगी की मच मच विथ रेडियोस मिडास टच, क्योंकि इट इज नेशनल रेडियो डे. हम ये मनाएंगे और पूरे धूमधाम से मनाएंगे, एक घंटा मनाएंगे आफ्टर द ब्रेक 11 से 12 के बीच. जिंदगी अनप्लग्ड में वी विल सेलिब्रेट नेशनल रेडियो डे टुडे. सो आई वांट योर पार्टिसिपेशन बिल्कुल एकदम खुलकर. हाँ, जिन्होंने कॉल नहीं किया उनको भी मैं बहुत प्यार से इनविटेशन देना चाहती हूँ. गिव मी अ कॉल टुडे एंड टेल अस अबाउट योर रेडियो एक्सपीरियंस हियर इन द यूएस, बैक इन योर कंट्री. छोटे बचपन के आपके जो यादें हैं विद योर रेडियो लिसनिंग एंड ऑल ऑफ दैट वील टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट आवर. तो ज़रूर मेरे साथ बने रहें. और फिलहाल तो इसीलिए भी क्योंकि ये जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अबाउट अटर्नी उमर ख्वाजा, ये आप सभी के फ़ोन पे ना सेव होने चाहिए और आपके फ्रेंड्स तक ये बात पहुँच जानी चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस हो या फिर स्लिप एंड फॉल का केस हो जहां पर आपको लगता है कि यू डिजर्व अ कॉम्पनसेशन, वेल यू कैन गेट योर कॉम्पनसेशन विदाउट एनी हैसल्स दैट वन हैज टू फेस टू गो थ्रू द इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल. वो सब माइनस आपको आपका कॉम्पनसेशन मिल जाएगा बिकॉज अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम प्रॉमिस दैट यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन द केस. सो दैट इज द बिग प्रॉमिस दैट दे कम विद. अटर्नी Omar.com is the website. 4693005046 is the नंबर टू कॉल. और उन्हीं के तरफ से अटर्नी उमर ख्वाजा की तरफ से ये ट्रैफिक अपडेट आप लोगों के लिए. टू मेजर कोलिशंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. वन इज ऑन लूप 12 एट ट्रिनिटी रिवर एल्मफोर्क नॉर्थ बाउंड. यहाँ पे एक मेजर कोलिशन हुआ है जहाँ पे राइट शोल्डर और राइट मोस्ट लेन पूरी तरह से बंद है. तो अगर आप एक कुछ डिटोर ले सकते हैं ज़रूर लें. देर इज अनदर मेजर कोलिशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन I-30 एट हैम्पटन रोड ईस्ट बाउंड, जहां पे राइट शोल्डर पूरी तरह से बंद है. सो दीज आर द टू यू नो प्लेसेस दैट यू हैव टू बी मोर माइंडफुल अबाउट टेकिंग. इफ यू कैन टेक अ डिटोर, वेल वेल एंड गुड. अदरवाइज अगर आपके हाथ में टाइम है तो यहां पे ट्रैफिक थोड़ा सा जाम मिल सकता है आपको. एक डिसेबल्ड व्हीकल जो मुझे दिख रहा है, इट इज ऑन I-30 एट टैरेंट एंड डैलस काउंटी लाइन ईस्ट बाउंड. तो यहाँ पे कुछ माइनर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसलिए राइट शोल्डर बंद है. नथिंग मेजर दैट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ डैलस एज फार एज ट्रैफिक इज कंसर्न. जस्ट एन अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर. Right here, let's get you this next track, ladies and gentlemen, which is from this film called Lafange Parinde. And I'd like to play it for you, क्योंकि अगर ये film दीपिका पादुकोण और नील नितिन मुकेश की, अगर मुझे लगता है कि कॉकटेल के बाद रिलीज होती, दीपिका पादुकोण की 2012 की मतलब सुपर डुपर हिट फिल्म के बाद अगर रिलीज होती तो शायद ये फिल्म ज़्यादा चलती. It is a film that released on this day in the year 2010.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरो की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
11: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
17: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
16: कैसे?
17: पेज 3 ईटरी?
16: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
17: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
16: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
0: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
3: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
9: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

0: ऐसा है कि ना कोई स्क्रीन का ड्रामा ना माइंडलेस स्क्रोलिंग का काम डैलस की ट्रैफिक में भी कर लेते हैं हम अपनी महफिल का इंतजाम. क्या कहना है यार, गानों की धुन, इन्फॉर्मेशन और हमारी इन बातों का सिलसिला. 104.9 FM जो है हमारा फर्नीचर रेडियो, और ये है एक ऐसी जगह जहाँ पे म्यूजिक और फन का बजता है, ये बनता है काफिला. तो जी हाँ, कुछ AI से मदद ली थी मैंने ये कुछ बनाने में, और इसीलिए इतने फंबल्स, और इन फंबल्स को आप माफ़ कर देते हो. हमारी बहुत बढ़िया से बढ़िया जोक या घटिया से घटिया जोक को आप यू टेक इट इन स्ट्राइड, एंड दैट इज़ व्हाट वी लव अबाउट यू ऑल. आज नेशनल रेडियो डे पे खुल्लम खुल्ला कहना चाहती हूँ यार, वी लव यू. और गले में ऐसे कभी खराश हो तो बीच में हम थोड़ा छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं, लेकिन एज आई सेड, इट इज़ ऑल डूएबल विथ ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों ने भी हमें इतना प्यार दिया है. तो इस प्यार के बदले हमने सोचा कि भाई आज का दिन पूरा इसी पे हम न्यौछावर करने वाले हैं, नेशनल रेडियो डे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोगों के साथ. येस, आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि February 13 वर्ल्ड रेडियो डे है, जो यूनेस्को ने निकाला, लेकिन US ने निकाला ये नेशनल रेडियो डे. तो हमने सोचा यार, दो दिन मौका मिल रहा है सेलिब्रेट करने का रेडियो डे, तो व्हाई नॉट. सो आज इस सेगमेंट में और अगले सेगमेंट में कुछ रेडियो से ही हम के बारे में ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सिलसिले को और उस यू नो सॉर्ट ऑफ उस कनेक्शन को जो हम और आप हर रोज शेयर करते हैं, फ्रॉम दिस साइड ऑफ द माइक टू दैट साइड ऑफ द माइक. हैप्पी नेशनल रेडियो डे टू ऑल ऑफ यू. पुरानी स्टाइल में बोला जाए तो ये रहा.
1: और अब फुर्सतगंज से बंटी बबली पप्पू और उनके अबू शाद अली सुनना चाहेंगे अदनान सामी की आवाज में स्वीटा फिल्म का एक गाना, जिसका संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और बोल है गुलजार के.

0: थोड़ा कम कर।
1: ओके।
2: तुझसे नहीं कोई मीठा।
3: स्वीटा के बाद सेनोरिटा आप लोगों के लिए ऑल द पॉपुलर सॉन्ग्स दैट आई एम गोइंग टू प्ले इन दिस सेगमेंट एंड द नेक्स्ट व्हिच इज एंटायरली डेडिकेटेड टू नेशनल रेडियो डे। आपको भी मुबारक और हमें भी हियर एट फनेशिया रेडियो। यू नो बिफोर वी हैड दोज हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीमिंग एप्स, एंडलेस स्क्रोलिंग एंड स्क्रीन इन एवरी सिंगल रूम, ये आजकल घर घर की बात हो गई है। लेकिन इन सबसे पहले रेडियो हुआ करता था द अल्टीमेट थिएटर ऑफ द माइंड। मानते हैं कि नहीं, इट इज दैट कंप्लीटली यूनिक, बिकॉज आप सोचें कि ये आपके इमेजिनेशन को मजबूर करता है कि मतलब हाइपर एक्टिव वे में काम करे। जब आपको अलग अलग वक्त की अलग अलग मेमोरीज अलग अलग गलीज में ले जाते हैं हम गानों के जरिए और कई बार बातों के जरिए, इट इज एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल। यू पेंट द पिक्चर इन योर माइंड, डोंट यू? रेडियो इज incredibly personal and nobody can take away from that. जब मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ये आपसे, जी हाँ आपसे बात कर रही हूँ, one on one, and that is the experience of radio that radio brings, and that I'm very very proud to be part of. This is Gupshup Gali with me too.
4: Ya está, he removido cielo y tierra y no te encontré, y llega hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer.
5: Name samcha, name jana, yo vi tumne mujhse kaha hai señorita.

आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने फैमिलीज के साथ यू नो आगे वो देखना चाहते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ या रिटायरमेंट या आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही जगह पे हों और सही तरीके से हों, तो जी हाँ, कनेक्ट विथ माई टाइम एक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाए, वो ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं आपके लिए, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज हो या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. इनके साथ बात करके यू कैन मेक दोज फ्यूचर प्लानिंग्स फॉर योर सेल्फ. एंड लेट मी टेल यू, दीज ऑल विल बी एब्सोल्यूटली पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. तो इसीलिए जाएं इनके पास और जाने से पहले बात कर लें यार, अपॉइंटमेंट ले लें. 4697021272 is that number, and mytimeequity.com is the website, ladies and gentlemen. Acha agla gana jo lagane wali ho na, it is also to do with radio. It is National Radio Day. Aapko bhi mubarak aur hum sab ko bhi at Fun Asia here. And we are a family, literally, kyunki itne saalon ka saath raha hai ki hum aapko na pehchan gaye hain, hum aapko samajhne lage hain, aur hamari music jo hota hai wo aapke taste ke ird gird hamare chalta hai. जी हाँ, और इसीलिए हमारी बातें भी उसी से बुनी होती हैं. आप लोगों को इतने सालों से जानते हैं ना, इसलिए हम जानते हैं कि क्या आपको पसंद है, क्या आपको ना पसंद है. एंड थिंक अबाउट इट, रेडियो हमारे लिए क्या रहा है. इट वाज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक डिस्कवरी, आवर फर्स्ट टेस्ट ऑफ ग्लोबल न्यूज, आवर फर्स्ट कनेक्शन टू ए वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेबरहुड, है कि नहीं. और आज का वक्त ऐसा जब सब कुछ हाईली विजुअल और एल्गोरिथम ड्रिवन है, ऐसे में रेडियो रिमेन्स दैट रॉ ऑथेंटिक ह्यूमन वॉइस सिटिंग राइट देयर इन द पैसेंजर सीट नेक्स्ट टू यू और इन योर होम, गिविंग यू दैट मच नीडेड कंपनी, है कि नहीं.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गाना मैंने इसीलिए खास प्ले किया क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था ना, ही वॉज अ सिंगर, और इस गाने के साथ अभिमान फिल्म की शुरुआत होती है। और ये सीन ऐसे दिखाया गया है कि स्टेज पे अमिताभ बच्चन गा रहे हैं और वही ब्रॉडकास्ट हो रहा है रेडियो पे, एंड पीपल आर लिसनिंग हिम ऑन रेडियो एंड एंजॉयिंग हिज सिंगिंग। सो इसीलिए ये गाना प्ले हुआ। और क्यों प्ले हुआ, जो अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं, बताएं आपको कि बधाई हो, इट इज़ नेशनल रेडियो डे एंड थैंक यू for tuning into Phanisha Radio 104.9 FM. Subramaniam sahab, thank you for your call, and Raj, thank you for your call, and really appreciate connecting with me on National Radio Day. सोचिए उस वक्त के बारे में जब हम छोटे थे ना, जब इंडिया पाकिस्तान में थे और घर के किसी कोने में एक बड़ा सा वुडन रेडियो या छोटा सा एक ट्रांजिस्टर रखा होता था, राइट? वो एक मतलब एक वुडन सा बॉक्स होता था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। हाँ, तो वो जो होता था ना, वो पूरे घर का सेंटर होता था, है कि नहीं? वो सुबह के यू नो कितने तो मैंने सुने भी हुए हैं अपने पापा मम्मी से, अपने दादा दादी नाना नानी से, आप लोगों ने भी सुने होंगे। ये जो आकाशवाणी होता था, यू नो दैट यूज़ टू बी वन ऑफ द थिंग्स जिससे दिन की शुरुआत होती थी। एंड इसके कितने सारे किस्से कहानी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। बहुत एक इंटरेस्टिंग मुझे स्टोरी पता चली थी, आई मे बी शेयर इट विथ यू सम अदर डे। लेकिन हाँ, वेंसडे की रात को अमीन सियानी साहब की वो जो जादुई आवाज़ होती थी, बहनों और भाइयों के साथ जो शुरुआत होती थी, वो पूरी फैमिली को एक जगह इकट्ठा करके मजे लेने का एक एक एक बहुत ही बड़ा सा एक एक क्या कहना चाहिए, एक ये एक हमारा एक एक साथ होने का एक बहुत अच्छा बहाना होता था। और जब पावर कट होता था ना, तब वही जो रेडियो है वो उसमें बैटरी लगाकर भी आप सुन सकते थे। यू नो दोज वर द टाइम्स जब हम क्रिकेट मैचेस के दौरान वी कुडंट हैव मिस्ड एनीथिंग। तो बैटरी ट्रांजिस्टर्स का तब बहुत इस्तेमाल हुआ है ना, हम स्कोर के लिए भी और स्क्रीन नहीं देखते थे हम। ये सारी चीज़ें आप सोचें कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बस सुन रहे हैं, वो कमेंट्री सुन रहे हैं रेडियो पे, वो सारी जो एक्सपीरियंसेस थी ना, वो अपने आप में कमाल थी। या वो रेडियो की गर्माहट, वो स्टैटिक आवाज़, वो प्योर मैजिक था। सीरियसली, आई विल टेल यू, you are listening to Phanisha Radio 104.9 FM. Let's get somebody who wants to definitely talk about this National Radio Day. So, chaliye sunte hain, bataiye, you are live on air. Is it that static sound? Somebody just played it? How amazing. Well, thank you so much for that. Ye to bilkul, ye jise kehte hain impromptu hua. Thank you, ji.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
4: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
5: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन। साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविन।
8: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं।
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं।
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं।
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
15: Tracks that put you on the right track.

गपशप गली विथ मी टू नेशनल रेडियो डे पे दिल खोल के गपशप कीजिए एंड इट इज अबाउट योर रेडियो एक्सपीरियंस बैक इन योर कंट्री एंड आफ्टर यू केम हियर. ये दो अलग अलग जो हमारे फेजेस रहे हैं लाइफ में ना, इन सब में कॉमन एक बात वो रही है कि भाई रेडियो ने साथ कभी नहीं छोड़ा हमारा और हमने रेडियो का साथ कभी नहीं छोड़ा. तो अगले पड़ाव पे जाएं, अगले फेज पे जाएं, यानी कि जब हम US आए और उसके बाद हमने रेडियो सुनना शुरू किया यहाँ पर, वो भी देसी रेडियो का जो मज़ा आया ना, वो उस टॉपिक तक जाएं. उसके पहले यार, इफ़ यू हैव एनी स्टोरी अबाउट योर यू नो रेडियो एक्सपीरियंस बैक इन योर कंट्री, तो ज़रूर कॉल कीजिए यार. या वो आपके चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी या मौसा मौसी के साथ, भाई बहनों के साथ अगर आप अपने कुछ शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा. आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे रात को एक ना, मुझे अब उसका नाम नहीं याद. इफ़ एनीबडी कैन टेल मी, इट वॉज इन द 90s आई बिलीव और द लेट 80s आई एम थिंकिंग, कि शो एक सुना करते थे जहाँ पे ना कहानियाँ आती थी रात को, कुछ स्टोरीज नरेट की जाती थी रेडियो पे और बहुत कमाल के तरीके से की जाती थी. तो देर वॉज अ टाइम वेन मी, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स वुड रियली डू एवरीथिंग. वो दिन का सारा कुछ काम खत्म करके उसके बाद हमने अक्सर वो सुना है. इट वॉज नॉट एन एवरी डे थिंग, आई एम नॉट श्योर इफ इट केम एवरी डे. एक्चुअली हो सकता है हफ्ते में एक बार ही आता हो या महीने में एक बार, आई एम नॉट श्योर. एक्चुअली मुझे वो याद नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये याद है कि हम सुनते थे, कुछ कहानियाँ आती थी और वो सुनते थे, बड़ा मज़ा आता था. एंड देन ऑफकोर्स द सुपर हिट सॉन्ग्स दैट वी गॉट अ टेस्ट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रेडियो ओनली एंड देन लेटर वेन वी वॉच द फिल्म एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड, राइट? सो देर आर सो मैनी मेमरीज फॉर आर रेडियो. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. अब मेमरीज की बात की जा रही है तो क्यों ना मैं आपको रक्षाबंधन का बताऊं कि भाई अगर आप अपने भाई बहनों के साथ कुछ अच्छा एक किस्सा शेयर करना चाहते हो, एक मिनट के अंदर अंदर एक वॉइस नोट आप बनाएं और उस नोट, वॉइस नोट को आप व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 एंड यू कैन विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, entertainment, resort stays and the grand prize which is sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durand. And we want to encourage you to send your 1 minute voice note as soon as possible, क्योंकि 28 तारीख की रक्षाबंधन जो है बस आ ही गया है, तो ये कुछ दिन और जो चलने वाला है उसमें ये contest का आप हिस्सा बन सकते हैं. एंड येस, डू रिमेंबर कि आपको अगर इसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए हो तो सोशल मीडिया पेजेस पे हमारे मिल जाएगा, फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पर ऑफकोर्स. और यू मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, दैट इज़ गिवन. एंड ऑल्सो दैट यू मस्ट नो कि भाई रिस्पॉन्सिबली खेलना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है. क्योंकि हम वो कैसीनो जब जाते हैं ना, कभी कभी जोश के साथ होश हो जाते हैं, इसीलिए ये कहना ज़रूरी है. ऑल्दो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई लिसनर्स कि ये हमेशा ध्यान रहेगा उनको.

यही मजे और मस्ती हम लेते आएंगे आपके लिए नेशनल रेडियो डे टुडे इट इज. हम अपनी बातचीत कंटिन्यूड रखेंगे. पाकिस्तान सोसाइटी नॉर्थ टेक्सस जो लेकर आ रही है खास कैद मेला जो सेलिब्रेशन 2026 जश्न का, आज़ादी का जश्न जो होने वाला है, इट इज ऑन 22nd ऑफ अगस्त, इसी सैटरडे की बात है, और 3 PM से लेकर 11:45 PM तक आप लोगों के लिए एट साउथ फोक रैंच इन पाकर. बट आई विल सजेस्ट कि 2 बजे के बाद सीधे पहुंच जाए ताकि सब ताज़ा ताज़ा आपको मिले, वो चाहे शॉपिंग हो, क्योंकि शॉपिंग में देखिए जो जल्दी पहुंचा उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा, है ना. और अगर खाने की बात आए तो भाई लाइन में आप पहले खड़े होंगे, इसीलिए 2 बजे के बाद इमीडिएटली आप पहुंच जाएं. 2 बजे हमारे गेट्स खुल जाएंगे उनके साउथ पार्क रैंच के एंड साउथ फोक रैंच के. दिस इज़ द एक्साइटमेंट स्पीकिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. आई एम एक्साइटेड फॉर आर पाकिस्तानी कम्युनिटी सेलिब्रेटिंग दिस वन. एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, एंट्री आपके लिए बिल्कुल फ्री है और पार्किंग भी बिल्कुल फ्री है. और साथ में यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि लाइव परफॉर्मेंसेस होने वाली है रागा बॉयज की. लेडीज एंड जेंटलमैन, 200 years ऑफ लेगेसी दैट दे आर ब्रिंगिंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑन 22nd of August, दिस सैटरडे. लेडीज एंड जेंटलमैन, बी पार्ट ऑफ इट. मीडिया पार्टनर फन एशिया रेडियो 104.9 FM. अब ये जो अगला गाना है ना, इसके साथ कुछ किस्सा है जो प्ले करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए और बताना ही पड़ेगा. यार क्या है कि दिल की धड़कन और फ्रीक्वेंसी जब मिलती है एक साथ तो शुरू होती है म्यूजिक और मस्ती की बात. तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और चेहरे पे लाइए एक अच्छी वाली स्माइल, क्योंकि आपने ट्यून इन किया है to the absolute best radio dial. Thank you very much for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM. Ye hai Gapshap Gali with me too.

And that is a song which totally encompasses the radio and Murphy radio का जो एक essence है वो इस गाने में जो हमें मिला और radio salon का जो मिला ये तो भाई यहाँ पे mention करना ही है. If you didn't pay attention मैं बता दूँ वो stanza जहाँ पर होता ना कि बर्फी जो अम्मा जी की कोक में था सोया, अम्मा ने मर्फी का रेडियो मंगाया, बर्फी मुन्ना जैसा लल्ला, अम्मा का था सपना, मुन्ना जब हौले हौले दुनिया में आया, बाबा ने सिलोन वाला स्टेशन लगाया. ये जो दो थे ना, मर्फी वाला रेडियो, यू नो व्हाट इज दैट, मर्फी रेडियो जो कि इंडिया में आया था 1948 में. एंड सुब्रमण्यम साहब, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग से निकल गया था, रेडियो सिलोन के बारे में याद है कि इस गाने में मेंशन था, बट यस. और ये एक मैसिव कल्चरल आइकॉन बन गया था ड्यूरिंग फ्रॉम फिफ्टीज टू सेवेंटीज, यू कैन से, फॉर इट्स यू नो वुडन कैबिनेट्स. और एक कैच फ्रेज था एड के लिए, घर घर की रौनक. एंड दैट आइकॉनिक मर्फी बेबी लोगो, अ क्यूट सा बेबी दैट यू सॉ इन द लोगो. एंड यस, दैट्स मर्फी रेडियो. एंड टॉकिंग अबाउट रेडियो सिलोन, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिड यू नो हाउ दिस टाइनी आइलैंड नेशन गॉट सच मैसिव ब्रॉडकास्टिंग पावर? सिलोन यानी कि श्रीलंका की बात हो रही है ना, चलिए इसके बाद बताती हूँ. फिलहाल तो ये गाना सुन लेते हैं और उसके बाद रेडियो सिलोन की कुछ हिस्ट्री निकाल के बैठने वाली हूँ मैं.

फॉर एवरीबॉडी फ्रॉम इंडिया, दिस इज ए स्पेशल चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. रेडियो सिलोन की बात करने वाली हूँ क्योंकि आज नेशनल रेडियो डे है. मुझे लगा कि रेडियो सिलोन जो कि हमारे गाने में भी आया था, इसीलिए आई थॉट आई शेयर इट विथ यू. आफ्टर ऑल चार डेकेड्स जो ब्रॉडकास्ट हुआ फ्रॉम श्रीलंका, वो तो बताना ही पड़ेगा ना. एक मतलब सोचे, मैसिव ब्रॉडकास्टिंग पावर जो था, इसका सीक्रेट एक्चुअली डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर टू से जुड़ा हुआ है. एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर the British military needed a reliable way to communicate. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलोन यानी कि आज के श्रीलंका में एक अल्ट्रा पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर सेटअप किया, राइट अंडर द कमांड ऑफ लॉर्ड माउंटबैटन. दिस वॉज इन 1944 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. और फिर दे बेसिकली यूज इट ड्यूरिंग द वॉर टू ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड सॉर्ट ऑफ एंटरटेन द एलाइड ट्रूप स्टेशन अक्रॉस साउथ एशिया. लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, the British simply left that massive state-of-the-art equipment behind. As a result of which, Radio Ceylon ki transmission itni incredible strong thi ki ye Indian Ocean effortlessly paar karke India ke ghar ghar mein pahuncha. Actually, fast forward to the 1950s to clarify it better. India ke jo information and broadcasting minister the us waqt, Mr. B.V. Keskar, unka ek western music ke taraf ek bahut ek aversion tha. स्ट्रिक्ट क्लासिकल म्यूजिक प्योरिस्ट दैट ही वॉज, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि जिस तरह के बॉलीवुड गाने उस वक्त रेडियो पे चल रहे थे. एंड ही वॉज डिटरमिन्ड टू चेंज दैट एंड ब्रिंग एवरीबडी बैक टू इन हिज वर्ड्स कोट अनकोट इंडियाज ट्रेडिशनल कल्चर. इन 1952 उन्होंने ड्रास्टिकली कम कर दिया बॉलीवुड म्यूजिक रेडियो पे प्ले करना एंड देन इफेक्टिवली बैंड फिल्म सॉन्ग्स ऑन ऑल इंडिया रेडियो, रिप्लेसिंग देम विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. तो जब ऑल इंडिया रेडियो ने बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक पर बैन लगा दिया था, क्लेमिंग इट वॉज टू वेस्टर्न एंड इनअप्रोप्रिएट, मिलियंस ऑफ इंडियन म्यूजिक लवर्स वर कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन कि भाई आप फिल्मों के गाने कहाँ सुनेंगे हम. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन श्रीलंका जंप्ड into this opportunity. Radio Ceylon swept in like a savior for all the Indians who wanted to listen to Bollywood music. Unhone ek dedicated Hindi service start ki and gave us India's Indian radio history's biggest ब्लॉकबस्टर शो बिना का गीत माला. लेडीज एंड जेंटलमैन, हर वेंसडे रात को ये आया करता था एंड द एंटायर कंट्री वुड क्राउड अराउंड देयर मर्फी रेडियोस, दैट वुडन रेडियो सेट्स, जस्ट टू हियर द मैजिक एंड मैग्नेटिक वॉइस ऑफ अमीन सियानी साहब सेइंग बहनों और भाइयों, वो कौन भूल सकता है. सीरियसली क्या आवाज़ पाई थी उन्होंने. एंड दैट इज हाउ ही केप्ट दैट गोल्डन ट्रेडिशन ऑफ प्लेइंग द हिट म्यूजिक इन बिना का गीतमाला, मेकिंग रेडियो लिसनिंग ए वीकली फेस्टिवल इन एवरी सिंगल साउथ एशियन होम. एंड दैट इज रेडियो सिलोन हिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ यू. पता है, मुंबई में बैठ के अमीन सियानी रिकॉर्ड करते थे और फिर उसे फ्लाई किया जाता था. दोज रिकॉर्डिंग्स वर फ्लोन इनटू श्रीलंका टू बी प्लेड ऑन रेडियो सिलोन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
7: ओह हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, from timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
10: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
11: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
8: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
13: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया.
15: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-7772.
16: Visit www.senadainc.com today.
17: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
18: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026. A tribute to our heritage and a celebration for all. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural activities and family fun for every age.
19: Live performance by Raga Boys.
18: Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
20: Media partner, Fun Asia Network.
21: Tracks that put you on the right track.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, छोड़ आए हैं हम वो गलियां, ये बात तो सही है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी कितने आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं, और उसमें एक चीज का आप और एडिशन कर लीजिए, इट इज होको। लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स इंटरनेशनली, एंड हाउ अमेजिंग इज दैट। जिन्होंने होको में खाना खाया है बैक इन इंडिया ना, वो जानते हैं कि यहाँ का खाना कितना पॉपुलर है, वो चाहे चना पूरी हो, आइकॉनिक सैंडविचेस हो, फ्लेवरफुल करीज हो, या फेमस होको कोल्ड कोको। जी हाँ, जरूर ट्राई कीजिए, एंड मच मोर दैट यू विल गेट ऑन द मेन्यू। अब मतलब फ्रिस्को में बैठे बिठाए अगर आपको मिल जाए तो क्या ही बात है ना। प्रेस्टन रोड, 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000 इज व्हाट यू हैव टू टेल टू योर जीपीएस, और आराम से पहुंचे, मजे में खाएं और फिर हमें बताएं। दैट्स व्हाट वी वांट यू ऑल टू डू। होको इंजॉय कीजिए, और साथ ही में एक और जगह जिसके बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पर ना आपके लिए पिज्ज़ा होता है, और वो भी पूरे ट्विस्ट, इंडियन ट्विस्ट के साथ, देसी ट्विस्ट के साथ जो मिलता है, और साथ में मैक्सिकन ट्विस्ट इन द पिज्ज़ाज ऑल्सो दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। टेल मी द नेम ऑफ द प्लेस, लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, वहाँ से $10 का अगर गिफ्ट कार्ड जीतना है आपको ना, तो कॉल करके मुझे बताना है कि ये फ्रिस्को का एड्रेस क्या है। फन पिज्जा किचन, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसका एड्रेस बता दीजिए और आप ले जाइए $10 का गिफ्ट कार्ड। ठीक है, वंस अगेन, छोड़ आए हैं हम वो गलियां। हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, हम जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल छोड़कर आए हैं यहाँ US, तो शुरू शुरू में सब कुछ कितना अजीब लगता था, डोंट यू रिमेम्बर? वो चौड़ी सड़कें, वो बड़े बड़े सुपर मार्केट्स, वो बहुत कमाल के लगते थे। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हिट करती थी उस वक्त, और वो है यहाँ की खामोशी यार, पिन ड्रॉप साइलेंस, बाहर कोई आवाज़ नहीं, और घर मतलब हमारे बैक होम सड़कों पर शोर होता था यार, आवाज़ें कितनी सारी सुबह से सुनने को मिलती थी, और वो नुक्कड़ नुक्कड़ पे, गली गली में वो जो गाने बजते थे रेडियो पे, एक क्योटिक सा वॉर्म्थ मिलता था उसमें। नहीं, यहाँ आकर जब हम पहली बार इन नेवर एंडिंग अमेरिकन हाईवेज पर ड्राइव कर रहे थे, तो जब मुझे किसी ने बताया कि भाई 104.9 FM फनीशा रेडियो सुनो, तो मैंने लगाया, और वो जो लगाया, तब से आज तक एंजॉय कर रही हूँ फनीशा रेडियो, वो देसी रेडियो सुनने का मज़ा एंजॉय कर रही हूँ, राइट या बैठे बिठाए, या देसी म्यूज़िक, लोकल कम्युनिटी, न्यूज़, बिजनेसेस,

सब कुछ देसी रेडियो के साथ ही तो हमें मिला था, नहीं? एंड सिंस देन वी हैव बीन हुक्ड ऑन, मानते हैं कि नहीं? तो नेशनल रेडियो डे पे ये तो बनता ही था कि हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करें कि भाई बिकॉज ऑफ यू वी कुड डू दिस एंड बिकॉज ऑफ यू वी विल कंटिन्यू टू डू दिस. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई शो ऑन फनीश रेडियो 104.9 FM.

जी हाँ, हजारों मील अपने घर से दूर बैठे ना, हमें यहाँ पे सोलेस मिला रेडियो सुनकर, अपनी देसी भाषा सुनकर, वो देसी म्यूजिक सुनकर जो मजा आया ना, आपको याद है आपको पहली बार फनेशा रेडियो 104.9 FM के बारे में किसने कहा था? मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे याद नहीं आया. मुझे याद है मैं किन को सुनती थी. मैं शबनम जी को सुनती थी, मैं अम्बरीन को सुनती थी, एंड देयर वर अदर्स जिनको मैं सुना करती थी, और आज भी वो हमारे साथ हैं और आज भी हम उनको एंजॉय करते हैं. सो हैट्स ऑफ टू देम एंड टू एवरी अदर कॉलीग ऑफ माइन इन हियर जो अपना एक एक एक एफोवेंसेंस जो लेकर आते हैं, दिन चाहे उनका जैसा भी वो आपका दिन बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स दैट आर टीम मेंबर्स डू हियर. सो थैंक यू टू देम एंड थैंक्स टू यू ऑल कि आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जिस तरह से हमारे शोज पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. क्योंकि क्या है ना कि रेडियो का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है कि सडनली यू नो द लोनली कम्यूट्स या घर और नेबरहुड का सन्नाटा एकदम वो भर जाता है, वो लोनलीनेस खत्म हो जाती है. फनेशिया हैज बिकम द ब्रिज दैट कनेक्टेड अस आर रूट्स टू आर डेली अमेरिकन हसल, गिविंग अस दैट एब्सोल्यूट बेस्ट अनफिल्टर्ड देसी रेडियो एक्सपीरियंस राइट हियर इन द हार्ट ऑफ टेक्सास. इससे ज्यादा यार हमें क्या ही चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं?

अच्छा, जलपा से बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि बचपन से लेके 5-6 साल की उम्र से लेकर अब तक वो जो रेडियो सुनती हैं उसका एक्सपीरियंस जो बता रही थी वो मुझे, एंड देन व्हेन शी मूव्ड टू द यूएस एंड स्टेड इन कोलोराडो फॉर अ बिट एंड देन लुइजियाना एंड फाइनली जाके यहाँ जाके उन्हें देसी म्यूजिक का जो मज़ा मिला. तो जब यहाँ पे आया करती थी वो पहले व्हेन शी वॉज नॉट बेस्ड हियर, तब उनको लगता था कि यार यहाँ से जाना नहीं है, देसी रेडियो का एक्सपीरियंस इतना मजा आता था. शी सेड शी स्टार्टेड हर डे विद शबनम जी एंड एंडेड विद डीजे मूडी एंड हर किड्स यूज्ड टू लव डीजे मूडी एज वेल व्हेन ही सेड आई लव यू डैलस. एंड डैलस कौन नहीं प्यार करता, फॉर द वेरियस रीजंस बट ऑल्सो फन एशिया रेडियो. सो नेशनल रेडियो डे, हैप्पी नेशनल रेडियो डे टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन. बनता है कि वी सेलिब्रेट इट टुगेदर, आफ्टर ऑल वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, वी टॉक अबाउट DIY struggles, we talk life and its hustles, we share memories, yaar humne yaar recipes bhi share ki hain, and we complain about the Texas heat together. We are in this together, ladies and gentlemen. Ye frequency ek community ban chuka hai, ek ऐसी एक्सटेंडेड फैमिली है जिसका आप भी पूरी तरह से हिस्सा हैं. सो ऑन दिस नेशनल रेडियो डे द बिगेस्ट थैंक यू गोज टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज अ रेडियो स्टेशन इज नथिंग विदाउट इट्स लिसनर. इन ए वर्ल्ड जहां आप अपना चाहे तो क्यूरेटेड म्यूजिक प्लेलिस्ट बना सकते हो और इन सेकेंड्स बना सकते हो, यू स्टिल चूज टू ट्यून इन एंड लिसन टू रियल ह्यूमन. यू चूज द स्पॉन्टेनिटी, यू चूज दोज समटाइम्स एब्सोल्यूटली वंडरफुल जोक्स, और कभी कभी वो जो जोक्स बिल्कुल फ्लैट पड़ते हैं वो भी, द माइनस लिप्स एंड फंबल्स दैट वी हैव, द लाइव कॉलर्स, द शेयर्ड मोमेंट्स ऑफ नॉस्टैल्जिया. इसे एक कंफर्टिंग खिचड़ी कहूँ या घर में बनाई हुई वो मजेदार बिरयानी कहूँ, क्या कहूँ इसे?

0: लिसन नेशनल रेडियो डे ना मेरे साथ मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी. रक्षा जी को मैंने होल्ड पे रखा है एंड थैंक यू रक्षा जी फॉर कॉलिंग इन एट द लास्ट मिनट. इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड ऑल माय लवली लिसनर्स. वेल एजी फिनटैक्स दे आर द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ माय शो. द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म इन द US. AGFintax.com इज द वेबसाइट एंड नंबर इज
1: हीरे मोती.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
3: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
4: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
6: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं.
5: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
6: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
5: इंडिया तक.
6: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
4: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं.
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं.
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं.
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट AGFintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTechs. Your growth, our strategy.
10: AG FinTechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
13: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
12: Fikar not. We have the perfect solution.
14: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
15: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
17: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: Sadia.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
3: दीवारा
8: वही आप
16: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: रेडियो, आज तुमसे एक बातचीत है. सो हेलो हेलो डैलस, इट्स थर्सडे आफ्टरनून एंड वेलकम टू द आफ्टरनून अड्डा विथ मी आरजे स्निग्धा, ओनली ऑन फनीशिया 104.9 एफएम पर. सो इट्स थर्सडे, इट्स गोना बी द पॉडकास्ट डे. मैं हूँ स्निग्धा और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा ऑन फनीशिया 104.9 एफएम. और आज का अड्डा थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज है नेशनल रेडियो डे. रेडियो की खूबसूरती ये है ना, स्क्रीन के बिना भी कोई आवाज आपका मूड बदल सकती है, आपको कंपनी दे सकती है, या कभी कभी वो बात कह देती है जो आपको खुद से ही सुनना होता है. आज का शो एक पॉडकास्ट के जैसा है. नो लेक्चर्स, नो परफेक्शन, बस ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन अबाउट आवर माइंड, बॉडी एंड यू. तो कॉफी इमेजिनरी मेरी तरफ से. आई नो इट्स लंच टाइम बिकॉज वी वर टेलिंग पॉडकास्ट, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट मी बी अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड से इट एज कॉफी. हेडफोन्स आपके या आप गाड़ी में सुन रहे हो, और चलिए खुद से मिलते हैं आज. सो लिसनर्स, आज मुझे ये बताइए एक वर्ड जिसमें आपके माइंड को लगता है आइदर योर काम, योर tired, you're confused, are you happy or are you overwhelmed? What your body and mind feels today? चलिए मुझे कॉल करके जरूर बताइए. आज नेशनल रेडियो डे है. लेट्स स्टार्ट द थर्सडे आफ्टरनून विथ फुल ऑन मूड ऑन, क्योंकि कल फ्राइडे है, वीकेंड आ रही है. तो अंटिल देन लेट्स कीप द एनर्जी हाई.
1: नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं, उसकी शादी हो रही है.

पालकी में होके सवार चली रे और आपकी सेलिब्रेशन भी हो एकदम रॉयल और यादगारी। वेडिंग हो, ग्रेजुएशन हो, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन, वेनेसा इवेंट्स के साथ प्लान का टेंशन बिल्कुल खत्म। वेन यू सेलेक्शन गॉर्जियस डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय रेनॉल्ट बसेरा ग्रैंड, सब कुछ ही एक ही प्लेस पर। तो आपको बस अपनी मेमोरीज बनानी है, बाकी सेलिब्रेशंस का हर डिटेल संभाल लेगा वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर। आज ही कॉल कीजिए हरि बसेरा जी को एट 4694428770। पालकी में होके सवार चली रे और आपकी ड्रीम सेलिब्रेशन वेनेसा इवेंट्स के साथ तैयार चली रे। कीप लिसनिंग टू फन एशिया, हम बात करेंगे और भी।

You are listening to The Afternoon Adal with me, RJ Snigda, only on Funny Show 104.9 FM. So let's get back to our podcast time. So we were talking about mind, body and ourself. अगर मैं mind की बात करूँ, कभी notice किया है कि हम mental health शब्द सुनते ही सोचते हैं कुछ problem तो नहीं है ना, but mental health उससे काफी ज्यादा broad है. WHO की according mental well-being का मतलब लाइफ के स्ट्रेसेस को हैंडल कर पाना, अपनी एबिलिटीज को रियलाइज करना, सीखना और उन पे काम करना है. एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो अगर बोल रही है कि बस इट इज़ नथिंग एल्स, इतना स्ट्रेस मत लो, तो मत लो स्ट्रेस. तो अगर आज आप बस थोड़े टायर्ड है, थोड़े इमोशनली ड्रेन्ड है या सिंपल लाइफ को प्रोसेस कर रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि आप वीक है. ह्यूमन होना ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है. हम हर दिन सेम एनर्जी के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते. जैसे फ़ोन को चार्जिंग चाहिए, वैसे ही माइंड को पॉज चाहिए, कनेक्शन और रिकवरी भी चाहिए. आज आफ्टरनून अड्डा में हम मेंटल हेल्थ को स्केरी टॉपिक नहीं, डेली कॉन्वर्जेशंस बनाएंगे, क्योंकि अपने माइंड का हाल पूछना भी सेल्फ रेस्पेक्ट की एक फॉर्म होती है. आप अपने दोस्तों को पूछते हैं कि आर यू ओके, तो आज थोड़ा उल्टा कर देना, आप अपने खुद को भी पूछो आर यू ओके एंड लेट मी नो. आई वॉन्ट यू गैस टू बी ओके, क्योंकि वीकेंड इज लोडिंग.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Funasia 104.9 FM par. So before we got into the break, my question was, mental strength ka real meaning kya hai? Mental strength ka matlab ye nahi ki aapko kabhi rona nahi chahiye, kabhi anxious nahi honi chahiye, ya har situation mein I am strong bolkar smile karni hai. Real strength कभी कभी ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे लिए डिफिकल्ट है. स्ट्रेंथ का एक परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी है.

आई एम स्ट्रांग बोलकर स्माइल करनी है, रियल स्ट्रेंथ कभी कभी ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे लिए डिफिकल्ट है। स्ट्रेंथ का एक परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सिचुएशन को समझना, हेल्प लेना, बाउंड्रीज बनाना और फिर स्लोली मूव फॉरवर्ड करना। और प्लीज कंपैरिजन से मेंटल स्ट्रेंथ को मेजर मत कीजिए, किसी और का हाईलाइट रील देखकर या अपनी बिहाइंड द सीन्स की लाइफ को जज करना अनफेयर होती है। अगर आज आपका पेस स्लो है तो स्लो होना फेलियर नहीं, कभी कभी रिकवरी भी प्रोग्रेस होती है। और अगर फीलिंग्स बहुत हैवी हो रही है या डेली लाइफ इफेक्ट कर रहा है, प्रोफेशनल सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं होती, इट्स जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लिसन टू योर सेल्फ, आपके लिए स्ट्रांग होना क्या है, चुप रहना, फाइट करना या जरूरत पड़ने पर हेल्प मांगना। फॉर मी आई थिंक इट शुड बी लाइक वेन एवर आई नीड समवन, हूएवर इज क्लोज टू मी, आई जस्ट them कि कैन यू प्लीज बी देयर फॉर मी, एंड पीपल हु रियली केयर फॉर मी एंड हु रियली लव फॉर मी, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी, लाइक माई डैड, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, ऑल ऑफ देम, एंड इवन माई सिस्टर समटाइम्स। सो देयर माइट बी सम पीपल हु डू केयर फॉर यू एंड हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू वेन यू आर मेंटली वीक। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू योर सेल्फ। अगला गाना आपके लिए, कीपिंग द एनर्जीज हाई। जस्ट बिकॉज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपकी एनर्जी लो तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको और मोटिवेट करने वाली हूँ।

0: You are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanisha 104.9 FM. But now it's the time we have Ms. Shefali, a home mortgage expert from myfamilyhomeloan.com, jo families ko home loan options samjhane aur buying process ko simple banane mein help karte hai. So hi Ms. Shefali ji.
1: Hello, good afternoon Phanisha. To all Phanisha listeners.
0: We have a question for you today. अगर homeowner के पास property में equity है, तो क्या refinance के through cash access किया जा सकता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है. इसे cash out refinance कहते हैं. अगर घर की current market value mortgage balance से ज्यादा है, तो homeowner eligible equity का एक portion cash में access कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 400,000 है और आपकी करंट मॉर्गेज बैलेंस 250,000 है, तो प्रॉपर्टी में अप्रॉक्सीमेटली $150,000 की इक्विटी है. लेकिन पूरी इक्विटी कैश में नहीं मिलती है. वो डिपेंड करता है कि आपको कितना कैश मिल सकता है प्रॉपर्टी टाइप पे, ऑक्यूपेंसी पे, आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे, इनकम अप्रेजल और लेंडर के मैक्सिमम एलटीवी गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है. एलटीवी इज लाइक लोन टू वैल्यू रेशियो. कैश आउट फंड जो होता है उसको आप होम इम्प्रूवमेंट, हाई इंटरेस्ट, डेट कंसोलिडेशन, एजुकेशनल पर्पसेस या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन रीफाइनेंस से करंट मॉर्गेज रिप्लेस हो जाता है, इसलिए न्यू इंटरेस्ट रेट, मॉर्गेज पेमेंट और क्लोजिंग कॉस्ट को केयरफुली इवेल्युएट करना जरूरी है बिफोर गोइंग फॉर दैट ऑप्शन.
0: ओके, कैसे पता चलेगा कि रीफाइनेंस करना फाइनेंशियली बेनिफिशियल है या करंट मॉर्गेज को कंटिन्यू करना बेटर है?
1: सिर्फ लोअर इंटरेस्ट रेट देखना इनफ नहीं होता है, हमें कंप्लीट कॉस्ट वर्सेस सेविंग एनालिसिस करना जरूरी होता है, जो काफी पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी करंट रेट वर्सेस न्यू रेट क्या होगी, आपका करंट पेमेंट वर्सेस आपका जो प्रपोज पेमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है, क्लोजिंग कॉस्ट कितना है रीफाइनेंस का, लोन टर्म रीसेट हो रहा है, जैसे काफी दफा दे हैव अ 3 ईयर टर्म जिसके बाद बलून पेमेंट ड्यू होता है. सो उस टाइम पे अगर आपके लिए ये वर्कआउट करता है ऑप्शन, आपको बेटर टर्म्स मिल रहे हैं, देन यू शुड लुक फॉर इट. आपका प्रॉपर्टी कितने साल आप रखना चाहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. आर यू प्लानिंग टू कीप इट लॉन्ग टर्म और योर गोल इज टू जस्ट कीप इट अ शॉर्ट टर्म एंड देन सेल इट आउट. सो इन सब के बेस के ऊपर डिसाइड करना चाहिए कि आपका रीफाइनेंस आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है. करंटली रेट अगर आपका ऑलरेडी लो है, तो रीफाइनेंस से रेट या लाइफ टाइम इंक्रीज हो रहा है या आपको उसमें कुछ और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपका टर्म एक्सटेंड हो रहा है कि आप उसको नियर फ्यूचर में सेल आउट करना चाह रहे हैं, अभी आपको खाली कैश आउट निकाल के इक्विटी यूज करना है, उस बेसिस एवरी इंडिविजुअल सिनेरियो इज डिफरेंट. सो देर आर सो मैनी बेनिफिट्स टू इट टू, बट यू ऑल्सो नीड टू लुक इन टू योर इंडिविजुअल सिनेरियो वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू डू इट राइट नाउ और शुड यू वेट, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो एंड योर गोल. वॉट आर यू ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दैट रीफाइनेंस, वॉट आर यू ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दैट कैश आउट, वॉट इज द पर्पज ऑफ द कैश आउट, how you going to use that, it all depends on each individual situation. So you can call us and we can help you discuss the refinance options or HELOC options or HELOAN options on investment properties. My number is 469-734-3338.
0: Thank you so much, Shefali ma'am.

लंच टाइम हो गई है. इफ आपने अभी लंच अभी तक नहीं किया है तो बोरिंग खाना क्यों. सिजलिंग कबाब्स, चपाती, चटपटी, चाट, फ्यूजन बाइट्स और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स. अगर आपने Page 3 ईटरी एट हब 121 ट्राई नहीं किया है तो सीरियसली यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. यहाँ इंडियन स्ट्रीट फूड मिलता है मॉडर्न फ्लेयर के साथ, परफेक्ट फॉर अ क्विक लंच, फूडी मीटअप या फ्रेंड्स के साथ चिल. तो लंच का मूड सेट कीजिए और हेड टू Page 3 ईटरी एट हब 121 फॉर मोर डिटेल्स. यू कैन इवन विजिट Page3eatery.com. Page 3 ईटरी, जहां लंच भी फुल ऑन फ्लेवर और वाइब्स के साथ.

एक लाइन ना हम बहुत सुनते हैं, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लेकिन इसका मतलब क्या है? हर सिचुएशन में सिर्फ अपनी मर्जी चलाना बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेल्फ प्रायोरिटीज का मतलब है अपनी नीड्स को कॉन्वर्जेशन में इंक्लूड करना। आपको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बाउंड्री चाहिए तो बाउंड्री भी इम्पॉर्टेंट है। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो तो हर किसी को प्लीज करना ज़रूरी नहीं होता है, और दूसरों के ख्याल रखते रखते अगर आप खुद कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाते हो तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल भी नहीं होता है। WHO भी सिर्फ सेल्फ केयर को, हेल्थ को मेंटेन करना और इलनेस से कोप करने में सपोर्ट के रूप में डिफाइन करती है। ये प्रोफेशनल हेल्थ केयर के रिप्लेसमेंट नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो आज का कैफे एक सिंपल सा सवाल पूछती है, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ लेकिन क्या मैं खुद के लिए भी अवेलेबल हूँ? आज एक छोटी सी चीज़ सिर्फ अपने लिए स्केड्यूल कीजिए विदाउट एनी गिल्ट। इट कैन बी अ वर्कआउट, इट कैन बी अ ग्रोसरी शॉपिंग। डोंट टेल मी ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि आई नो सारी मम्मी आके मुझे मारेगी कि डू यू थिंक ग्रोसरी शॉपिंग इज सेल्फ टाइम? गो फॉर अ पेडिक्योर, और आई एम नॉट फॉरगेटिंग द बॉयज ईदर। यू कैन गो प्ले विथ योर फ्रेंड्स, चिल फॉर सम टाइम, और यू कैन इवन गो फॉर अ मेडिटेशन जस्ट फॉर योर सेल्फ। प्लान समथिंग जस्ट फॉर योर सेल्फ एंड फील लाइक, टेल मी हाउ डू यू फील अबाउट इट, बिकॉज आई फील अमेजिंग अबाउट इट व्हेन यू आई डू पिलाटीज फॉर माई सेल्फ। और मुझे वो टाइम दिन में माई फेवरेट टाइम, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मी माई बॉडी, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। सो ऑलवेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज एंड प्रायोरिटाइज एंड डू एटलीस्ट वन थिंग इन अ डे फॉर योर सेल्फ।

थिंक ड्रामा क्वीन इज? डू यू थिंक हमारी माइंड ड्रामा क्वीन है या हमारी बॉडी ड्रामा क्वीन होती है? बॉडी का प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर, माइंड का मूड ऑफ हो तो इग्नोर, बट कनेक्शन बहुत रियल है. फिजिकल एक्टिविटी, डू यू नो हु डज फिजिकल एक्टिविटी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिम सेंस, मैं नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी के बेनिफिट्स सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं होते. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करती है और डिप्रेशन और एंगजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस भी करती है, एंड इट कैन हेल्प अस फॉर दैट ऑल्सो. और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ हार्ड कोर वर्कआउट नहीं, वॉकिंग, साइकिलिंग, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, हट्टे कट्टे, एक्टिव हाउस होल्ड भी और वर्क में भी हम ये कर सकते. तो अगर जिम आपकी पर्सनैलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आज दोपहर में बाहर ना जाए, घर पे ही एक 10 मिनट वॉक कर लो खाना खाने के बाद. आई शुड टेल यू 10 मिनट मतलब वेन एवर आई ईट आई जस्ट डोंट सिट. ऐसे ही खाना हो गया तो मैं बैठ नहीं जाती हूँ, मैं 10 मिनट वॉक करके ही बैठती हूँ. मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल एंड सी हाउ इट चेंजेस. इट मेक्स यू फील सो एक्टिव, सो अवेलेबल. लिफ्ट की जगह स्टेयर्स में जाइए, मीटिंग के बाद थोड़ा वॉक कीजिए, एक फेवरेट सॉन्ग पे गाना चला दो और नच नाच लो ना अपने बाथरूम में, कोई आपको आके नहीं देखेंगे. इट इज सो, देर आर सो मेनी थिंग्स टू कीप योर बॉडी मूविंग एंड योर माइंड फोकस. सो आई हैव गिवन यू सो मेनी things to do, तो कीजिए and keep your body always moving and keep yourself always active. मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ बट आज हमारे पॉडकास्ट में सिर्फ हम यही बात करने वाले हैं, बट आई एम गिविंग यू सच गुड टिप्स. प्लीज़ फॉलो गाइज़.

फ्लावर, प्यार की बात हो तो स्पार्कल तो बनती है, और अगर डायमंड्स का स्पार्कल हो तो और भी इररेसिस्टिबल। तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज हियर। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 18 कैरेट से ऊपर की ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन। तो अपने लव को बोलो, तेरा नहीं मैं लवर, बस तनिष्क को स्पार्कल चाहिए होती है अपने लवर को चमकाने के लिए। विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को एंड मेक योर लव स्टोरी शाइन इवन ब्राइटर। तनिष्क, बिकॉज सम लव डिजर्व्स टू स्पार्कल। तो 25% ऑफ ऑन डायमंड्स, लेडीज कम ऑन, गेट योर मैन एंड गेट गोइंग टू तनिष्क।

0: You are listening to the afternoon Adda with me, RJ Snigda, only on Phonesia 104.9 FM. Par dosa lovers ready ho, kyunki aaj National Radio Day hai and we have the giveaway from San Idli Wedge Restaurant. It is located at Highway 121 or Custer Junction. Par milenge crispy dosas, fluffy idlis, authentic South Indian flavors, Jain friendly options aur shahar ki best filter coffee. Aur ab आता है गिव अवे का ट्विस्ट. अभी मैं ये तो नहीं कर रही हूँ कि मैं बॉलीवुड का ऑडियो चलाऊंगी, आप बस बता दो. मैं ये करने वाली हूँ कि एक आरजे की वॉइस प्ले करूंगी, आपको बस गेस करनी है ये किस आरजे की आवाज है. सही जवाब देने वाले जीत सकते हैं एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. तो खाने खोल के रखिए, वॉइस पहचानो और गिव अवे जीतो. दिस इज अगेन लोकेट San Idli Wedge Restaurant, Highway 121 or Custer Junction. Par taste authentic and giveaways fantastic. So get ready, people. And she is my favorite RJ, and I'm sure you might known her. And calls tap tap tap tap aa jayenge.
1: Listen, meri awaaz hi meri pehchan hai. Aisa log kehte hain. To batao, batao.
0: So that's it. तो बताओ बताओ, कॉल कीजिए 972-235-5555 पर. नेशनल रेडियो डे है एंड आई एम एक्साइटेड कि कौन बोलेंगे ये आरजे कौन है और कौन पाएंगे फ्री डोसा विद फिल्टर कॉफी. अंटिल देन नेक्स्ट गाना एंड आई एम वेटिंग फॉर द आंसर.

You are listening to Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanisha 104.9 FM. Par. So, National Radio Day hai, and you know what was my question? Guess the RJ. And our listeners, I'm so proud of you and thank you so much for listening to Phanisha. And you were right, it was RJ. Me too. She is my favorite RJ and I love her voice. And we even have our winners and they get the free dosa with filter coffee. So, head on to Sanidly Vegetarian Restaurant. So, अब आते हैं उन चीज़ों पर जब सबको चाहिए होती है लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं. इट इज़ यू नो वॉट द वर्ड इज पॉज. हम बिजी रहने को अचीवमेंट समझने लगते हैं. कैलेंडर फुल, नोटिफिकेशंस फुल, ब्रेन फुल और फिर हम कहते हैं आई नीड अ ब्रेक. स्लीप भी इसी कॉन्वर्जेशन का मेजर पार्ट है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस गाइडेंस का मुताबिक इनफ स्लीप बॉडी और माइंड को दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और कंसिस्टेंट रूटीन एंड कंफर्टेबल स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू माइंड दिस कि आप एटलीस्ट 8 घंटे सो रहे हैं बिकॉज इफ यू आर मिसिंग योर स्लीप यू आर मिसिंग योर होल रूटीन. अंटिल देन नेक्स्ट सॉन्ग.

डॉक्टर के पास जाके सिर्फ 5 या 10 मिनट में कंसल्टेशन खत्म कर ली है। पैच एंड हेल्थ प्राइमरी केयर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ हर अपॉइंटमेंट के लिए पूरे 30 मिनट होते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ को समझने के लिए वक्त बहुत ज़रूरी होता है। एनुअल फिजिकल एंग्जाइटी केयर, अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स के लिए फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग और मोर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। क्योंकि पैशन हेल्थ में आप सिर्फ पेशेंट नहीं है, उनके लिए अपने परिवार होते हैं। तो अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। कॉल देम एट 214-666-6259 एंड स्केड्यूल your appointment today. Giving yourself priority is important, and that's what we're talking about today in our podcast cafe on a Thursday afternoon.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में? सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
8: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
4: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: वेट, इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं ही तो।
13: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
8: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
14: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
15: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
14: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
15: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। डोर्स ओपन एट 2 PM, एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। Mela 2026.
4: Media Partner, Fun Asia Network.

You are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Funisha 104.9 FM पर. So that was about our podcast today. और आज का trending topic, did you know, सिर्फ headphones या headlines तक limited नहीं होती है. Social media से लेकर everyday conversations तक सब जगह इसी की बस है. लेकिन क्या आपको पता है कि ये ट्रेंड एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ और कितना पॉपुलर क्यों है? चलिए 60 सेकंड्स में जानते हैं कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वो बात जो आपको नहीं पता है. फॉर दिस स्टे ट्यून्ड, दैट इज नन अदर देन आउट ट्रेंड्स दैट इज गोइंग ऑन इंस्टाग्राम. हम बात कर रहे हैं उसके बारे में.

was talking about the outruns going on Instagram. Outruns is nothing, but I was just gonna talk about a planet. I just wanted to grab your attention for a little time. Venus ko Earth ki sister planet se kaha jata hai because it's the most small, same size as Earth. But mystery ye hai, Venus par ek day uske year se bhi longer hoti hai. You know why am I talking about Venus? Because that is how we should even control our body. You don't, आपको भागने की जरूरत नहीं है कभी. यू कैन इवन गो स्लो. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वीनस अपनी एक्सिस पर इतना स्लोली रोटेट करता है कि वहाँ सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट ही माइंड ब्लोइंग होता है. तो सवाल ये है, इतना सिमिलर को वुड यू लाइक थिंक अर्थ इज बेटर और वीनस इज बेटर? आई थिंक ऑल द बिजी पीपल वुड नेवर गो ऑन वीनस, बट ऑल द पीपल हु वॉन्ट थोड़ा ठंडा दिमाग, थोड़ा शांति सी लाइफ, दे वुड डेफिनेटली गो ऑन वीनस. कीप लिसनिंग टू फनेशिया.

You are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snick, the only on Funny Show 104.9 FM. पर आपके बिजनेसेस और टैक्सेस को बनाइए सिंपल और स्ट्रेस फ्री विद AJ Fintax, अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म एंड अकाउंटिंग फर्म में से एक. चाहे आप इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप हो या एस्टेब्लिश बिजनेस, AJ Fintax देता है बुक कीपिंग, पे रोल, टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बिजनेस एडवाइजरी, ऑल अंडर वन रूफ. Trusted, efficient, और आपकी सक्सेस के लिए committed. AJ Fintax, your partner for a stronger financial future. You can call them on 469-942-988. Yeah, you can even visit them on ajfintax.com. AJ Fintax, finances को रखे organized and future को रखो secured.

हैव अ ब्यूटिफुल अनाउंसमेंट फॉर यू. दिस रक्षाबंधन फिनिशिया रेडियो और चौकटो कैसीनो एंड रिसॉर्ट दुरंत चाहते हैं कि आप एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन एयर ऑन आफ्टरनून अड्डा और एनी शो ऑफ फनीशिया. यू कैन कॉल अस एट 972-235-5555 पर एंड ऑल यू हैव टू डू इज शेयर एन अनफॉरगेटेबल मेमोरी एंड यू हैव अ चांस टू विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट रिसॉर्ट स्टेज एंड ग्रैंड प्राइज एक अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिसॉर्ट दुरंत. सो दिस इज अमेजिंग थिंग एंड इट्स ऑगस्ट एंड यू नो रक्षाबंधन आ रही है. बस हमारे साथ कॉल कीजिए और शेयर कीजिए अपनी unforgettable yaadein with your siblings and we're more than happy to listen to all your beautiful stories. And the next track is my favorite song. Keep listening to Funny Share Radio 104.9.

हो सनम हो जिगर, तुमको हो क्या ही खबर कैसे कटी ये रातें हैं। कहते हैं सब मगर

सफर चाहे जिंदगी को या रोड का, कभी कभी एक एक्सीडेंट पूरी जर्नी बदल देती है। अगर आप कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल के इंसिडेंट के शिकार हुए तो अटॉर्नी उमर ख्वाजा आपके केस के लिए फाइट करेंगे और आपको वो कॉम्पेंसेशन दिलाने में मदद करेंगे, तो आप जो आप डिजर्व करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के प्रेशर से परेशान मत होइए, अपने राइट्स के लिए राइट लीगल हेल्प लीजिए। और सबसे खास बात, यू डोंट पे अंटिल यू विन। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करें 4693005046 या विजिट करें attorneyomar.com। अटॉर्नी उमर ख्वाजा, योर जर्नी डिजर्व्स जस्टिस।

दिल डूबा किसकी गानी गाना है ये? इट इज नन अदर देन सोनू निगम. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. द वन एंड ओनली सोनू निगम आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट. एक्सपीरियंस रिवोल्यूशन ये हो रही है ऑन सैटरडे September 26, 8:30 PM एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपकी फेवरेट गाने, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल इन लाइव. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360 शोज. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर नन अदर देन फन एशिया रेडियो. और नेशनल रेडियो डे पर मुझे रेडियो की सबसे ब्यूटीफुल चीज याद आती है, एक आवाज, एक लिसनर और बीच में एक इनविजिबल कनेक्शन. आप डैलस में कहीं पे भी हो, ड्राइव कर रहे हो, खाना खा के बस बैठे हो, या कॉफी बना रहे हो, ऑफिस में हो, थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पेंड दिस आफ्टरनून विथ यू. मैं हूँ स्निग्धा. दिस इज आफ्टरनून अड्डा ऑन फन एशिया 104.9 FM. रेडियो को सुनते रहिए, कॉन्वर्जेशन को लाइव रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप से कनेक्टेड रहिए. हैप्पी नेशनल रेडियो डे. मिलते हैं नेक्स्ट अड्डा में. तब तक माइंड को थोड़ा स्पेस, बॉडी को थोड़ा केयर और खुद को थोड़ा एक्स्ट्रा काइंडनेस दिखाइए. एंड प्लीज कीप लिसनिंग एंड प्लीज Be connected to Funasia Radio 104.9 FM per, and we will meet next week, Monday to Thursday, 12:30 to 2:30. It will be me who will be on Afternoon Adda, or hum der sari aur baatein bhi karenge. Thank you, guys.

0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: भूख लगी
4: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
7: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया।
7: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
9: Visit www.sanadainc.com today.
10: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
13: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Furniture Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Thank you Snigdha for an absolutely beautiful show. And music का सिलसिला Furniture पे आपके लिए जारी रहता है 24/7. हम करते हैं आपको entertain as well as informed रखते हैं what is going on everywhere. और आज है जी Thursday. Thursday को afternoon drive time with Sunehri Kiran. May first Thursday of every month we do food junction, जहां मैं आपको लेके जाती हूँ मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों में, जहां हम बात करते हैं उनके local favorites क्या हैं, उनके देसी favorites क्या हैं, international cuisine क्या खाते हैं वो, उनके dessert favorites क्या हैं, ये सारी बातें होती हैं food junction में. But that happens on the first Thursday of every month. The rest of the Thursdays of month we do वो 90s का Bollywood, आपका one of the most favorite segments, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा calls आती हैं. आप सब अपने पसंद के गाने बताते हैं, फिल्मों के तस्करे होते हैं और 90s के बॉलीवुड को जो हम कितने प्यार से उसको सेलिब्रेट करते हैं. पिछले कई हफ्तों से हम बॉलीवुड की 90s के बॉलीवुड की डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं. जैसे ही हम वापस आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि आज हमने 90s की क्या सेलिब्रेशन करनी है. सो लेट्स बिगिन. दिस इज वो 90s का बॉलीवुड राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

माय टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाई आपको हेल्प करता है एज एन इंडिविजुअल या फिर फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. चाहे आप प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म वेल्थ या आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो या फिर यू आर प्लानिंग ऑन ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट, माय टाइम इक्विटी ऑफर करता है आपको innovative financial solutions और साथ ही साथ आपको offer करता है personalized solutions जो आपकी needs के इर्द गिर्द tailor किए जाते हैं. तो मिलिए उनकी team से, उन्हें call कीजिए. If you have any question, that number is 469-702-1272 is that number. या फिर आप उनकी website visit कर सकते हैं. That website is mytimeequity.com. That is mytimeequity.com. अच्छा जी, मैंने ऊहू भी कर लिया यहाँ पे. अच्छा, आज है जी वर्ल्ड रेडियो डे. इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे, स्पेशली हम तमाम रेडियो पीपल के लिए जो रेडियो को सेलिब्रेट करते हैं. और इस खास दिन जो है वो हम बात करेंगे रेडियो की, रेडियो के बारे में, व्हाई इज रेडियो सो स्पेशल इन आवर लाइफ. लेकिन वो तस्करा होगा, गाने बीच में चलते रहेंगे और साथ साथ तस्करा भी होता रहेगा.

अच्छा जी, ट्विस्ट ऑफ टंग हो जाता है, नॉट वर्ल्ड रेडियो डे, वो फॉरेन अंदाजा हो गया मुझे, क्योंकि वर्ल्ड रेडियो डे तो हम फरवरी में मनाते हैं. दिस इज नेशनल रेडियो डे टुडे, अगस्त 20th, आज का दिन इज द नेशनल रेडियो डे. ये वो दिन था, दिस मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ स्टेशन 8MK, जिसे अब आजकल WWJ कहा जाता है इन डिट्रॉयट. दे स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग रेगुलर डेली प्रोग्रामिंग ऑन August 20th, 1920. तो आप देख लीजिए कि 1920 अब 2026 हो गया है, तो अराउंड 106 साल हो गए हैं US में नेशनली रेडियो को ब्रॉडकास्ट होते. इट इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग माइलस्टोन्स इन द US. तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल रेडियो डे, और बहुत सारा कुछ मैं आपके वो बताने वाली हूँ. हम बात करेंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे, यू नो, द एवोल्यूशन, वाई नेशनल रेडियो डे इज स्पेशल, और रेडियो के आने के बाद क्या क्या हुआ, आवाज़ें कैसे हमारी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट हुई, और भी बहुत कुछ हम कवर करेंगे. अच्छा, साथ साथ 90s का बॉलीवुड तो चल ही रहा है, तो आपके लिए कुछ 90s के बेहतरीन गाने मैं प्ले कर रही हूँ. अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे कॉल करके जरूर रिकमेंडेशन दीजिए. इफ आई कैन फिट इन योर चॉइस ऑफ सॉन्ग, आई विल. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
1: नेशनल रेडियो डे सेलिब्रेट करते करते हम बढ़ेंगे आगे और कुछ आपकी रिकमेंडेशंस भी मेरे पास मौजूद हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स. अच्छा जी, ये जो डेट है अगस्त 20th, ये नेशनल डे क्यों मनाया जाता है? लाइकली रेफरेंस द डे इन 1920 जब 8MK, जिसे आज WWJ इन डिट्रॉयट कहा जाता है, फर्स्ट वेंट ऑन एयर. द हॉलीडे हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस द अर्ली 1990s, गेनिंग अ मेजर बूस्ट इन रिकग्निशन इन 2011 व्हेन द नेशनल पब्लिक रेडियो NPR हैविली प्रमोटेड इट. तो NPR को श्रेय जाता है थोड़ा सा इसको हैविली प्रमोट करने के लिए और मेरे और आप तक इस डेट को बहुत ज्यादा यू नो मैसिवली पहुंचाने के लिए. इट रिकग्नाइजेज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी केपेबल ऑफ रियल टाइम मास इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी कनेक्शन एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. मैं सोचती हूँ वो 1920 का जमाना कैसा होगा, 20 अगस्त 1920, जब पहली बार इतने बड़े लेवल पर रेडियो जो है वो कितने सारे लोगों के दरमियान पहुंचा होगा. सच अ माइलस्टोन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरो की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
4: ओचो
5: होको
4: ओचो
5: होको
4: ओचो
5: इट्स होको।
6: अरे बस भी करो यार।
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है। एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज। इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस एंड आर कंसिडरिंग द पाथ टू परमानेंट रेजिडेंसी, कॉन्टैक्ट द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता। Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: यहाँ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
6: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
8: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
9: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
8: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
9: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
8: इंडिया तक।
9: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
10: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
11: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
12: तारा वो तारा हर तारा।
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
14: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन. आप उस मीडियम पे मुझे सुन रहे हैं. दैट हैज सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. टेलीविजन, कैसेट टेप्स, सीडीज, MP3, सैटेलाइट टेलीविजन, स्मार्टफोन, यूट्यूब, पॉडकास्ट, हर चीज अपनी जगह. और रेडियो अपनी जगह. सब कुछ आया, बट रेडियो इज स्टिल हियर. टुडे इज नेशनल रेडियो डे और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समथिंग दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. And that has been a part of our life more than a century. मैं आपको बता रही थी अभी. सोचिए, मतलब ऐसे ही हम अगर थोड़ा सा analysis करें कि radio has been here while people were driving to work, while families were sitting around their living room radios. जब soldiers were waiting for news to come and they would keep their static radio or जो भी उनके पास radio रहता था अपनी खबरें सुनने के लिए. While teenagers were secretly listening to late night love songs. And today, radio is still sitting right here on your phone, your computer, your smart speaker, and of course, your car. And today, we are going on a journey through 100 plus years of radio in US, from the crackling voices of 1920s to the golden age of radio, to FM, to cassettes and CD era radio, to satellite radio, and finally, the world of streaming, apps, podcasts, एंड डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग. ये है कहानी इस बात की कि रेडियो कैसे बदला. एंड हाउ डिस्पाइट चेंजिंग टेक्नोलॉजी वन थिंग नेवर चेंज्ड, आवर लव फॉर द वॉइस दैट कीप्स अस कंपनी. दिस वॉइस इज ऑफ कोर्स द हर आवाज़ जो हम रेडियो पे सुनते हैं वही हमारा कनेक्शन होता है रेडियो के साथ. सो मैं हूँ किरण और आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ नेशनल रेडियो डे स्पेशल, द वॉइस दैट नेवर लेफ्ट अस. और चल रहा है हमारा स्पेशल वो 90s का बॉलीवुड, तो गाने प्ले होंगे टोटल 90s के. दिस इज किरण एंड यू अट्यून्ड इन टू योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन.

If your child is in third through fifth grade, then Next Gen Speakers Academy can help them build the communication and leadership skills that they are going to use for a lifetime. Created by experienced coaches, Sunhee Simon Santiago and Audra Langston, who have trained debate champions and valedictorians as well as Ivy League graduates, this online program is designed to help young minds grow into confident leaders. So you want to learn more about it? Give them a call or visit their website. Lots of information is available at nextgenspeakersacademy.com. That is nextgen, G-E-N, speakersacademy.com. Or you can give them a call, and that number is 214-724-2867. That is, one more time, 214-724-2867. So give your child the confidence to lead tomorrow, starting today with Next Gen Speakers Academy. तो जी, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल रेडियो डे. तो लेट्स गो ऑल द वे बैक बिफोर FM, जब बिफोर AM रेडियो स्टेशंस, रेडियोज इन द कार, बिफोर जॉक शॉक्स, या फिर आप कह लीजिए शॉक जॉक्स, बिफोर मॉर्निंग शोज, बिफोर रेडियो स्टेशंस हैड फैंसी स्टूडियोज एंड सेलिब्रिटी डीजेस, और उससे भी पहले लेट्स गो बैक टू 1920s. दिस वॉज द डेकेड व्हेन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बिगैन डिवेलपिंग इनटू अ मास मीडियम. यूनाइटेड स्टेट्स में कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टुक ऑफ

in the early 1920s, or one of the landmark moments IA 1920 made when Pittsburgh station KDKA began regular broadcasting, but usse pehle Detroit mein jo broadcasting shuru hui, and suddenly something extraordinary happened. You didn't have to physically be in a room with someone to listen to them, to hear them, what they are saying. The voice could travel through the air. And that is why hum kehte hain, you're welcome on the airwaves of Fun Asia Radio. Ye wo time tha jab awaaz hawa ke through aapke kamron mein enter hone lagi, aapke gharon mein enter hone lagi. Imagine how magical that must have felt. Us zamane mein, sochiye, 1920s ke zamane mein, hum to aajkal shayad tasavvur bhi nahi kar sakte ki us tarah ke logon ko kaisa feel hua hoga, us daur ke logon ko. You turn on this strange little box aur एकदम से उसमें से कुछ स्टैटिक सा नॉइज आता है, फिर आप अपना डायल घुमाते हैं और सडनली ह्यूमन वॉइस आपको सुनाई देती है. दैट मस्ट हैव बीन रेवोल्यूशनरी इन 1920s. सो रेडियो बिकेम अ सोर्स ऑफ न्यूज और म्यूजिक, स्पोर्ट्स, वेदर, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, ड्रामा, हर चीज रेडियो के थ्रू उस जमाने में लोगों तक पहुंचने लगी और ग्रेजुअली रेडियो सेट्स बिकेम अ सेंटरपीस ऑफ आवर होम्स बैक देन.

0: अच्छा, रेडियो के बारे में मैं आपसे बातें कर रही हूँ, हम नेशनल रेडियो डे मना रहे हैं, कुछ आपको बता रही हूँ रेडियो का, लेकिन जो सबसे अनोखी और प्यारी बात होती है वो ये कि जब आप मुझे कॉल करते हैं और आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो हमारी थीम से मैच करता है, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. हमारे साथ एक हमारी बहुत प्यारी कॉलर जुड़ी हुई है जो हमें कुछ रेडियो एक्सपीरियंसेस बताने वाली हैं. गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए.
1: जी सुरैया, सलाम अलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. सुरैया जी, बताइए, क्या आप कोई ऐसी पुरानी रेडियो की मेमोरी क्या शेयर करना चाहती हैं?
1: जी, मेरे फादर है ना, ऑलमोस्ट 75 years पहले की बात होगी, उनके पास मर्फी रेडियो था, तो वो पूरे खानदान में एक ही रेडियो था मेरे फादर के पास. तो उस जमाने में सारे कजन उनके जो थे ना, सब जब इलेक्शन होता या क्रिकेट मैच होते इस तरह, तो फिर मेरे फादर के घर आ जाया करते थे, तो सब बैठ के वहीं सुना करते थे. तो वो अभी तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है. और वो ब्राउन कलर का था, और उसको एक उन्होंने बड़ा अच्छा एक लकड़ी का एक बॉक्स बनाया हुआ था, तो उसमें सजा के रख देते थे. SA बोल के नाम भी लिखा हुआ था उनका, तो डेट रेडियो इज मर्फी,
0: तो मुझे
1: वो
0: लगता है
1: ब्राउन कलर का था.
0: जी, आपके फादर जो हैं वो ऐसे होंगे जैसे नया नया किसी के पास स्मार्टफोन आया हो, वैसे वैसे नया नया
1: जी,
0: रेडियो.
1: उस टाइम में जैसे टीवी भी पहली बार किसी के पास आता था, तो इस तरह. तो हमें तो टीवी का याद है, लेकिन ये रेडियो तो हमसे पहले वाली जनरेशन के टाइम का था. तो फिर मुझे भी इतना शौक हो गया था हमको सुनने का. तो बाद में जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरे पास एक छोटा सा पैनासोनिक बोल के कुछ एक ट्रांसिस्टर आया करता था, तो वो मेरे बैग में होता था. कभी हम ऐसे कॉलेज में फ्री टाइम में भी सुन लिया करते थे अलग से ले जाके ना. तो वी जस्ट हैड अ गुड रेडियो मेमोरीज.
0: एब्सोल्युटली श्रेया जी,
1: और
0: बहुत
1: ये
0: बहुत शुक्रिया आपका, हमारी मेमोरी आपने शेयर की. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी. और देखिए, आप लोग अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं, तो मैं आप सबको बताती चलूं. श्रेया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए. मैं
1: जी
0: अभी
1: रेडियो की वजह से आप लोगों से भी तो मिले ना, हम फिर हमको
0: ये भी सही है.
1: जी, अमीन सियानी भी एक रेडियो के बहुत बड़े वो थे, समझिए, तो आइकॉनिक ना. ओके, थैंक यू
0: सुरेश जी, थैंक यू. अच्छा जी, सुनते रहिए क्योंकि इतनी प्यारी मेमोरीज आ रही हैं. तो मैं बताती चलूं कि मैं दो लोगों को गिव अवे देने वाली हूं. आप अपनी रेडियो की मेमोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. मिराज लाउंज की तरफ से ये गिव अवे आया है. मिराज लाउंज आपके लिए $20 ऑफ लेकर आए हैं फॉर योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. मिराज लाउंज इज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे. बहुत जबरदस्त उनका खाना है, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, प्रीमियम हुकर्स, लाइव म्यूजिक, एक्साइटिंग डीजे नाइट्स, और साथ ही साथ लेडीज नाइट एज वेल एज कॉलेज नाइट्स. एक और कॉल हमें आ रही है. दिस इज फॉर मिराज लाउंज, $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. फानीजे रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
2: किरण जी, मेरा नाम ऋतु है.
0: जी ऋतु, बताइए.
2: मैं ये बोल रही थी कि रेडियो, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो नेशनल रेडियो डे. बहुत ही, मुझे तो लगता है इट वाज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग. मेरे दादाजी हमारे साथ रहते थे, और मैं ये अर्ली 70s की बात करती हूँ कि क्रिकेट का बड़ा शौक था सुनने का, तो उनके पास ट्रांजिस्टर होता था. दो तरह के ट्रांजिस्टर थे, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रेडियो. एक थोड़ा सा बड़ा था, एक छोटा था, जो वो बाहर मंजी पे बैठ के ना, जब सर्दियों में जब क्रिकेट कमेंट्री होती थी तो मेरे को पास में बिठाते थे एक डायरी के साथ, और कान पे लगा के वो ट्रांजिस्टर मुझे स्कोर बताते थे.
0: क्या बात.
2: और इट यूज टू बी सो फैसिनेटिंग. और मैं आजकल अपने बच्चों को जब ये स्टोरीज बताती हूँ, तो दे कांट इवन फैदम टू थिंक दैट दिस वाज समथिंग विच वाज पॉसिबल. और बल्कि जो जेन जी के बच्चे हैं उनको तो आई डोंट थिंक दे कैन इवन एक्सपीरियंस और इवन थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस, एक्सेप्ट देयर ओन सेल फोन्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द सेल फोन. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट.
0: नो रियली, एंड दे गिव यू सच ब्लैंक लुक्स. अगर आप उनको बताओ, कभी हमारे हाथ में वॉकमैन हुआ करता था, रेडियो तो खैर बहुत ही पुराना, मतलब उनको वॉकमैन नहीं समझ आता कि ये कैसेट और ये कौन, क्या मामा बात करती रहती है. ठीक है ऋतु, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी दैट यू हैव शेयर्ड, एंड थैंक यू सो मच. सुनती रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. फानीशे रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज शिवानी.
0: हाय शिवानी जी, बताइए.
3: हाँ, एक्चुअली रेडियो से बहुत ही क्यूट मेमोरी है मेरे पास, कि हमारे जब कॉलेज टाइम में दोपहर को हम कुछ आर्ट रिलेटेड वर्क करते थे कॉलेज में, तो हमारा ग्रुप ऑफ सिक्स होता था जिसमें 5 लड़के और 1 लड़का होता था, और एग्जैक्टली उसी टाइम में रेडियो में सखी सहेली आता था तो हम सखी सहेली ऐसे करके जो वो जो पूरा 1 घंटे का शो होता था तो हम उसको सखा सहेला बोलते थे, एक अकेला लड़का जो हमारे ग्रुप में था.
0: राइट राइट राइट.
3: Yeah.
0: बिल्कुल सही है शिवानी, दीज आर सच ब्यूटीफुल हमारी रेडियो की मेमोरीज हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. सुनते रहिए, मैं अभी भी अनाउंस करती हूँ. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, प्लीज टेल अस योर नेम एंड योर एक्सपीरियंस.
4: हेलो, दिस इज कुशानु. सो आई वांट टू गिव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस अबाउट रेडियो. व्हाइल यू नो एवरीवन यूज्ड टू लिसन टू रेडियो एंड ऑल, आफ्टर दैट ओल्ड रेडियो गिव अप एंड यू नो आफ्टर सो मेनी टाइम्स ऑफ रिपेयरिंग, इट केम टू मी एज अ गिफ्ट. ओके, डू एनीथिंग यू वांट टू डू. सो यू नो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद इट.
0: Okay.
4: And I started reusing its stuff. So I still remember I reused the speaker of the radio to make our first calling bell of the house. Okay.
0: Lovely. आप पैदाइशी engineer थे. Okay.
4: You know, we started learning about circuits and all, and you know, वो soldering use करना at that time it started.
0: जी.
4: So there are marks of that, you know, old radio in several things in our house. You know, when we were all growing up. So I think that was kind of an organ donor.
0: Yeah.
4: You know, that radio is that way.
0: Of course, that is beautiful, lovely. मतलब वो कहते हैं ना, जिसमें एक इंजीनियर होता है वो किसी भी चीज से कोई ना कोई नई चीज बना लेता है. तो आपने एग्जैक्टली वही किया. थैंक यू सो मच कृषानु फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस. प्लीज सुनते रहिए फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
5: Yeah, hi, this is Pooja.
0: जी पूजा, बताइए.
5: So, I don't have memories while growing up because at that time radio was not much in style in India, but I have more memories with Panacea when I moved here in 2008 and someone told me there's a Desi radio and I started listening.
0: Mm-hmm.
5: Oh my goodness, it feels, you know, something come closer to you from home when you're so far from everyone.
0: Right.
5: I used to enjoy my, you know, late night drive with Panacea listening to all the songs. So for me, if someone says radio, just Panacea comes to my mind.
0: That is so sweet. And radio ki memory har insaan ki apni special hai, kisi ki purani, kisi ki nai. Thank you, Pooja, for connecting with us. And I will announce the winner in a bit. But thank you so much for sharing your experience. Acha ji, that is all the time that we had for this giveaway brought to you by Mirage Lounge. Is gaane ke baad main winner announce karungi. Sunte rahiye because I might have to ask you to give me a call back to share your personal information. That was such beautiful memories that you shared with me. And there is no better way to celebrate National Radio Day than this.

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
1: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
7: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
6: Fikar not. We have the perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
11: Floors clean.
12: Check.
11: Windows clean.
12: Check.
11: Kitchen clean.
12: Check.
11: Air ducts clean.
12: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
13: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
18: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
19: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
18: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
19: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
18: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
19: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
18: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
20: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to FunAsia Radio.
0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेजिया रेडियो।
21: कितने आदमी थे?
22: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनेजिया सुनता है।

और जी मिराज लाउंज की तरफ से गिव अवे लेकर आई थी आपके लिए ब्रेक पे जाने से पहले. मैं हूँ किरण, दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और मिराज लाउंज जो कि मेकिनी रैंच पार्कवे पे लोकेटेड है, आप सबने अपनी रेडियो मेमोरीज, अपनी रेडियो की बातें मेरे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, फॉर योर पार्टिसिपेशन. और हमारे जो आज के लकी विनर हैं वो जी मैं नंबर्स डालती हूँ मैथ के फॉर्मूले में और उसी से निकलता है आपकी लक आपका फैसला करती है. और आज के हमारे दो लकी विनर्स इज कृषानु एंड पूजा. सो कृषानु एंड पूजा, थैंक यू so much and congratulations. आपका नाम और नंबर हमें दो दिन दीजिए रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए. मिराज लाउंज मेकिनी रैंच पार्कवे पे लोकेटेड है एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $20 ऑफ विद अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. और आप तमाम लोग रितु सरैया जी बिल शिवानी एंड मेनी मोर जिन्होंने ऑफ एयर भी मुझे कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया. फनी जी इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है, पर मेरे लिए जो सबसे स्पेशल बात होती है वो ये होती है कि आप कॉल करके करते हैं पार्टिसिपेट. दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. थैंक यू.

वो 90s का बॉलीवुड सुन रहे हैं आप राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आज का हमारा गाने तो सारे 90s के चल रहे हैं, पर आज का जो स्पेशल है वो है जी नेशनल रेडियो डे. कुछ रेडियो के बारे में बातें कर रहे हैं और इसी तरह से बातों का सिलसिला तो आगे बढ़ता रहेगा. पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है, कभी भी आ सकती है. और अगर आप किसी एक्सीडेंट, देर हैज़ बिन एन एक्सीडेंट, देर हैज़ बिन अ कार और अ ट्रक इंसीडेंट, या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसीडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, अलॉन्ग विद आपको अपनी सेहत, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखना है, तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखिए और लेट अटर्नी उमर ख्वाजा टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स फॉर यू. Not only he and his team will fight the case for you, they will get you the best compensation that you deserve. और जो इसमें best बात है वो ये कि आपको कुछ भी नहीं करना जब तक कि आप ये केस जीत नहीं जाते. तो this is a win-win situation for you in this stressful time that you or anyone you know of is going through. Give attorney Umar Khwaja a call for a free consultation. Ask your questions and see where you stand. 469-300-5046. 469-300-5046 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज attorneyomar.com. दैट इज OMAR, attorneyomar.com. और इसी के साथ बैक टू द रेडियो. रेडियो की हम बात कर रहे थे, इंट्रोड्यूस हुआ, आप सब ने अपनी अपनी कहानियां शेयर की. वो टाइम था, वो दौर था जब फैमिलीज जो हैं वो रेडियो के इर्द गिर्द बैठ जाया करती थी. जस्ट लाइक यू नो, बाद में वक्त जब गुजरा तो फैमिलीज टेलीविजन के इर्द गिर्द बैठ जाया करती थी. आजकल तो खैर सब अपने अपने फ़ोनों के इर्द गिर्द बैठते हैं, बट एक वक्त था दुनिया में जब हम एक किसी चीज़ के इर्द गिर्द सारे एज अ फैमिली बैठ जाया करते थे. रेडियो वॉज़न्ट जस्ट अ बैकग्राउंड नॉइज, रेडियो वॉज द इवेंट एंड द पर्सन बिहाइंड द माइक्रोफोन, जैसे कि मैं उस जमाने में, तो दैट पर्सन बिकेम इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट. पीपल रिलेटेड टू देम. द अर्ली रेडियो अनाउंसर्स सिर्फ डीजे और आरजे नहीं हुआ करते थे, दे वर द स्टोरी टेलर्स, द न्यूज रीडर्स, द एंटरटेनर्स, द कनेक्शन बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड योर लिविंग रूम, जो उस जमाने में रेडियो के इर्द गिर्द बैठा करते थे. एंड यू नो, सोचिए, देर वॉज नो स्क्रीन, देर वॉज नो वीडियो, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब. The audience had to imagine everything. मतलब जो गाना भी चल रहा है वो भी आपको इमेजिन करना है, जो बात भी हो रही है वो भी आपको इमेजिन करनी है. That was radio's first, very first super power.

पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली हमारी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं और अब वो बढ़ रहे हैं जी, दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल. दिस इज LUNOXY. लिनॉक्सी मेडिकल, इफ यू'ड लाइक टू सर्च इट अप, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लिनॉक्सी मेडिकल आपके लिए लेकर आता है जी प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक और यही नहीं बल्कि हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी आपको मिलेंगी. एवरीथिंग अंडर वन रूफ. तो अब आपको कहीं ये नहीं सोचना कि मुझे सीटी स्कैन करने कहीं और जाना है या एक्सरे करवाने कहीं और जाना है. सब कुछ मिलेगा आपको लिनॉक्सी मेडिकल में. और ये है जी 7 दिन, अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, 7 दिन खुले हैं आपके लिए. 7 days a week, 8 AM द मॉर्निंग टिल 8 PM आपके लिए खुले रहते हैं ये सारे दिन, 7 days a week. और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यू डोंट हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट, आप वॉक इन कर सकते हैं. वॉक इन इज वेलकम एनी टाइम. सो ये है आपके लिए लिनॉक्सी मेडिकल विद टेक्सास प्राइमरी केयर. जरूर विजिट कीजिए, लोकेटेड इन फ्रिस्को. अच्छा जी, थोड़ी सी हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो अब हम तरह 1920s की तो हमने बात कर ली. रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे फैमिलीज का हिस्सा बना. 30s and 40s इज वॉट मेनी पीपल कंसिडर एज द गोल्डन एज ऑफ रेडियो. रेडियो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो हमारी डेली लाइफ का तब तक हिस्सा बन चुका था. 10 साल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था रेडियो. इमेजिन करिए कि एक फैमिली है, वो यू नो दे आर सिटिंग टुगेदर इन द इवनिंग. डैड ने न्यूज़ सुननी है, जो कि हर घर की यही कहानी होती है. वालिद साहब ने न्यूज़ ही सुननी होती है. मॉम ने अपना ड्रामा प्रोग्राम देखना है. ऑफ कोर्स द लेडी ऑफ द हाउस हैज़ टू वॉच द ड्रामा. बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए किसी भी तरीके की. एंड एवरीवन इज गैदर्ड अराउंड द सेम रेडियो. रेडियो ड्रामास तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे. इनक्रेडिबल रेडियो ड्रामा बनने लगे थे एंड दे वर इनक्रेडिबली पॉपुलर बिकॉज ऑब्वियसली कोई आजकल के ड्रामे की तरह कोई टीवी पे तो चल नहीं रहा था. तो वॉइस से ड्रामा बनाया जाता था और वो ही लोगों को पसंद आता था. और एक बड़ी फैसिनेटिंग बात आपको बताऊं, बिकॉज देयर वाज नो विजुअल, ब्रॉडकास्टर्स हैड टू क्रिएट पिक्चर्स विद साउंड, जैसे कि डोर ओपनिंग, फुटस्टेप्स, या फिर टेलीफोन रिंगिंग. थंडर हुआ तो रेडियो जॉकी को ही अपनी आवाज़ में वो थंडर की आपको फीलिंग देनी है. ट्रेन चल रही है, क्राउड है, म्यूजिक है, ये सब ह्यूमन वॉइस से बनाया जाता था. रेडियो ड्रामा टॉट द वर्ल्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, that you don't always need to see something to experience it. Your imagination becomes the camera for you. That's what radio does to us.

प्रणव, थैंक यू सो मच हमें इतना खूबसूरत गाना याद कराने के लिए, टेकन फ्रॉम द मूवी आजा मेरी जान. और रेडियो का सिलसिला, रेडियो के बारे में बातें, जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं. 1950s और 60s के दौर में आप कह लीजिए कि दिस इज व्हेन रेडियो की अपनी पर्सनालिटी थी, रेडियो की अपनी एग्जिस्टेंस थी, और ना सिर्फ रेडियो बल्कि अब बन गए थे स्टार्स थ्रू रेडियो, एंड दे वर द रेडियो डीजेस या रेडियो जॉकीज. म्यूजिक सिर्फ रेडियो की एक बिगेस्ट अट्रैक्शन नहीं रहा था. न्यूज़ ये सब तो रेडियो पे ऑब्वियसली मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो था ही, लेकिन डीजेज या जो आरजेज थे रेडियो के, वो बन गए थे लोगों के लिए एक कनेक्शन पॉइंट. दे वर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद द ऑडियंस. दे इंट्रोड्यूस सॉन्ग्स, दे टॉक्ड अबाउट आर्टिस्ट, दे मेड जोक्स, दे टुक रिक्वेस्ट, और साथ ही साथ दे रेड डेडिकेशंस और कॉन्टेस्ट भी करते थे. और स्लोली एंड ग्रेजुअली द पर्सनैलिटी बिहाइंड द माइक्रोफोन बिकेम जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द म्यूजिक. तो जी, ना सिर्फ ये कि डीजे का या आरजे को लोग नाम से जानने लगे, उनको उनके स्टाइल से, उनके कैच फ्रेज से, उनकी पर्सनालिटी से जानने लगे. और सडनली जैसे ही एक जुमला वो कैच फ्रेज कोई आरजे आके बोलता या डीजे, उस जमाने में बोला जाता था, डीजे आके बोलते थे, तो लोग पहचान लेते थे कि ये किसकी आवाज़ है. जैसे अभी जब हम आपकी रेडियो की मेमरीज सुन रहे थे, तो श्रेया जी ने बताया कि अमीन सियानी साहब मुझे आज तक याद हैं. ये वो आवाज़ थी, उनकी पर्सनालिटी का जादू था, जिस से वो कनेक्शन उनका आज भी कह लीजिए आप 50 साल बाद भी बरकरार है. सो दैट इज व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दोज प्रेजेंटर्स बिहाइंड द रेडियो. तो आपका कौन सा फेवरेट, किस जमाने का आरजे है, आप मुझे बता सकते हैं. 9722355555.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Yaar, modern manga sutra dhoonte dhoonte thak gayi hoon.
7: To carrot lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern manga sutras.
6: Seriously? Kaisa collection hai?
7: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
8: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
9: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
12: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
13: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
12: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
14: जीनी, हुकम मेरे आका. हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहाँ मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
15: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
14: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
16: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
17: अरे, तीन पे क्यों अटक गया?
18: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
12: प्लेनो रिचर्डसन, एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
19: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
12: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
20: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में डोसा।
21: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
22: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
21: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
23: हीरे मोती मैं चाहूं।
24: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
25: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
26: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your afternoon drive time with the Sunehri Kiran. Thank you so much for connecting with me this afternoon. और अब वक्त आ चला है हमारा आपके साथ कनेक्ट करने का पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस की जॉइंट ट्रेजरर जिया अहमद, जो हमें बताएंगी कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस हमारे लिए कौन सा कायद मेला 2026 लेकर आ रहा है, कहाँ है ये इवेंट और आप क्यों उसे मिस नहीं कर सकते. लेट्स वेलकम जिया ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जिया, कैसी हैं आप?
1: अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर.
0: बताइए जिया, कुछ बताइए हमें कायद मेले के बारे में, कहाँ हो रहा है और क्या क्या होने वाला है इस इवेंट में.
1: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस वार्मली इनवाइट यू एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर कायद मेला एंड वी आर सेलिब्रेट

0: रहा है और क्या क्या होने वाला है इस इवेंट में?
1: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास वार्मली इनवाइट यू एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर कायद मेला एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस वन ऑन साउथ फोर्क रैंच सैटरडे अगस्त 22nd. ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हम सब मिलके पाकिस्तान की खुशियां कल्चर और कम्युनिटी स्पिरिट सेलिब्रेट करेंगे वहां पे.
0: देर यू गो. एक बार फिर आपको बताते चलें कि ये इवेंट होने वाला है साउथ फोर्क रैंच में. दैट इज अगस्त 22nd. दो दिन रह गए हैं, मतलब डेढ़ दिन कह लीजिए, तो पहुंच जाइए. कितने बजे से कितने बजे तक ये इवेंट होने वाला है?
1: शाम 5 बजे से लेके मिडनाइट तक है. और हमारे जो म्यूजिक ग्रुप है रागा सूफी बैंड है, रागा बैंड, वो आ रहे हैं. दे आर सेलिब्रेटिंग विद अस. और बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स हैं, गेम्स हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सारे बूथ्स, सब कुछ है वहाँ पे.
0: चलिए जी, ज़बरदस्त. तो हमें जिया ने एक मौका दे दिया है पाकिस्तान की जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने का. पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास हमारे लिए ये इवेंट लेकर आ रहे हैं. जिया हमारे साथ मौजूद थी और वी विल सी यू जिया देयर ऑन सैटरडे, राइट?
1: यस, इंशाल्लाह. सी यू ऑल.
0: एब्सोल्युटली. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट जी, दैट वाज द इवेंट. अभी जब ब्रेक से इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी इस इवेंट के बारे में. देयर इज सो मच दैट इज लाइंड अप फॉर यू.

And this next message is for all the business owners in Texas. अगर आप टेक्सस के बिजनेस ओनर हैं, you're looking for smarter commercial energy solutions, तो मैं आपको बताती हूँ जी, तारा कमर्शियल एनर्जी इज where you should definitely contact at least. अपने सवाल कीजिए. There's no harm in contacting, asking your questions and getting the answers. They are proudly serving Texas businesses since 2002. Competitive rates हैं उनके, reliable service है, और सबसे important बात, they customize the energy plans around your needs. So all you have to do is give them a call and talk to them. That number is 844-428-2808. The number again is 844-428-2808. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज taraenergy.com, TARA taraenergy.com. बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से रुका था या मुनकता हुआ था, और वो था कि हम रेडियो, नेशनल रेडियो डे आज सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे फिर रेडियो जॉकीज जो हैं वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे. रेडियो सिर्फ म्यूजिक का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि

Their connection with the people that were sitting behind the microphones was playing a very important role in people's lives. उसके बाद आप कह लीजिए 70s और 80s का era आया रेडियो में, जिसमें FM रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ. FM frequency modulation. अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताती चलूं जी. FM stands for frequency modulation. Offered this FM radio station technology offered improved sound quality and became especially important for music broadcasting, of course. और वहां से सारी कहानी बदल गई. Music sounded better. Stereo became increasingly important. Radio stations और ज्यादा specialized हो गए. And you could find stations focused on rock music or pop music. मतलब अब जॉनर्स बनने लगे. क्लासिकल म्यूजिक, न्यूज, टॉक शोज के अलग रेडियो स्टेशंस बन गए, न्यूज के अलग स्टेशंस बन गए, अलग अलग कंट्रीज में स्टेशंस बनने लगे. एंड इवेंचुअली डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कम्युनिटीज ने अपने अपने रेडियोज को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया. और रेडियो जो है वो एक मतलब एक सिंपल रेडियो से बहुत पर्सनलाइज्ड हो गया, जैसे पर्सनल हो गया ना. मतलब इट्स वेरी पर्सनल. फनीशा इज वेरी पर्सनल टू मी. सो इट स्टार्टेड बिकमिंग पर्सनल. एंड द 1980s का एरा अगर आप कहें तो 1980s ब्रॉट पर्सनालिटी रेडियो टू अनदर लेवल. दिस वाज द एरा ऑफ बिग पर्सनालिटीज. जैसे हमने अभी अमीन सियानी साहब की बात की, तारिक अजीज साहब अगर आप पाकिस्तान का रेडियो शो सुनते हैं, बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास. द मॉर्निंग शो बिकेम अ डेस्टिनेशन, द आफ्टरनून ड्राइव बिकेम अ हैबिट. रेडियो होस्ट जो हैं वो सेलिब्रिटी बन गए अपनी अपनी कम्युनिटीज में, उनको जाना पहचाने जाने लगा. एंड द रिलेशनशिप बिकेम इवन मोर इंटीमेट. यू डिडंट जस्ट लिसन टू द स्टेशन, यू लिसन टू द स्टेशन बिकॉज ऑफ द आरजे.

और इस रक्षाबंधन, बस रक्षाबंधन आ रहा है जी, और इस रक्षाबंधन फन एशिया रेडियो और चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट एंड्योरेंट आपके लिए लेकर आए हैं जबरदस्त एक्साइटिंग डेली प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज. और दीज डेली प्राइजेस इंक्लूड डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टे, जबकि जो ग्रैंड प्राइज है दैट विल बी एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट. तो आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, तो फन एशिया और चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट सुनना चाहते हैं आपकी मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग. भाई या बहन किसी के साथ भी आपकी मेमोरी है कोई ऐसी जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो एक मिनट की वीडियो बना, वॉइस नोट बनाए, वीडियो नहीं, आवाज़ की दुनिया में ही रहते हैं हम, तो आवाज़ वाली अपनी वॉइस नोट बनाइए एक मिनट की और सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे. नंबर सबसे पहले आप नोट कर लीजिए 2148377147, 2148377147. इस पे आपने व्हाट्सएप करना है अपने एक मिनट का वॉइस नोट शेयरिंग योर अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग और भेज देना है, एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दीज, ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट इन दीज डेली प्राइजेस एज वेल एज दी ग्रैंड प्राइज. कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स फन एशिया के सोशल मीडिया पेजेस पे मौजूद हैं. अगर आपने अब तक हमें फॉलो करना शुरू नहीं किया तो राइट नाउ इज द टाइम, स्टार्ट फॉलोइंग अस. चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट वो जगह है जहां आप बनाते हैं जबरदस्त मेमोरीज. यू हैव टू बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. And there's terms and conditions apply, and while you are there, please play responsibly.

अच्छा जी, ये तो पूछ रहे हैं क्या कहती हो इस बारे में, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ आप क्या कहते हैं इस बारे में कि सोनू निगम आ रहे हैं. जी हाँ, डालस आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं. कब आ रहे हैं? आ रहे हैं जी 26th of September, विच इज अ सैटरडे, शाम 8:30 बजे एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन. तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? ले रहे हैं टिकट? फौरन जाइए, टिकट खरीदिए टिकट मास्टर पे. सोनू निगम इज लाइव इन कॉन्सर्ट, एक्सपीरियंस दिस इवेंट कॉल्ड Revolution Sonu Nigam Live. Fan Asia Network is the exclusive media partner. We are so happy to have him here. अगर आपका कोई भी सवाल है इस इवेंट को लेके, तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे. That number is 855-360-SHOWS. 855-360-SHOW. इस पे कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब पाइए. वंस अगेन, सोनू निगम कमिंग लाइव टू डैलस राइट हेयर इन क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन ऑन सैटरडे सितंबर द 26th. तो फिर वंस अगेन क्या कहते हैं आप इस बारे में?

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Weekend ka plan abhi tak nahi mila. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
6: Whoa.
7: School ka report card saal mein ek baar aata hai. But business ka report card har mahine. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
9: Arey sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
10: Maa, real space ab lucky hi hote hain. Generic predictions सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: होचो
13: होको
12: होचो
13: होको
12: होचो
13: इट्स होको.
10: अरे बस भी करो यार.
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चनापुरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
7: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे.
14: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में सब संभालेंगे.
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
7: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
16: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन अर्विंग.

मैं हूं किरण, आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण राइट हेयर ऑन 104.9 एफएम फैन एशिया रेडियो. और ये गाना आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मैक्सिमम, जिसमें हमें नजर आए सोनू सूद, नसीरुद्दीन शाह, नेहा धूपिया, डायरेक्टेड बाय कबीर कौशिक. और इस गाने में आवाज थी जी रागा बॉयज की. और ये गाना खास मैंने आपको सुनाया क्योंकि रागा बॉयज आ रहे हैं डालस में. पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास आपके लिए लेकर आ रही है शानदार कायद मेला 2026. ये होगी एक जबरदस्त सेलिब्रेशन ऑफ हेरिटेज, कल्चर एज वेल एज कम्युनिटी. तो आइए एंजॉय कीजिए. लाइव म्यूजिक होगा, ऑफकोर्स रागा बॉयज आएंगे तो लाइव तो होना ही है. अभी मैं आपको रागा बॉयज के बारे में भी बताती हूँ. खाना पीना बेहतरीन मिलने वाला है आपको वहां पे, तो खाली पेट आइए ताकि आप एंजॉय करें अपना. स्टॉल्स होंगे खाने के, साथ ही साथ शॉपिंग. अगर आप शॉपिंग पसंद करते हैं तो बहुत सारी शॉपिंग की ऑप्शन होंगी आपके लिए. सो ब्रिंग दोज वॉलेट्स एंड कीप दोज शॉपिंग स्पिरिट्स हाई. कल्चरल फेस्टिविटीज हो रही होंगी और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि इट विल बी अ फैमिली फन सेलिब्रेशन फॉर ऑल एजेस. और जो है सैटरडे को ये इवेंट हो रहा है, August 22nd, परसों, यानी कि बस डेढ़ दो दिन रह गए हैं. फ्रॉम 3 PM टिल 11:45 PM, 2 o'clock से डोर्स ओपन हो जाएंगे आपके लिए. तो यू कैन स्टार्ट कमिंग, यू कैन स्टार्ट एंजॉइंग द फेस्टिविटीज, यू कैन स्टार्ट एंजॉइंग फूड एंड शॉपिंग एंड म्यूजिक दैट विल बी देयर. और कहां हो रहा है ये इवेंट? दिस इज हैपनिंग एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सास. तो जी, और बेहतरीन बात तो मैंने अभी आपको बताई ही नहीं कि कोई टिकट नहीं खरीदना आपको, कोई पार्किंग के पैसे नहीं देने. इट विल बी फ्री पार्किंग एंड एब्सोल्युटली फ्री एंट्री. अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए और एंजॉय कीजिए इस इवेंट को. दिस इज कायद मेला 2026, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे ये जो मन कुन तो मौला आप सुन रहे थे, इनके सिंगर्स रागा बॉयज, इनके बैंड का नाम है. मैं आपको रागा बॉयज के बारे में बताऊं कि एक पाकिस्तानी सूफी रॉक बैंड है ये, जो कि लाहौर से बिलोंग करता है, पटियाला घराने का ये बैंड है ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. दिस बैंड कंसिस्ट ऑफ 3 brothers, नायाब अली खान, वली हामिद अली खान एंड इनाम अली खान. और ये बेटे हैं जी लेजेंडरी उस्ताद हामिद अली खान साहब के, और 9th generation ऑफ पटियाला घराना. अब ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको ये पता हो कि सिंगिंग का लेवल क्या होने वाला है इस कायद मेले पे. इसके बारे में तो जिक्र और तस्करा जरूरी ही नहीं, बल्कि पटियाला घराना ही काफी है ये बताने के लिए. तो बेहतरीन म्यूजिक, अमेजिंग क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और गाने जबरदस्त एंजॉय करने के लिए आइए हमारे साथ. एंजॉय रागा बॉयज एट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास कायद मेला 2026, हैपनिंग ऑन August 22nd एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सास, 3 PM टिल 11:45 PM. सी यू देयर. द प्राउड मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. आई विल बी देयर फॉर श्योर.

अच्छा जी, हमारी बात आज का दिन तस्करा रहा द नेशनल रेडियो डे, और हमने पूरा 1920s से लेके और 90s तक का सफ़र कर लिया था. अब कुछ 90s से और 2000 तक का रेडियो का हम सफ़र करते हैं. ये वो दौर था जब हमने खुद जिस दौर को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, द 90s. ये एक रेडियो के लिए बड़ा फैसिनेटिंग टाइम था. म्यूजिक रैपिडली चेंज हो रहा था, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, रेडियो रिमेंड. लेकिन इस सारे जो म्यूजिक भी चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई, बट इस सब में रेडियो रिमेंड वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू डिस्कवर म्यूजिक. स्टूडियो इट सेल्फ वर इवॉल्विंग, कैसेट टेप्स वॉज जॉइंड बाय सीडीज, देन कंप्यूटर स्लोली स्लोली हमारी दुनिया में एंटर होने लगे और रेडियो प्रोडक्शन में एंटर होने लगे. एडिटिंग आसान होने लगी, म्यूजिक स्केजलिंग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती गई, और रेडियो स्टेशन जो हैं वो रिकग्नाइजेबल ब्रांड्स बनते गए. मतलब देयर गेम ऑल्सो गॉट बिगर एंड बेटर. और जो स्टेशन है वो अपने जिंगल से पहचाने जाने लगे. कई आपको जिंगल्स ऐसे प्ले होते हुए नजर आते हैं जिनसे पहचान हो जाती है कि ये बीबीसी का जिंगल है, या ये बीबीसी रेडियो का जिंगल है, या ये किस रेडियो का जिंगल. जैसे फन एशिया के अपने जिंगल्स हैं. सो यू न्यू द मॉर्निंग शो बाय इट्स होस्ट, यू न्यू द आफ्टरनून डीजेज, और साथ ही साथ यू न्यू एग्जैक्टली कि कौन से स्टेशन पे कितने बजे आपको कौन सा शो मिलने वाला है जो आपका बड़ा फेवरेट है. मुझे याद है जब मैं 90s में हम स्कूल कॉलेज में थे, और एक बड़ा पॉपुलर शो 12 बजे रात को आया करता था. वो शेर शायरी का शो होता था और गजलें उसमें प्ले होती थी, और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक, जो कभी कभी हम पढ़ाई करने के लिए जाग रहे होते थे और मैथ का कोई सवाल चल रहा है और आपको थोड़ा सा सूदिंग म्यूजिक भी चाहिए, तो वो मेरा फेवरेट शो हुआ करता था. 12 बजे रेडियो हम ऑन कर लेते थे और साथ वो रेडियो चलता रहता था, और साथ जो है वो पढ़ाई हमारी चलती रहती थी. सो पढ़ाई, रेडियो वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विद माई पढ़ाई बैक इन दोज डेज इन द नाइट. वो तो थोड़ी रौनक लगी रहती थी. तो ये था रेडियोज का वो 90s का दौर, और फिर 2000 से लेके आज तक का जो दौर आया, बिगेस्ट चैलेंज जो रेडियो ने फेस किया वो 2000 के बाद से किया. इंटरनेट आ गया, सडनली लोगों ने म्यूजिक को ऑनलाइन सुनना शुरू कर दिया, सॉन्ग्स डाउनलोड होने लगे, प्लेलिस्टें बनने लगी, यूट्यूब आ गया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गई, पॉडकास्ट आ गए, स्मार्टफोन्स, मतलब यू नेम इट एंड एवरीथिंग वॉज देयर. लेकिन रेडियो फिर भी गायब नहीं हुआ. वो कैसे? ये बात इस गाने के बाद.

जी हाँ, इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बीच रेडियो डिसअपीयर नहीं हुआ बल्कि इवॉल्व हुआ. स्टेशंस वेंट ऑनलाइन, लाइव स्ट्रीमिंग बिकेम नॉर्मल, लिसनर्स कुड हेयर देयर फेवरेट स्टेशंस फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जैसे कि फन एशिया को आप दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं. अगर आपने हमारी ऐप अब तक डाउनलोड नहीं करी तो जल्दी से कर लीजिए. फन एशिया रेडियो की ऐप जो है वो आपके साथ रहेगी और आप अपने फेवरेट शोज, अपने फेवरेट आरजेस को कभी भी जहां भी चाहे वहां सुन सकते हैं. तो जी, सोशल मीडिया ने जो आपके रेडियो जॉकीज हैं या डीजे आप उनको कह लीजिए, उनको कम्युनिकेट करने की इजाजत दी विद दी लिसनर्स इंस्टेंटली, टेक्सटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम. सो सब लोग जैसे इवॉल्व हुए वैसे ही आपका रेडियो भी इवॉल्व हुआ. एंड टुडे रेडियो इजंट रिस्ट्रिक्टेड टू द रेडियो रिसीवर ओनली. यू कैन प्ले इट इन द कार, फोन, कंप्यूटर, हेडफोन, स्मार्ट स्पीकर, कहीं भी. और फिर ऑफकोर्स पॉडकास्टिंग. पॉडकास्ट्स हैव टेकन ऑन रेडियोज वन ऑफ रेडियोज ओल्डेस्ट स्ट्रेंथ्स व्हिच इज कॉन्वर्सेशन and expanded it into an on-demand format. और अब तो आपको सुबह 8 बजे ही लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. कभी भी लॉग इन करके आप लाइव आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो आपके लिए पड़ी हैं, आज, कल, परसों, जो भी. टेक्नोलॉजी बदली, तरीके बदले, लेकिन इम्पैक्ट वही रहा या थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर हो गया. दिस वॉज द जर्नी ऑफ द रेडियो. नेशनल रेडियो डे पे हमने इस जर्नी को डिस्कस किया. 1920s से लेके आज तक रेडियो ने हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया. ऑल इन ऑल, रेडियो इज हियर टू स्टे.

और इसी के साथ इट इज टाइम टू गिव यू द करेंसी अपडेट. यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. द यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.85, ब्रिटिश पाउंड 0.73, इंडियन रुपी 95.76, जबकि कैनेडियन डॉलर 1.37, पाकिस्तानी रुपी 277.55 पे ट्रेड कर रहा है, नेपाली रुपी 153.29, जबकि बांग्लादेशी टका 122.22 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर.

0: जी हाँ, और मेरा भी जो वक्त है आपके साथ वो हो चुका है अब खत्म. मैं मिलूंगी आपसे कल. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे गाइस. बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. आई विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव, योर रिक्वेस्ट, एंड साथ साथ वी हैव चिल्ल पार्टी, अ न्यू आरजे, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा मुन्नी सी कोई आरजे हमारे साथ होंगी और शो होस्ट करेंगी, मेरे साथ को होस्ट करेंगी राइट हियर ऑन द चिल्ल पार्टी ऑन किड्स जंक्शन. I will see you tomorrow, 2:30 p.m. till 5 p.m. once again, every day, Monday through Friday. Stay tuned and enjoy the rest of your evening.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
10: कौन सा?
9: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
10: अरे सारे तो सेम है.
9: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
10: ओ हाँ, ये तो अलग है.
11: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
14: Wait, itna sab aur price?
11: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
19: Fear not, we have the perfect solution.
11: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: अरे यार, घर मिल गया.
4: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
11: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
4: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
11: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
13: क्योंकि साथ हॉट चिकन भी.
18: जमीन पे पहुंच गया।
11: Plano Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
13: Floors clean.
4: Check.
13: Windows clean.
4: Check.
13: Kitchen clean.
4: Check.
13: Air ducts clean.
4: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
18: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
20: भूख लगी
21: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
18: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
11: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
22: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
23: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
11: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
24: तुमसे मिलके दिल का है।
23: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
11: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

ऑलराइट, किद्दां डॉलर्स, की हाल है, की हाल चाल है, कौन हूँ मैं? पारुल हूँ, आपकी अपनी होस्ट पारुल भाटिया. काफ़ी समय के बाद आई हूँ. एंड सिटिंग इन फॉर आर ओन मार्विन दास, हूज आउट टुडे, सो सबिंग इन फॉर हिम एंड एंजॉयिंग दिस क्रेजी क्रेजी थर्सडे इवनिंग, बिकॉज इट फील्स सो क्रेजी जस्ट टू बी बैक ऑन टू टॉक टू यू गाइज. आई मिस्ड यू ऑल सो मच. इसी बात पे कोई ऐसी फीलिंग आ रही है जो कि मैंने आजकल एड्स भी सुने हैं, और ये गाना हैज़ बीन लाइक स्टेइंग विद मी कॉन्स्टेंटली, कर लाइक रिंगिंग इन माई ईयर्स. एंड आई थॉट वाई नॉट, इट फील्स लाइक वन ऑफ दोज इवनिंग्स विच इज़ लाइक अ तंदूरी नाइट. सो आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू. और इसी बात से मुझे ये भी लगा कि हिमेश रेशमिया के एक दो और गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ आज. उसके साथ साथ आई हैव अ फ्यू सॉन्ग्स लाइंड अप फॉर यू फ्रॉम मिक्का. तो आप वाइब समझ गए होंगे, उस तरह का मूड है कि मस्ती हो और इतना हंगामा हो कि 5 to 7 आपको किसी की याद ना आए, बस मस्ती करिए आप मेरे साथ. विद दैट, तंदूरी नाइट्स ऑन एयर फॉर यू. नॉट येट, नॉट येट, इट्स कमिंग अप बिकॉज द अदर सॉन्ग वॉज प्लेइंग बिफोर एंड हियर इट इज. ऑलराइट.

Yes, the song I find it so catchy. अगर मैंने आपसे सवाल पूछा होता कौन सी फिल्म है तो आपने शायद बताया होता कर्ज. और इस फिल्म में खुद इस गाने में हिमेश रेशमिया के साथ हैं उर्मिला मातोंडकर. और ये कौन गा रही हैं ये भी I'm sure you would have answered that. And it was Sunidhi Chauhan. I did not ask you that because there is a quiz coming your way, a giveaway around 5:45 after the 5:40 break, and another one coming out at 6:15. So mark the timings and the cool giveaways aa rahe hain aapke liye listeners. You know what, life is either a daring adventure or nothing at all, said Helen Keller. Like Bertrand Russell said, the time you enjoy wasting is not wasted time. Indeed, lighten up, just enjoy life, smile more, laugh more. When you arise in the morning thinking of what a precious privilege it is to be alive, just being alive is enough, don't you think listeners? It is not how much we have but how much we enjoy that makes happiness. So let's count it. Let's count each moment in our lives and let's make it happening. क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि ये लाइफ में जो हैपनिंग जो मोमेंट्स होते हैं अगर आप फनीजिया के साथ जुड़ के और सेलिब्रेट करें तो और मज़ा आता है. और इसी बात पे एक और गाना हिमेश रेशमिया की आवाज़ में, साथ में हैं सुनिधि चौहान और उनकी आवाज़ है. और फिल्म आप गेस कर सकते हैं, ये वैसे क्विज नहीं है तो मैं बता ही देती हूँ, 36 चाइना टाउन. और ये गाना बहुत फेमस हुआ था. लेट्स हियर इट राइट हियर. एंड बिफोर दैट, यस, आई डू हैव सम इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल यू लवली लिसनर्स. डिस्कवर हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी, सर्विंग द एंटायर साउथ एशियन कम्युनिटी विद ऑथेंटिक ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट्स एंड एवरी डे इसेंशियल्स. इंजॉय हॉट समोसास, पानी पूरी, मसाला चाय एंड कॉफी व्हाइल यू शॉप. कंपेटिटिव प्राइसेस, free delivery on orders over $50 within 5 miles and loyalty rewards with every purchase. Just off of Highway 360 South at 5103 Magna Carta Boulevard, Grand Prairie, Himalayan Bazaar, where every aisle feels like home. ye sun ke mera to mood ho raha hai wahan jaake chai aur samosa. chalo isi bahane us taraf का एक मौका मिल जाएगा वहाँ जाने का. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. हिमालयन बाजार, ये ग्रैंड प्रेरी में है. डू गिव इट अ शाउट आउट एंड डू ट्राई इट. विद दैट द सॉन्ग इज हियर वेटिंग वेरी वेरी एंशियसली फॉर यू.

0: Thank you, listeners, for your calls. Totally love them.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
2: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। 96641।
3: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
4: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
5: Beta, 95% aaye?
6: Haan, mummy.
5: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
7: Mera?
5: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: जा पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
10: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
11: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
12: लैपटॉप में।
11: इन्वेस्टमेंट?
12: गूगल ड्राइव।
11: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
12: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
11: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
13: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
14: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
13: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
15: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
16: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
13: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन। साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
17: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

इंडीड आज हिमेश रेशमिया को हम कवर कर रहे हैं। उनका बर्थडे एक्चुअली अभी गया है July 23rd को, इतना दूर भी नहीं है, देखा जाए तो अभी एक महीने भी नहीं हुआ उनके बर्थडे को। सो व्हाई नॉट सेलिब्रेट हिम टुडे अलोंग विद अ फ्यू मोर यू नो स्टार्स, फ्यू मोर सिंगर्स, एक्टर्स। उनकी उम्र है 53 इस वक्त, मुंबई में वो पैदा हुए। जॉनराज हैं उनके डिस्को, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, बॉलीवुड, इलेक्ट्रॉनिक, डांस म्यूजिक एंड भजन। म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर, प्लेबैक सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर, राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, एज वेल एज ही इज डेफिनेटली आई वुड से इन अ लॉट ऑफ मूवीज। ही ऑल्सो मेक्स अपीयरेंसेस। टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनको, वोकल्स, तबला, ढोलक एट्सेट्रा, गिटार, हारमोनियम, सैक्सोफोन, यू नेम इट। ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हिमेश रेशमिया, क्योंकि आज मुझे उनका वो गाना तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट से समहाउ मेरी मॉर्निंग शुरू हुई। आई जस्ट थॉट अबाउट दैट सॉन्ग बिकॉज आई बीन हियरिंग इट ऑन द रेडियो एंड आई फेल्ट चलो व्हाई नॉट टॉक अबाउट हिम। यू नो द फेमस प्लेराइट, अमेरिकन प्लेराइट, हर नेम इज ईव एंसलर। She said something really interesting about life. She said, cherish your solitude. Take trains by yourself to places you have never been. Sleep out alone under the stars. Learn how to drive a stick shift. Go so far that you stop being afraid of not coming back. Say no when you don't want to do something. Say yes if your instincts are strong, even if everyone around you disagrees. Decide whether you want to be liked or admired. Decide if fitting in is more important than finding out what you're doing here. Believe in kissing. That's Eve Ensler. Lovely quote I want to share with you. Aur isi ke saath saath, yes, giveaway aa raha hai, ek interview bhi aa raha hai Ura ka aur ek aur giveaway bhi aayega 6:15 baje. Lekin saath saath life ke important baatein bhi main aapko batana chahti hu ki Texas Star Rehab के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर इज प्राउड टू अनाउंस आवर न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिस्को लोकेशन, फ्रॉम ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरीज टू पेल्विक फ्लोर थेरेपी, मसाज थेरेपी, जेरियाटिक रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रेड लाइट थेरेपी एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन। दे डिलीवर पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन केयर डिजाइन टू हेल्प यू परफॉर्म एट योर बेस्ट। ट्रस्टेड बाय प्रोफेशनल एथलीट्स, एंटरटेनर्स and community leaders, they believe every patient deserves VIP treatment. Visit TexasStarRehab.com to schedule your consultation today. Conveniently serving Frisco and Irving, Texas Star Rehab and Performance Center, move better, feel better, as well as live better. अब नेक्स्ट गाना उनका जो हिमेश रेशमिया का May 2026 में ब्रांड न्यू गाना जो रिलीज हुआ है उसका नाम है शराब, और ये मैं आप लोगों के लिए अब प्ले करने वाली हूँ। लेट्स हिट इट राइट हियर।

एंड ये इस गाने में हिमेश रेशमिया तो है ही. He features a lot in his own songs with his very iconic, you know, cap that he wears. Unke saath hai Manushi Chiller. Aap unko recognize karenge. If you see her, there are like many, many songs she's come in. She might have come in a movie too, but she's definitely like a model and she's come in music videos. Her name is Manushi Chiller. Yeah. तो ये आपने सुना गाना लेटेस्ट जो है हिमेश रेशमिया जी का गाना. और यही नहीं, ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन. दैट्स व्हाई आई थॉट इनको डेफिनेटली कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि एक उनकी अपकमिंग फिल्म में जहाँ वो साउंड ट्रैक प्रोजेक्ट्स हैं उनके, एक तो उनकी खुद अर्जुन नागा में उन्होंने सिक्योर किए हैं म्यूजिक राइट्स फॉर दिस अनिल शर्मा डायरेक्टेड मूवी विद म्यूजिक कंपोज बाय हिमेश रेशमिया, अर्जुन नागा. ऊपर से एक और फिल्म आ रही है, ये प्रेम मोल लिया, और ये है आपकी सूरज बरजातिया फैमिली एंटरटेनर स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड शर्वरी. ये नवंबर 27 को रिलीज हो रही है. ये प्रेम मोल लिया नाम भी बहुत अच्छा है. इसमें भी हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक होने वाला है. और गन मास्टर G9 हैंडलिंग म्यूजिक राइट्स फॉर द अपकमिंग एक्शन फिल्म रीयूनाइटिंग हिम विद नन अदर दैन इमरान हाशमी एंड आदित्य दत्त. तो काफ़ी इनकी पाइपलाइन में है मूवीज. एंड डेफिनेटली ये शराब जो अभी आपने नया ट्रैक इनका सुना वो भी काफ़ी कूल सा था. उनके गाने तो डेफिनेटली कूल होते हैं. एक और फिल्म, एक और उनका जो एक पर्सनल एल्बम है जिसका नाम है हिमेश के दिल से, उनका फर्स्ट ट्रैक है प्यार करूँ, which is sung by Mohammed Faiz. It is set to release on September 23rd, 2026. And now I'm going to play another single track of his. It is called Dilli Ki Garmi. Ab main to kahungi Dallas Ki Garmi aisi bhayankar ho gayi hai. Oof, jaise ki Dilli Ki Garmi bhayankar thi. I think Dallas ne Dilli ko peeche chhod diya hai. And I think Himesh Rishamiya ko ek gana banana chahiye, Dallas Ki Garmi. Ya hamare paas Dallas mein itne talented music, you know, directors hain, singers hain. I'm giving you an idea. And you can give me a cut if you make that Dallas Ki Garmi. Do it.

0: तो डेफिनेटली थोड़ी ठंड पाइए, ऐसे रहिए कि बस ठंडक रहे और लाइफ में चाहे एसी चलता रहे, कूलर चलता रहे, फैन चलता रहे, क्योंकि यू नो व्हाट, जैसे कहा है दिस रिलीजियस लीडर फ्रॉम द चर्च, अमेरिकन चर्च, ही सेज, गॉर्डन बी हिंकली इज हिज नेम, ही सेज, आई रियली लाइक दिस कोट, ही सेज, स्टॉप सीकिंग आउट द स्टॉर्म्स एंड एंजॉय मोर फुली द सनलाइट. Something simple, but something like a reminder. Stop seeking out the storms and enjoy more fully the sunlight. And he also says, our lives are the only meaningful expression of what we believe and in whom we believe. He said, you can't build a great building on a weak foundation. Be happy, enjoy the ride, and have the courage to do the right thing. That's Gordon B. Hinckley. He passed away in 2008, born in 1910, a religious leader and the author who served as the 15th president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. There's a lot to learn from people. Just aaj se kehte na ki aankhein khol ke rakhni chahiye, kaan khol ke rakhne chahiye aur muh thoda band rakhna chahiye. लेकिन अगर आप गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे जाएंगे तो बुरा मत सुनिए, बुरा मत कहिए और बुरा मत देखिए, लेकिन अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए. विद दैट लिसनर्स, आपके साथ साथ और भी बातें होंगी और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ. एट द सेम टाइम आपको जो जानकारी मैंने अभी दी थी उसके बारे में फिर से कॉल आया, टेक्सास स्टार रिहैब, जी हाँ, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं. ये फ्रिस्को में भी है और ये आपके It handles a lot of different injuries. It's called Texas Star Rehab and Performance Center. And Frisco mein bhi ye nayi location khul gayi hai. And listeners, with that, jahan health ki baat ho rahi hai, aapko bata dun that Passion Health Primary Care ke baare mein. Ye jankari bahut hi zaruri hai. Pehli baat to unka number hai 214-666-6259. आप ये नंबर नोट कीजिए क्योंकि आप उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. लेकिन व्हाट इज दिस पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू इज अ क्वेश्चन आई एम गोना आस्क. 5 minutes, 10 एट द मोस्ट. एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 minutes बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली फॉर देम. For you, for your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical. Anxiety care, fibro scan for alcohol-related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and more are all available at Passion Health. Schedule your appointment today. The number is 214-666-6259. Book your appointment. Again, Passion Health Primary Care. Your health is our passion. With that, I have a next song totally lined up. Aur ye gana ja raha hai especially Safi ko. Safi, I hope you are having a wonderful evening. Is waqt mein Himesh Rishamia ke gaane chala rahi hoon. Aur ye gana bahut hi cool hai. Lekin abhi chota sa break aane wala hai. After that, we'll be back for a song.
1: Heere moti main na chahu.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
5: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
6: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: तारा वो तारा हर तारा।
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
3: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
2: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
3: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
2: इंडिया तक।
3: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
4: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

And welcome, listeners. आप लोग सुन रहे हैं थर्सडे इवनिंग एंड दिस इज योर होस्ट पॉल भाटिया कवरिंग इन फॉर मार्विन दास. बात हो रही थी हिमेश रेशमिया की और जो गाना नेक्स्ट में प्ले करने वाली हूँ वो जा रहा है सफ़ी को. ही वॉन्टेड अ सॉन्ग जिसमें सुनिधि चौहान की भी आवाज़ हो, तो ये गाने में उनके साथ हिमेश रेशमिया के साथ सुनिधि चौहान भी हैं. जो दो गाने मैंने पहले भी इससे पहले जो मैंने प्ले किए थे दो में उनके साथ भी उन्होंने गाया था. ही यूज़ टू सिंग अ लॉट विद हर. और इस गाने में है इमरान हाशमी, साथ में है उदिता गोस्वामी. लगी लगी इज द नेम ऑफ द सॉन्ग. मैं प्ले करने वाली हूँ थोड़ी देर में, बस पाँच ही मिनट में एक इंटरव्यू भी आने वाला है लिसनर्स. उससे पहले मैं आपको बताऊँ दैट देयर वाज अ ऑथर वॉल्टर फॉली. ही यूज़ टू राइट चिल्ड्रंस बुक्स अबाउट हॉर्सेस. उनकी एक पर्टिकुलर जो बुक थी उसका नाम था द ब्लैक स्टैलियन, जो कि बहुत पॉपुलर हुई और उन्होंने बहुत सारे सीक्वल्स लिखे फिर हॉर्सेस एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. अब उनके बेटे स्टीवन लिखते हैं, ही इज़ नो मोर, वॉल्टर फॉली. लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली. आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू इन्जॉय लाइफ एंड हाउ टू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टॉर्म्स एंड रादर लुक फॉर द सनलाइट. तो ये कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बाय वॉल्टर फॉली. ही सेड आई बिलीव दैट हाफ द ट्रबल इन द वर्ल्ड comes from people asking, what have I achieved? Rather than, what have I enjoyed? I've been writing about a subject I love as long as I can remember, horses, and the people associated with them, any place, anywhere, anytime. I couldn't be happier knowing that young people are reading my books. But even more important to me is that I've enjoyed so much the writing of them. With that, Lagi Lagi going out to all you lovely listeners. डालर्स गर्मी थोड़ी कम करिए और इन्जॉय करिए गाने.

0: And now, listeners, I'd like to welcome Mr. Aman on the airwaves of Funasia Radio. Welcome to the URA Debt Relief segment. Today, we have the pleasure of having URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about URA Debt Relief programs. Hello, how are you doing, Mr. Aman?
1: All good. Funasia सुनने वाले सभी listeners को URA और Aman की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार. So, दोस्तों, ये महीना शुरू हुआ कब, मिड से क्रॉस करता हुआ अब आखिरी पड़ाव पर जाने लगा है. लेकिन अगर अभी भी बहुत सारे दोस्तों ने मिनिमम पेमेंट नहीं भरा है क्रेडिट कार्ड का, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से उतरता नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड सच में उतर जाए, आपका कर्जा माफ हो जाए, तो URA को कॉल कर सकते हैं. URA आपके क्रेडिट कार्ड, चाहे वो पर्सनल हो, बिजनेस के हो, स्टोर के हो, इन सारे कार्ड्स की एक पेमेंट बना देगा. उसमें से आधे से ज्यादा कर्जा तो माफ ही हो जाएगा, और विदाउट एनी इंटरेस्ट. इंटरेस्ट भी माफ हो जाएगा, प्रिंसिपल आधा हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा आधा, उसके आसान से किस्तें बन जाएंगी. और नंबर टू इम्पॉर्टेंट, ये बैंकरप्सी नहीं है, ये सेटलमेंट है. सेटलमेंट थ्रू आउट ऑफ कोर्ट हो जाएगा. और अगर इसके साथ साथ अगर आपका कोई पर्सनल लोन भी है, या गाड़ी जो रिपोजेस हो गई है, गाड़ी कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, ट्रेलर भी हो सकता है, जो भी हमारे दोस्तों के पास गाड़ियां अगर वो रिपोजेस हो चुकी हैं या टोटल हो गई हैं किसी कारण, उसको भी आप नेगोशिएट करके माफ करवा सकते हैं. तो सिंपल कीजिए ये काम कि आप URA को कॉल कीजिए, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए. हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं. हम आपको फ्री एनालाइज करके देंगे कि आप कितना पैसा आप इनिशियली बचा सकते हैं और कितना बाद में बचेगा. उसकी सेटलमेंट के बाद आप डेट फ्री हो जाएंगे. डेट फ्री होंगे तो स्कोर बढ़ेगा और आपका कर्जा अप्रूवल का रेट बढ़ जाएगा. सो कॉल अस, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर अपने दोस्त अमन मुझसे बात कर सकते हैं 9167763555.
0: That's wonderful. आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया. आप ये बता सकते हैं कि आप कंज्यूमर्स एंड बिजनेस दोनों को सर्व करते हैं?
1: कंज्यूमर्स और बिजनेस दोनों को सर्व करते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर अनसिक्योर्ड डेट. कोई भी क्रेडिट कार्ड का डेट है, कोई भी अनसिक्योर्ड डेट है, कोई भी पर्सनल है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस के भी हो सकते हैं, पर्सनल लोन्स हैं, या बिजनेस के पर्सनल लोन्स हैं, जो बिजनेस के लोन्स होते हैं जो कलेक्ट्रल नहीं है, SBA लोन नहीं हम करते, ऐसे लोन्स जो कलेक्ट्रल ना हो, उनको नेगोशिएट करके माफ करवाया जा सकता है.
0: तो साथ साथ आपको संपर्क किया जा सकता है, आपकी वेबसाइट है URA, that is oraa.org, right?
1: Exactly. तो कॉल कीजिए अभी के अभी 9167763555.
0: That's wonderful. Anything else that you want to say before I let you go?
1: Yes, यही कहना चाहूंगा कि मिनिमम पेमेंट करने से पहले कीजिए कॉल, तभी आप पैसा बचा पाएंगे. क्योंकि मिनिमम पेमेंट से आप अपना पैसा खराब कर रहे हैं. मिनिमम पेमेंट आपका 40% इंटरेस्ट खा जाता है. तो इससे बेटर आप कॉल कीजिए और आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाइए.
0: और इवैल्यूएशन फ्री है?
1: बिल्कुल, इवैल्यूएशन फ्री है.
0: दैट्स वंडरफुल. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, मिस अमन.
1: थैंक यू.
0: All right, looks like people were already calling him. That's wonderful. And you can save so much money. Once again, his number is, Mr. Aman's number is 916-776-3555. Lagi.

0: And now, listeners, हम SBA loan expert से यानी कि Mr. Shahid Panjwani, he's on the air. Hello, Mr. Panjwani, how are you doing?
1: I'm doing great. Thanks for having me.
0: आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो existing जो business owners होते हैं, उनको आप कैसे करते हैं सर?
1: So, हम हमेशा जब भी लोन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किसी को बिजनेस शुरू करना है, किसी को बिजनेस खरीदना है, फ्रेंचाइज शुरू करनी है, फ्रेंचाइज खरीदनी है. We always talk about that, but we don't talk about that often about existing business owners. So I want to let existing business owners know how and what options do they have. Jabhi bhi business aap chala rahe ho, if your business is growing, you need money to grow. Maybe your business is slow, maybe you're waiting for some vendors to pay you or your customers to pay you, and there are people who operate business on 60, 90, 120 days of credit. Then slow time, you still need money. Either way, what happens is jabhi bhi paise ki zarurat aati hai, पहले से पता नहीं होता. इट्स वेरी शॉर्ट नोटिस दैट यू नीड द फंड्स, एंड देन मोस्ट पीपल दे ट्राई टू मैक्स आउट देयर क्रेडिट कार्ड्स, और दे मोस्ट बिजनेस ओनर्स दे विल गो यूज देयर लाइन ऑफ क्रेडिट्स. मेनी टाइम्स दे विल गो गेट हार्ड मनी लोन, जो फास्ट बैंक स्टेटमेंट दिखा के जहां पे दो से तीन दिन में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे फंडिंग मिलती है. वी हैव टर्म लोन ऑप्शंस, एंड मेनी टाइम्स व्हेन द टर्म लोन ऑप्शन कम्स टू माइंड, बिजनेस ओनर थिंक्स कि यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारा पेपर वर्क जाएगा, इसमें हार्ड इंक्वायरी होगी, एंड आई डू नॉट हैव दैट मच टाइम, एंड प्लस डॉक्यूमेंटेशन का सोच के ही स्ट्रेस हो जाता है. सो गुड न्यूज इज वी हैव बीन डूइंग दिस प्रोग्राम फॉर अ व्हाइल एंड इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स. इफ यू हैव बीन इन बिजनेस फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स एंड यू नीड टर्म लोन, यू नीड लोन टू ग्रो योर बिजनेस, एक्सपेंशन, इन्वेंटोरी, इक्विपमेंट, व्हाटएवर मे बी द रीजन, we do not need your bank statements, we do not need your tax returns up front. Again, we don't need your bank statements, we don't need your tax return, we do not do hard inquiry on your credit.
0: Okay.
1: And we can get you an answer, a loan proposal, in as little as under 10 minutes. All I need is you call us and give us some basic information about your business, kitne time se aap business mein ho, kitne employees hai, employer ID number kya hai, aapka gross revenue kya hai, some basic preliminary info, and a soft credit pull will be done. There is no hard inquiry.
0: Okay.
1: Based on the soft pull, we can give you a loan proposal. Mm-hmm. And we basically close this funding 3 times more. Hamara jo national average se 3 times faster turnaround hai is particular loan mein. Aapko 10 year ka term loan milega. Koi prepayment penalty nahi hai. If you want to pay off early, then you can pay off. Koi collateral ki requirement nahi hai. So out and out, it is a very helpful program for existing business owners and very easy program. So if you're an existing business owner looking for capital, call us. We got this excellent program for you without any hard inquiry on credit and without any upfront documentation required. Worst case scenario, agar aap, let's say, decline bhi hote ho, to aapki koi credit pe inquiry nahi hai, no need to worry about it. Second scenario is many times people say ki humne aapka loan, ye sab process kar diya, aapke terms nahi samajh mein aaya, interest rate samajh mein nahi aaya, condition samajh mein nahi aayi, we don't like those terms. Okay, still, we are not doing a hard inquiry on your credit. You did not provide us any documentation, so there is nothing to lose. It's a win-win situation.
0: Very promising.
1: Either way for you.
0: Yeah, yeah. Very promising. This was SBA loan expert Shahid Panjwani, and your number is
1: 469-817. I'll give my direct line.
0: Okay.
1: 817-786-3338. 817-786-3338.
0: That's wonderful. Thank you so much for joining us. This is sounding very promising. That was Mr. Shahid Panjwani from SBA Loan Expert.
1: Thanks for having me.
0: All right. All right. Listen, ek chhota sa break aane wala hai aur break ke baad kuch giveaways bhi aane wale hain. Kuch sawal jawab honge aapse, kuch main poochungi aur dekhte hain ki kya pata chalta hai, kya aapko milta hai. Bas chhota sa break hai aur we gonna be right back.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. Million dollars. $10. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Rakshabandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
9: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
11: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
11: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
11: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
13: सुनो कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
13: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vive, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
15: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
16: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
2: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
17: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
18: लिया।
17: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
18: नहीं आया।
17: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
19: Visit www.sanadainc.com today.
20: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
21: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
2: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
22: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837 7747 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
4: चॉक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
18: Number one hit station.
0: Number one hit station. With that, listeners, बातें हो रही हैं ऐसी inspiring लोगों की भी जो हमें inspire करते हैं to live better, to enjoy life better. और ऐसे एक soldier हैं जिनका नाम है Aaron Lauritsen. इनके बारे में आपको बताऊं दैट ही इज अ फॉर्मर प्रोफेशनल सोल्जर एंड स्मॉल बिजनेस ओनर टर्नड ट्रैवल एडवेंचरर. ही रिजाइड्स विद हिज फैमिली इन द फुट हिल्स वेस्ट ऑफ कैलगरी अल्बर्टा कैनेडा वेयर ही चेरिशेस वर्ल्ड क्लास क्राफ्ट बियर रनिंग पेनफुली स्लो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड लिविंग इन द शैडो ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. तो आप समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ रिलैक्स्ड है, ऐसी है जिसमें वो ही लिव्स माइंडफुली. एंड वो कहते हैं इट्स इन दोज क्वाइट लिटिल टाउन्स एट द एज ऑफ द वर्ल्ड दैट यू विल फाइंड द सॉल्ट ऑफ द अर्थ पीपल हु मेक यू फील राइट एट होम. आई टोटली अग्री विद दैट. आप जब इंडिया भी जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान कहीं भी बांग्लादेश, जब आप वहाँ जाते हैं जहाँ की इतनी क्रेजी लाइफ नहीं है, सिटी लाइफ नहीं है, थोड़ी ऐसी लाइफ है जहाँ लोग बस रह रहे हैं, जस्ट दिन पर दिन रह रहे हैं, दे आर जस्ट इन्जॉइंग लाइफ एट इट्स ओन पेस. वहाँ जो खाना वो देते हैं आपको, डोंट यू थिंक उसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही नमक होता है उसमें. वो नमक होता है नॉट रनिंग, नॉट मेकिंग यू रश, मेकिंग यू जस्ट सेवर दैट मोमेंट विद देम. दैट्स वॉट Aaron Lauritsen सेड इन दैट कोट. ही ऑल्सो रोट 100 डेज ड्राइव इन विच ही सेज लाइफ ट्रायल्स विल टेस्ट यू and shape you, but don't let them change who you are. 100 Days Drive, the Great North American Road Trip mein unhone ye likha hai. Ek aur baat unhone kaha hai, true friends don't come with conditions. I definitely feel that that's so true. Jo friends aapke hain aur aapko samajhte hain, wo conditions nahi rakhte. Sirf baatein nahi hai, it's actually hard. It's hard to find such friends. Don't you think, listeners? इसके साथ साथ अब एक क्विज भी आने वाला है, लेकिन व्हेन आई एम गोना एक्चुअली एंड हिमेश रेशमिया सेगमेंट नाउ विद अ वेरी आइकॉनिक सॉन्ग. अगर ये गाना मैं नहीं प्ले करूँगी तो डेफिनेटली इट वॉन्ट डू जस्टिस टू हिमेश रेशमिया. बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, झलक दिखलाजा भी है बहुत फेमस, लेकिन एक और बहुत फेमस है, आई एम गोना प्ले दैट वन. विद दैट आपको ये बता दूँ दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक. जी हाँ, विद हूम? विद नन अदर दैन ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड टू योर नीड्स वेदर यू बाइंग योर फर्स्ट होम अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग. Start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626. Hussain ya Sharmeen Panjwani ko aap call kar sakte hain. Number again is 972-245-5626. Or you could also visit their website, which is dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage. Making dream homes happen. With that, here is the song ending Himesh Rashamiya's segment for today. It's a remix version.

ऑल राइट, आइकॉनिक गाना क्या गाते हैं. और काफ़ी समय से मैंने इनके गाने नहीं सुने, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इनके गाने सुनाते हुए आप लोगों को, एट द सेम टाइम सुनते हुए भी. एंड नाउ लिसनर्स, इट्स टाइम फॉर द गिव अवे दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट आई वुड बी गिविंग अवे वन थिंग. इन फैक्ट टू आर नाउ, बिकॉज वी पुश्ड इट आउट टू द 6 o'clock आवर. सो टू गिव अवेज कमिंग अप. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम नन अदर दैन फन पिज़्ज़ा किचन. You know what? They have launched a brand new Mexican-inspired pizza lineup. And these aren't just pizzas. They are a full-on flavor fiesta. From the fresh fiesta veggie to the fiery Polo Loco, the seafood-packed Sonor Camarón, every bite is bold, exciting, and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. And now here is your chance to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering a simple question. Once you give me the right answer, the first winner will need to give me their phone number and email ID. And then I'll ask you to go to FPK Frisco location and collect the gift card. तो क्या क्विज है ये? क्विज बहुत ही मज़ेदार है. आपको मुझे बताना है, ये जो मैं गाना प्ले कर रही हूँ, विच आई एम अबाउट टू प्ले, यू गॉट टू गिव मी टू थिंग्स, ए थ्री थिंग्स. ए द नेम ऑफ द फिल्म, सेकंड द नेम ऑफ द हीरो हीरोइन, एंड आई एम काउंटिंग दैट एज नंबर टू. नंबर थ्री द नेम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर. एंड इट्स अ हिंट कि जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो शायद सिंगर भी हैं. चलिए सुनते हैं ये गाना. लेट्स सी इफ यू कैन डू इट. द फर्स्ट कॉलर विद द राइट आंसर विल विन द $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन.

0: Yes, that's how I am.
1: All right, you're live on air. Who's this?
2: Hi, I'm Yash.
1: Yes, Yash. Can you tell me the name of the film?
2: Apia Ghar Aaya from Awara Pantu.
1: Yes, Awara Pantu is the name of the film. Isme hero heroine kaun hai?
2: Imran Hashmi aur Disha Patani.
1: बिल्कुल सही बोला आपने ये भी. अब आप बता सकते हैं कि म्यूजिक डायरेक्शन किसने दिया है?
2: अखिल सचदेव.
1: ऑलराइट, आपको पता है कि ये गाना कौन गा रहा है?
2: अभिषेक भाटिया.
1: नहीं, ये खुद गा, वैसे मैंने कहा था कि ये म्यूजिक डायरेक्टर और जो सिंगर है वो सेम है, तो यानी कि अखिल सचदेव इसको गा भी रहे हैं.
2: Okay.
1: उन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किया है और द बेस्ट पार्ट इज उन्होंने लिरिक्स भी लिखे हैं. तो यश, आप बताइए आपका फुल नेम.
2: यश राज चावला.
1: यश राज चावला, ठीक है. तो मैं आपसे, चोपड़ा नहीं है, चावला है, मैं आपसे बस ऑफ एयर आपकी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ. यू हैव वन द $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. कंग्रेचुलेशंस.
2: थैंक यू.
1: जस्ट आई विल टेक यू ऑफ एयर, जस्ट अ सेकंड. All right, enjoy the song. Akhil Sachdev ki awaaz mein, Yashraj Chawla has won the card.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Yaar, modern manga sutra dhoonte thak gayi hoon.
3: To Carrot Lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern manga sutras.
2: Seriously? Kaisa collection hai?
3: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
4: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
7: फ्लोर्स क्लीन
8: चेक,
7: विंडोज क्लीन
8: चेक,
7: किचन क्लीन
8: चेक,
7: एयर डक्ट्स क्लीन।
8: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
9: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता
11: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
13: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer?
14: उमर ख्वाजा।
15: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
16: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
17: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
1: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
18: जिंदगी एक रंगमंच है
19: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
20: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
21: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
22: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
23: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
24: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी।
0: जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
23: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
24: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
25: यहाँ लिसनर्स, थोड़ी और जानकारी दूंगी मैं आपको सोनू निगम के शो के बारे में इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। अभी मैंने जो क्विज दिया था वो था इमरान हाशमी के ऊपर। फिल्म है अवारापन 2। जो फर्स्ट अवारापन आई थी वो आई थी बैक इन 2007। अ लॉट हैज टू बी सेड अबाउट दिस। तो चलिए फटाफट हाईलाइट बता दूं कि अवारापन 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 हाईलाइट्स। हिज दैट इज इमरान हाशमी फिल्म इज सेट टू क्रॉस रुपीज 150 करोड़ रुपीज मार्क ये क्रॉस कर रही है और ये बिगेस्ट हिट है ऑफ हिज 18 ईयर लॉन्ग करियर। इंडीड ही हैज बीन परफॉर्मिंग स्ट्रांगली दिस अवारापन 2 एट द बॉक्स ऑफिस। दिस रोमांटिक एक्शन ड्रामा विच ओपन टू डिसेंट रिव्यूज क्रॉस 80 करोड़ इन इट्स ओपनिंग वीकेंड। आफ्टर अ स्लाइट डिप इन कलेक्शन ऑन मंडे द फिल्म अर्न्ड 9.75 करोड़ ऑन ट्यूजडे। And the film's net domestic total now stands at 100.75 crore. The film has earned rupees 144.13 crore worldwide. Aur panchve din to get almost 150 crore rupee cross kar chuki hai. Aur jo ye first franchise jo Aarapan wo 2007 mein aayi thi. However, the Mohit Suri directorial, which also starred Imran Hashmi like 19 years ago, it went on to gain cult status over the years. Avarapan 2, however, has become a historic film for Imran Hashmi, as this is now the first solo film in his 18-year career that has entered this 100 crore club rupee, you know, 100 crore rupees ka jo club hai, it has entered it. Unke saath hain, jaise ki bataya tha, jo hamare listener hain, jinhone jeeta hai $10 ka fun pizza kitchen se gift card, Yashraj Chawla ne bataya tha ki isme Disha Patni bhi hain. Uske saath saath main bata dun aur kaun hain, Puran Gabbi, Anirudh Rawal, Shabana Azmi, Suvinder, Vicky, there is one name, Suvinder Vicky, Vijayant Kohli and Atul Kumar, they are all in the key roles. The film has been directed by Nitin Kakkar and produced by Vishesh Bhatt and Mukesh Bhatt under the banner of Vishesh Films. So it's a huge a shout out going out to Imran Hashmi, the scintillating man. By the way, as far as he's concerned, I would say, just like people say, you know, Anil Kapoor hasn't aged, then Jimmy Shergill hasn't aged, I feel like Imran Hashmi definitely also hasn't aged. In fact, he looks even better. इसमें अगर आप इस गाने को आप देखेंगे तो उनका जो लुक है बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, वेरी स्ट्राइकिंग लुक. So with that, we wish him all the best and he may continue growing. And with that, listeners, एक और giveaway की बारी आ गई है. मैंने आपको बताया था कि एक और giveaway होने वाला है. So this is the time. And this one is a chatpata giveaway also. Hoko. You must have heard of it. You know, you found a truly iconic food brand when just hearing its name brings back a flood of memories. That's exactly what Hoko has been for generations across India. And now it's here in North Texas. Whether you've been craving their legendary chana puri or iconic sandwiches, flavorful curries, or the famous Hoko cold cocoa that people absolutely swear by, you don't have to wait for your next trip to India anymore. Visit Hoco, and where is it? It's in Frisco. The address is 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco, Texas 75034. You can quickly Google it, HOCCO, and you can experience the authentic flavors that have made it one of India's most loved food brands. So for the full menu and more information, visit hoco.us, and that's hoco.us. Come hungry and leave with the taste of India. And now here's your chance to win a plate of aloo tikki chaat from Hoco by answering a simple question. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन ये है कि जो मैं गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, आपको बताना है ये गाना कौन सी फिल्म से है. इसमें हीरो हीरोइन, अगर हीरोइंस भी आप बता सकते हैं, दो हीरोइंस हैं, दो हीरोज हैं, तो वो सही रहेगा. और साथ साथ इसे किसने डायरेक्ट किया है. विद दैट आई हैव समवन ऑलरेडी ऑन एयर. हेलो, यू आर ऑन एयर. हू इज दिस?
5: हेलो,
25: हाय. I haven't played the song yet. Who's this?
5: This is Dildo Muncher calling from Ensign Corporate.
25: All right. So I'm going to play the song, Gautam, and then you can answer and call back, okay?
5: Okay.
25: Thank you. All right. So ye gaana main aapke liye play karne wali hoon. Aur bas, aapko mujhe batana hai ye teen cheezein. Film ka naam, heroes, heroines ke names, और साथ साथ इसे किसने डायरेक्ट किया है. और गाना मैं ये नहीं पूछूंगी, वैसे तो आप बता सकते हैं कि इसमें गाना कौन गा रहा है, वो एक एडिशनल चीज़ हो जाएगी, तो उसमें भी मज़ा आएगा. व्हाट डू यू से?

0: Phoenicia Radio, you're on air.
1: Hi.
0: Yes, you're on air. Who's this?
1: The movie is Bol Bachchan.
0: The movie is Bol Bachchan, yes.
1: The actors are Ajay Devgan and Aasin.
0: And Aasin, okay. आप दूसरे भी पेयर को जानती हैं इसमें जो है?
1: प्राची देसाई हैं
0: जी
1: एंड अभिषेक बच्चन है.
0: बिल्कुल सही बोला आपने. अब आप बता सकती हैं कि डायरेक्ट किसने किया है? बहुत फेमस डायरेक्टर हैं.
1: जी जी रोहित शेट्टी.
0: ये भी आपने सही बोल दिया. अब तो बस एक ही बात रह गई है कि इसको गा कौन रहा है.
1: ये हिमेश रेशमिया.
0: एंड गर्ल
1: जी हिमेश रेशमिया.
0: एंड लुक लिसन टू द गर्ल.
1: अच्छा ये अच्छा आप गर्ल सब लेते हैं. ओके श्रिया घोष.
0: अरे भाई आप तो ऐसा आपने पूरा इसे कहते हैं ना छक्का मार दिया और टोटल आपने सही आंसर्स दिए. आपका नाम?
1: सबक.
0: सबक
1: सबा
0: सबा सबा सबा. यस सबा आपने बिल्कुल सही बोला सबा. एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ऑफ लेयर लेती हूँ. आपका फुल नेम क्या है सबा?
1: सबा जाफरी.
0: जाफरी okay just stay on air and I'll take you offline and talk to you. Okay,
1: thank you so much.
0: This is such a cool song. I want to play it from the very top for all you lovely listeners out there. Here it is.

0: Phanasia Radio.
1: Farul?
0: Yes?
1: I know somebody who hasn't aged yet.
0: Well, you know someone who hasn't aged yet. Who is it?
1: Yeah, and that's you.
0: You're so sweet.
1: That is not true. Remember, Farul, this is Suraya.
0: Oh, wow. The one who played my mom?
1: Yeah.
0: I don't think... Now I think I will look like your mom, I feel.
1: No. I haven't seen you for a while after those our Jamaat Khana program. But yes. I think you were always looking wonderful.
0: Oh, that's nice. But since you haven't seen me, you don't know how I look anymore.
1: No, I see you on Facebook.
0: So I haven't aged, you think?
1: No, you haven't. You have the same beautiful Asian featured girl.
0: Thank you, Mom.
1: Love you, beta.
0: Oh, that listener is reminding us of a movie we did together, My Father's Daughter, Jisme Suraya Heather was my mom. And it was such a great experience. Nishendu Asavra was in it.
1: That.
0: Yeah, it was so much fun. Thank you so much for calling, Suraya. You totally made my evening.
1: Of course. Bye-bye.
0: Yeah, take care and stay in touch. Bye.
1: Bye.
0: वाह कि मेरा तो मज़ा है. जैसे कहते हैं ना, शुरुआत मैंने कहा था तंदूरी नाइट्स, आज वैसी ही फीलिंग आ रही है. तो विद दैट, ये गाना तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ ही था जो आप सुन रहे थे. और अब एक और गाने की रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि बात हो रही है ना हिमेश रेशमिया की, और अभी भी जो हमने गाना प्ले किया बाय चांस वो भी उन्होंने ही गाया. तो आज तो टोटल हिमेश रेशमिया का, जिसे कहते हैं ना, उनका जादू चल रहा है. और ये जो गाना है, ये जो सबा ने जीता था लास्ट अवार्ड, जो हॉको से उन्होंने जीता है आलू टिक्की चाट, सबा जाफरी ने, उन्होंने कहा कि ये गाना ज़रूर प्ले करिए जो सिंस हम लोग कर रहे हैं हिमेश रेशमिया. और ये गाना लिया है नमस्ते लंदन से, इसका नाम है राफ्ता राफ्ता. अभी क्विज तो खत्म हो गया. आई एम गोना गो अहेड एंड प्ले दिस सॉन्ग बिफोर वी टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक.

What a lovely track this was. And ये जो गा रहे हैं इस पर्टिकुलर फिल्म में, वैसे म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने, लेकिन दर्शन रावल और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये आपने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना. विद दैट लिसनर्स, बताऊं कि एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स, ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स सच एज ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी, फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइंस टू स्पार्कलिंग डायमंड्स, एंड फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोलकी कलेक्शंस, एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ्स स्पेशल मोमेंट्स. Now welcoming you at their new location. ये किधर है? Frisco में है. उनका address note कीजिए, 13145 Suite 220 Main Street Frisco, 75035. That's Sri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished memories since 1967. और एक iconic गाना, I'm gonna just squeeze that in right now. I don't know, सारे गानों का तो time नहीं होगा, लेकिन जो रिक्वेस्ट आई है ये झलक दिखला जा कि ये मैं डेफिनेटली प्ले करूंगी आप लोगों के लिए.

एंड इंडीड ये गाना तो डेफिनेटली रिक्वेस्टेड होना ही था क्योंकि ये बहुत ही आइकॉनिक गाना जब शुरू शुरू में आया था हिमेश रेशमिया का. लिरिसिस्ट थे समीर और म्यूजिक डायरेक्शन एंड सिंगर भी इसमें हिमेश रेशमिया है. फिल्म थी अक्सर और इमरान हाशमी के साथ थे डीनो मौर्या एज वेल एज उदिता गोस्वामी. तो आपने गाना सुना. थोड़ी बात लिसनर्स एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि पाकिस्तान सोसाइटी नॉर्थ टेक्सस की तरफ से गेट रेडी फॉर अ स्पेक्टैक्युलर सेलिब्रेशन. द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस प्रेजेंट्स कायदे मेला 2026 और ये अगस्त 22 को हो रहा है. बस राइट दिस वीकेंड. It's a celebration of heritage, culture and community. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural festivities and family fun for all ages. Live performances by Raga Boys. That is Raga Boys. Join us Saturday, August 22nd from 3 p.m. all the way to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. It's a great location. Doors open at 2 p.m. And here is the best part. Entry and parking are absolutely free. Bring your family, bring your friends and come celebrate at Kaid Mela 2026. Media partners are Fun Asia 104.9 FM. एक गाने की और रिक्वेस्ट आई है तो आई एम गोना गो अहेड एंड प्ले दैट. इसमें आवाज़ डिफरेंट है उनकी, हिमेश रेशमिया की नहीं है. समवन एल्स इज सिंगिंग. दिस वाज अ रिक्वेस्ट सो हियर इट इज़.

ऑलराइट, इस वक्त बस जाने की बात हो रही है लिसनर्स, और एक और गाना के साथ मैं आई विल एग्जिट द स्टूडियो. ये गाना मैंने अभी बताया था आपको, 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है इमरान हाशमी की ये वाली फिल्म आवारापन 2. तो ये गाना एक और है, ये आवारापन विशेष फिल्म्स की प्रोडक्शन है. ये आवारापन मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, और साथ साथ आपको बता दूँ दैट सोनू निगम रेवोल्यूशन, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन. व्हेन, मार्क योर कैलेंडर्स, Saturday, September 26th at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, you can call this particular number jo main dene wali hu aapko. Number hai 855-360-SHOWS. That's 855-360-SHOWS. Revolution, Sonu Nigam Live. Exclusive media partner, Fun Asia Network. Or with that, ye next gana ja raha hai Waseem ji ko. Enjoy it, who's driving to McKinney. And it has been a pleasure being back. It's always fun to do a show right here for you listeners. So let me remind you, be safe, be brave, and keep it real, genuine, and happening with Fun Asia Radio, bringing the community together. This is your host, Parul Bhatia, signing off.

0: हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली।